सुप्रभात श्रोताओं, FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 106.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।
3: दृढ़ता क्या है और व्यक्तित्व के लिए इसका क्या महत्व है, इसे समझने के लिए हमें पहले दो तीन बातों को समझना होगा। दृढ़ होने का कतई ये अभिप्राय नहीं है कि आप दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखें या उन्हें डराने धमकाने का कार्य करें। दृढ़ होने का अभिप्राय है दूसरों के अधिकारों का हनन किए बगैर अपने अधिकारों के लिए डटे रहना। इसका तात्पर्य यह है कि आप स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि आप अपने और दूसरे दोनों की भावनाओं और अधिकारों के प्रति सम्मान रखते हैं। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्म छवि का अभिन्न अंग है। दृढ़ता को एक तरह से व्यक्ति के मतों और आवश्यकताओं की ईमानदार अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। हम में से अधिकांश की सोच और काम करने का तरीका उन प्रभावों पर निर्भर करता है जो जीवन के शुरुआती वर्षों में हमारे मन पर पड़ते हैं। इन प्रभावों का एक बड़ा हिस्सा हमारे परिवार और आसपास के माहौल का होता है। अगर किसी को बचपन से ही बोलने पर निरुत्साहित किया गया हो तो बोलने या कुछ भी पूछने से घबराना उसके व्यक्तित्व का स्थायी गुण बन जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि अक्सर ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों या हितों की अनदेखी होती है और वो चाहने पर भी कुछ नहीं कह पाते। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो दृढ़ता से अपनी बात कहने की आदत विकसित करें। किसी काम के लिए नहीं कहने में घबराएं नहीं और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने दिमाग से नकारात्मकता को हटाने का प्रयास करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो काम की शुरुआत ही हिचकिचाहट के साथ करते हैं। जब भी वे किसी बात पर अपना मत व्यक्त करते हैं तो उनकी आवाज बहुत हल्की हो जाती है और शारीरिक हाव-भाव में भी एक तरह की अनिश्चितता आ जाती है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि किसी भी कार्य का आरंभ दृढ़ निश्चय के साथ करें। अगर दूसरा किसी कार्य के लिए कहता है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो साफ तौर से ना कहने में हिचकिचाएं नहीं। साथ ही ऐसा करके मन में अपराध बोध महसूस न करें बल्कि दूसरे को स्पष्ट रूप से इसका कारण भी बता दें। दृढ़ता का अर्थ यह है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात पर कायम रहें, फिर भले ही आप पर किसी भी प्रकार का सांसारिक दबाव हो। दृढ़ता और आत्मसम्मान का आपस में गहरा संबंध है। आत्मसम्मान की कमी दृढ़ता की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपने रुख पर कायम नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं इससे दूसरा नाराज ना हो जाए। इस तरह के दृष्टिकोण के कई नुकसान हो सकते हैं। इससे दूसरे आपकी असाधारण क्षमताओं या योग्यताओं को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दृढ़ता संभवतः मानवीय व्यक्तित्व की परिचायक है। यद्यपि दृढ़ता से किसी अवसर पर आपको या दूसरों को सक्षमता का अभाव हो सकता है किंतु दीर्घावधि में ये सदैव लाभदायक होती है।
2: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना के साथ।

जहाँ भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है वहाँ हर काम मुस्कुराकर पूरा हो जाता है। इनकी कृपा हो तो राहें आसान लगती हैं, हर सुबह फिर से नई उम्मीद जागती है। तो आइए सुमिरन करते हैं भगवान श्री गणेश का।

हे हरि, आप अनंत हैं, आप ही सर्वोपरि हैं। आपको ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति से जाना जाता है। आपकी महिमा अपार है, आपकी कृपा से ही जीवन साकार है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है गांधी कथा।

0: गांधी कथा। आज की संख में महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से कुछ अंश और अंत में गांधी जी का एक प्रिय भजन।
1: मैं हिंदुस्तानी समाज की सेवा में ओतप्रोत हो गया। उसका कारण आत्मदर्शन की अभिलाषा थी। ईश्वर की पहचान सेवा से ही होगी, यह मानकर मैंने सेवा धर्म स्वीकार किया था। मैं हिंदुस्तान की सेवा करता था क्योंकि वह सेवा मुझे अनायास प्राप्त हुई थी। मुझे उसकी रुचि थी, मुझे उसे खोजने नहीं जाना पड़ा था। मैं तो यात्रा करने, काठियावाड़ के षड्यंत्रों से बचने और आजीविका खोजने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था, पर पड़ गया ईश्वर की खोज में, आत्मदर्शन के प्रयत्न में। ईसाई भाइयों ने मेरी जिज्ञासा को बहुत तीव्र कर दिया था। वह किसी भी तरह शांत होने वाली न थी। मैं शांत होना चाहता था तो भी ईसाई भाई बहन मुझे शांत होने न देते, क्योंकि डरबन में मिस्टर स्पेंसर वॉल्टन ने, जो दक्षिण अफ्रीका के मिशन के मुखिया थे, मुझे खोज निकाला। उसके घर में मैं कुटुंबी जैसा हो गया। इस संबंध का मूल प्रिटोरिया में हुआ समागम था। मिस्टर वॉल्टन की रीति नीति कुछ दूसरे प्रकार की थी। उन्होंने मुझे ईसाई बनने को कहा, सो याद नहीं, पर अपना जीवन उन्होंने मेरे सामने रख दिया और अपनी प्रवृत्तियां कार्यकलाप मुझे देखने दी। उनकी धर्मपत्नी बहुत नम्र परंतु तेजस्वी महिला थी। मुझे इस युगल की नम्रता, उद्यमशीलता और कार्यपरायणता प्रिय थी, इसलिए हम समय समय पर मिलते रहते थे। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के लिए जो फुर्सत मुझे प्रिटोरिया में मिल गई थी वह अब असंभव थी, पर जो थोड़ा समय बचता उसका उपयोग मैं वैसे अध्ययन में करता था। हिंदू धर्म के प्रति मेरा आदर बढ़ा, उसकी खूबियां मैं समझने लगा, पर दूसरे धर्मों के प्रति मेरे मन में अनादर उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार मैंने भिन्न भिन्न संप्रदायों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरा आत्मनिरीक्षण बढ़ा, जो पढ़ा और पसंद किया उसे आचरण में लाने की आदत पक्की हुई। टॉलस्टॉय की पुस्तकों का अध्ययन मैंने बढ़ा लिया। उनकी गोस्पेल्स इन ब्रीफ, व्हाट टू डू आदि पुस्तकों ने मेरे मन पर गहरी छाप डाली। विश्व प्रेम मनुष्यता को कहाँ तक ले जा सकता है, इसे मैं अधिक अधिक समझने लगा। इसी समय एक दूसरे ईसाई कुटुंब के साथ मेरा संबंध जुड़ा। उसकी इच्छा से मैं हर रविवार को गिरजे में जाया करता था। अक्सर हर रविवार की शाम को मुझे उनके घर भोजन भी करना पड़ता था। वहाँ जो प्रवचन होते थे वे मुझे शुष्क जान पड़े। मैं जिस परिवार में हर रविवार को जाता था, कहना होगा कि वहां से तो मुझे छुट्टी ही मिल गई। घर की मालकिन भोली भली परंतु संकुचित मन की मालूम हुई। हर बार उनके साथ कुछ न कुछ धर्म चर्चा तो होती ही रहती थी। उन दिनों मैं घर पर लाइट ऑफ एशिया पढ़ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्ध के जीवन की तुलना करने लगे। मैंने कहा, गौतम की दया को देखिए, वह मनुष्य जाति को लांघकर दूसरे प्राणियों तक पहुंच गई थी। उनकी कंधे पर खेलते हुए मेमने का चित्र आंखों के सामने आते ही क्या आपका हृदय प्रेम से उमड़ नहीं पड़ता? प्राणी मात्र के प्रति ऐसा प्रेम मैं ईसा के चरित्र में नहीं देख सका। उन बहन का दिल दुखा। मैं समझ गया, मैंने अपनी बात आगे न बढ़ाई। अब मैं दक्षिण अफ्रीका में 3 साल रह चुका था। मैं लोगों को पहचानने लगा था, लोग मुझे पहचानने लगे थे। सन 1896 में मैंने 6 महीनों के लिए देश जाने की इजाजत मांगी। मैंने देखा कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहना होगा। कहा जा सकता है कि मेरी वकालत ठीक चल रही थी। सार्वजनिक काम में जो लोग मेरी उपस्थिति की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे, मैं स्वयं भी करता था। इससे मैंने दक्षिण अफ्रीका में सपरिवार रहने का निश्चय किया और उसके लिए देश हो आना ठीक समझा। फिर मैंने यह भी देखा कि देश जाने से कुछ सार्वजनिक कार्य भी हो सकता है। मुझे लगा कि देश में लोकमत जागृत करके यहाँ के भारतीयों के प्रश्न में लोगों की अधिक दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। 3 पाउंड का कर एक नासूर था, सदा बहने वाला घाव था। जब तक वह रद्द न हो, चित्त को शांति नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरे देश जाने पर कांग्रेस का और शिक्षा मंडल का काम कौन संभाले? 2 साथियों पर मेरी दृष्टि पड़ी, आदम जी मियाँ खां और पारसी रुस्तम जी। व्यापारी समाज में बहुत से काम करने वाले निकल आए थे, पर मंत्री का काम संभाल सकने, नियमित रूप से काम करने और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे हुए हिंदुस्तानियों का मन जीत सकने की योग्यता रखने वालों में ये दो प्रथम पंक्ति में खड़े किए जा सकते थे। मंत्री के लिए साधारण अंग्रेजी जानने की जरूरत तो थी ही। मैंने इंदौर में से स्वर्गीय आदम जी मियां खां को मंत्री पद देने की सिफारिश कांग्रेस से की और स्वीकार कर ली गई। अनुभव से भी यह चुनाव बहुत अच्छा सिद्ध हुआ। अपनी लगन, उदारता, मिठास और विवेक से सेठ आदम जी मियां खां ने सबको संतुष्ट किया और सबको विश्वास हो गया कि मंत्री का काम करने के लिए वकील, बैरिस्टर की या बहुत पढ़े हुए उपाधिकारी की आवश्यकता नहीं है। सन 1896 के मध्य में मैं देश जाने के लिए पोंगोला स्टीमर में रवाना हुआ। वह स्टीमर कलकत्ते जाने वाला था। स्टीमर में मुसाफिर बहुत थे। दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे मेरी मित्रता हो गई। एक के साथ में रोज एक घंटा शतरंज खेलने में बिताता था। स्टीमर की डॉक्टर ने मुझे एक तमिल शिक्षक पुस्तक दी, अतः मैंने उसका अभ्यास शुरू कर दिया। नेटाल में मैंने अनुभव किया कि मुसलमानों के साथ अधिक निकट का संबंध जोड़ने के लिए मुझे उर्दू सीखनी चाहिए और मद्रासी भाइयों से वैसा संबंध स्थापित करने के लिए तमिल सीखनी चाहिए। उर्दू के लिए इन अंग्रेज मित्र की मांग पर मैंने डेक के मुसाफिरों में से एक अच्छा मुंशी ढूंढ निकाला और हमारी पढ़ाई अच्छी तरह चलने लगी। अंग्रेज अधिकारी की स्मरण शक्ति मुझसे बड़ी चढ़ी थी। उर्दू अक्षर पहचानने में मुझे मुश्किल होती थी, पर वह तो एक बार जिस शब्द को देख लेते उसे कभी भूलते ही न थे। मैं अधिक मेहनत करने लगा, फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर सका। तमिल का अभ्यास भी ठीक चलता रहा, उसमें किसी की मदद नहीं मिल सकती थी। पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी गई थी कि मदद की अधिक आवश्यकता न पड़े। मुझे आशा थी कि इस तरह शुरू किए गए अभ्यास को मैं देश में पहुंचने के बाद भी जारी रख सकूंगा, पर वैसा न हो पाया। सन 1893 के बाद का मेरा वाचन और अध्ययन मुख्यतः जेल में ही हुआ। इन दोनों भाषाओं का ज्ञान मैंने आगे बढ़ाया, पर वह सब जेल में ही। तमिल का दक्षिण अफ्रीका की जेल में और उर्दू का येरवदा जेल में। पर तमिल बोलना मैं कभी सीख न सका। पढ़ना ठीक तरह से सीखा था, पर अभ्यास के अभाव में अब उसे भी भूलता जा रहा हूँ। उस अभाव का दुख मुझे आज भी व्यथित करता है। मैं तमिल तेलुगु नहीं सीख पाया और अब शायद ही सीख पाऊं, इसलिए यह आशा रखे हूं कि ये द्रविड़ भाषा भाषी हिंदुस्तानी भाषा सीखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के द्रविड़ मद्रासी तो थोड़ी बहुत हिंदी अवश्य बोल लेते हैं, मुश्किल अंग्रेजी पढ़े लिखों की है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए अपनी भाषाएं सीखने में बाधा रूप हो। पर यह तो विषयांतर हो गया, हम अपनी यात्रा पूरी करें। अभी पोंगोला के कप्तान का परिचय कराना बाकी है। हम परस्पर मित्र बन गए थे। वह भला कप्तान एलिमथ ब्रदरन संप्रदाय का था। इससे हमारे बीच नौकाशास्त्र की बात की अपेक्षा अध्यात्म विद्या की बातें ही अधिक हुई। 24 दिन के बाद वह आनंद प्रिय यात्रा पूरी हुई और हुगली का सौंदर्य निहारता हुआ मैं कलकत्ते उतरा। उसी दिन मैंने बम्बई जाने का टिकट कटाया।

गांधी जी की इस प्रिय भजन के साथ ही गांधी कथा का आज का अंक यहीं पर संपन्न हुआ। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा, प्रस्तुति थी कल्पना पंकज की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्नजटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति शीतलता प्रदान करने वाली मधुर मुस्कान। शिशु रूपधारी श्रीराम आंगन में अपनी परछाई देखकर नर्तन करते हैं, कभी कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके फुदक कर भाग जाने पर ललचाने के लिए उसे पुआ पकवान दिखाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये लीला देख काकभुशुंडी के मन में सहज ही कौतूहल होता है कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, और मन में ये शंका आते ही उन पर प्रभु प्रेरित माया आच्छादित हो जाती है।

अनुराधा पौडवाल, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 11 बजे आज आप सुनेंगे विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 23वें अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का सजीव प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर आज आप सुनेंगे संतोषी के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा रोज की तरह ही सुबह 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सवेरे 9 बजे। कार्यक्रम अनुभव आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकेंगे प्रातः 10:02 पर और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दोपहर 1:30 पर। सुबह 10:35 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लोक संगीत में गोपाल दास और साथी के गाए जौनसारी लोकगीत। श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, समय वही सवेरे 11 बजे। कार्यक्रम सुगम संगीत में विविध कलाकारों के गाए शब्द आप सुनेंगे दिन में 12:12 पर। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में आज आप सुनेंगे श्रीमती गार्गी मिश्रा से कहानी एक नई शुरुआत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में 4:02 पर आप सुनेंगे भारत शिंदे का तबला वादन। आप प्रस्तुत करेंगे पंचम सवारी और तीन ताल।

शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के श्रोता सुनेंगे अपना खास कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 7:00 श्री सुमन कुमार की वार्ता का विषय रहेगा जैव विविधता और पर्यावरण। शाम 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति विषय संवाद। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:12 पर, दोपहर 1:15 पर, दोपहर 3:02 पर गाने नए तराने में, शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात 9:30 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर और 4:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.5

0: कन्दुकक्षेपणचक्रेषु चत्वारिंशदधिकैकशतं धावनाङ्कान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया।

0: Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला भजन लता मंगेशकर और साथी की आवाज में मशाल फिल्म से।

आजाद फिल्म से आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम भजन लता मंगेशकर की आवाज में, सी रामचंद्र का संगीत, राजेंद्र किशन की बेहतरीन बोल।

0: फिल्मी भजन का यह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के चलते आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन लागू। NHAI द्वारा गणेशपुर देहरादून मार्ग पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने बूथ स्तर की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के गणेशपुर देहरादून भाग पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन योजना लागू की जाएगी। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए पहाड़ी ढलानों की स्केलिंग और अतिरिक्त मलबा हटाने का कार्य कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राजमार्ग के करीब 1.25 किलोमीटर हिस्से पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। देहरादून की ओर से आने वाले वाहनों को किलोमीटर 14+650 पर लेफ्ट कैरिजवे से राइट कैरिजवे पर स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दिल्ली और सहारनपुर की ओर जाने वाले वाहनों को डाटकाली टनल के बाद पुराने हाईवे मार्ग से होकर निकाला जाएगा। NHAI के अनुसार बरसात से पहले ढलान स्थिरीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यातायात संचालन और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे फ्लैगमैन भी तैनात किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहे इस 6-लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के पहाड़ी हिस्से में पहले ही स्टोन कैचर लगाए जा चुके हैं, ताकि पत्थर गिरने जैसी घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में पार्किंग निर्माण, पेयजल व्यवस्था और जन सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण, अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए हैंडपम्प स्थापना और टिहरी गढ़वाल की हिंडोला खाल पंपिंग पेयजल योजना से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ नगर निगम क्षेत्र में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण और कुंभ मेला 2027 से जुड़े अस्थायी पेयजल मरम्मत कार्यों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और जन सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके। प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। देहरादून स्थित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्यालय में स्थापित 70 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से विभाग के बिजली बिल में भारी कमी दर्ज की गई है। सूचना विभाग के अनुसार पहले विभाग को हर महीने लगभग 1,20,000 रुपए बिजली बिल के रूप में भुगतान करना पड़ता था, जबकि सोलर प्लांट शुरू होने के बाद अप्रैल महीने का बिजली बिल घटकर करीब 1,700 रुपए रह गया है। ये सोलर प्लांट उरेडा द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत स्थापित किया गया है। महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी ने बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन 1,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि ISBT परिसर सहित कई अन्य सरकारी परिसरों में भी सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की गई है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने उधमसिंह नगर जिले के मेलाघाट क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। नेपाल सीमा से लगे इस क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी पर भू कटाव बढ़ रहा है। निरीक्षण के दौरान श्री सुमन ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक स्थानों पर जल्द बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा जिन क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य की आवश्यकता है वहां का प्रस्ताव और आकलन तैयार कर शासन को भेजा जाए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से भी बातचीत कर समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद लोया हेड कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा काल से पहले सभी जरूरी बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे कर लिए जाएं, साथ ही संभावित संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पहले से कार्य योजना तैयार रखने को कहा।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा इन दिनों रफ्तार पकड़ रही है। अब तक देश भर से 13,000 से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रतिदिन 1,000 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा के चलते स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी मजबूती मिल रही है और होटल टैक्सी तथा होम स्टे संचालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
3: तो इस बार बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। अभी तक वर्तमान में 13,000 के पर्यटक यहाँ पर जो है आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा दारमा वैली में पंचचूली में भी जो है काफी ट्रैकर्स वर्तमान में वहाँ पर जा रहे हैं और जो स्थानीय होम स्टे है उनको काफी अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और काफी लोगों को उसमें स्वरोजगार भी मिल रहा है इस वर्ष।
1: वहीं आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालु और पर्यटक खासे भावुक और अभिभूत नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि यहां पहुंचकर उन्हें आध्यात्मिक शांति की अद्भुत अनुभूति हो रही है।
4: ओम नमः शिवाय। मैं मुंबई से आई हूँ। सारी थकान यहाँ पर आकर दूर हो गई है। यहाँ पर मुझे सत्संग में भी शामिल होने का मौका मिला और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं की हैं। रास्ते बहुत अच्छे हैं, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई। हम सुरक्षित पहुँच गए और यहाँ पर आकर हमने आदि कैलाश के दर्शन किए। बहुत खुशी हुई है।
1: आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों ERO और AERO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में SIR अभियान की तैयारियों, प्रशिक्षण और बूथ स्तर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में बूथ लेवल एजेंट की 100% तैनाती नहीं हुई है वहां जिलाधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर जल्द नियुक्ति सुनिश्चित करें, साथ ही नियुक्त BLA का प्रशिक्षण भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में बड़ी आवासीय सोसाइटीज और घनी आबादी वाले मोहल्ले हैं वहां विशेष कैंप लगाए जाएं। इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात कर रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि BLO घर घर सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पहनकर ही फील्ड पर जाएं ताकि कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा या भ्रम की स्थिति ना हो। केदार घाटी और जोशीमठ क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में रुद्रप्रयाग के रतूड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथिगृह और जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत किए जाएं। रुद्रप्रयाग के रतूड़ा गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। भवन का डिजाइन पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्थानीय संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर समन्वय हो सके। इस परियोजना से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आने वाले पर्यटकों और विशिष्ट अतिथियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के चलते आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन लागू। NHAI द्वारा गणेशपुर देहरादून मार्ग पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सुचारू रूप से जारी। अब तक 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम ने बूथ स्तर की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत में संतोषी के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं परवीन कुमार, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर कैलाश चंदध्यानी और हारमोनियम पर सुरेंद्र सिंह।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम शैल संगीत में आप सुन रहे हैं संतोषी के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम शैल संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संतोषी के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: कार्यक्रम शैल संगीत में अभी आप सुन रहे थे संतोषी के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे प्रवीण कुमार, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर कैलाश चंदध्यानी और हारमोनियम पर सुरेंद्र सिंह। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है।

0: सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ

0: लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका

0: भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर

सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के आज के अंक में मैं सुषमा जोशी आप सभी प्यारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज 22 मई का दिन और आज का दिन समर्पित है उस खूबसूरत प्रकृति को जो हमारी धरती को रंगों, खुशबू और जीवन से भर देती है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर पक्षी, हर जीव, हर पेड़ और हर नदी की है। धरती पर मौजूद हर रंग बिरंगा फूल, हर हरा भरा पेड़, आसमान में उड़ते ये प्यारे प्यारे नन्हे पक्षी, नदियों की कल कल ध्वनि और जंगलों की हरियाली, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर फूलों की खुशबू ना हो, पेड़ों की हरियाली ना हो, सभी के मन को भाने वाली ये बारिश की बूंदें ना बरसे और पक्षियों की आवाज़ें ना गूंजे, तो ये दुनिया कितनी बेरंग और कितनी सूनी लगने लगेगी। जैव विविधता ही प्रकृति का वो खूबसूरत संगीत है जो धरती को जीवंत बनाता है। श्रोताओं, प्रकृति हमें बिना कुछ मांगे बहुत कुछ देती है, शुद्ध हवा, पानी, फल फूल और सुकून भरी जिंदगी। पेड़ है तो सांसें हैं, नदियां हैं तो जीवन है, और अगर प्रकृति मुस्कुरा रही है तभी हमारा कल सुरक्षित है। श्रोताओं, प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। तो आज एक छोटा सा वादा खुद से कि जो प्यार प्रकृति हमें हर दिन देती है, हम भी वही प्यार प्रकृति को देंगे, इसका सम्मान करेंगे, धरती को हरा भरा करेंगे और इस प्यारी प्रकृति को और भी खूबसूरत बनाएंगे। श्रोताओं, प्रकृति से प्रेम ही जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। तो आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम में ये प्यारा संगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए अब सुनते हैं स्थानीय महत्व की मुख्य खबरें अखबार के पन्नों से, और ये जुड़े होते हैं आपके राज्य और शहर से। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सुचारू रूप से जारी, अब तक 13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सचिवालय में निरीक्षण से पता लगेगी अनुभागों की स्थिति। बढ़ती महंगाई पर लगाम के लिए जून में ब्याज दरों को बढ़ा सकता है आरबीआई। 7 निशानेबाज नेशनल के लिए चयनित हुए। देश के 59 बोर्ड की परीक्षा में अब एक रूपता की तैयारी। देहरादून समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। देहरादून में आज से शुरू होगा गोल्ड कप का धमाल, और आज से ही होगा मसूरी में शटल सेवा का परीक्षण। और अब हाल मौसम का। 40 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम रहेगा आज का तापमान। और अब प्रोग्राम में आइए सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: राज्य के विकास की डगर, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज की तारीख यानी 22 मई का दिन इतिहास में क्यों है खास। साल 1843 में 6000 लोगों के साथ आज ही के दिन पहला बड़ा वैगन ट्रेन अभियान अमेरिका के ओरेगन ट्रेल की ओर रवाना हुआ। साल 1939 में आज ही के दिन जर्मनी और इटली के बीच पैक्ट ऑफ स्टील समझौता हुआ था। साल 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नई दिशा मिली। साल 1980 में आज ही के दिन जापान की वीडियो गेम कंपनी का प्रसिद्ध गेम पैकमैन लॉन्च हुआ, जिसने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। साल 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी। वो ऐतिहासिक दिन था आज का यानी 22 मई का। साल 1990 में उत्तर और दक्षिण यमन का एकीकरण हुआ और आधुनिक यमन देश बना। तो ये थी आज की तारीख यानी 22 मई का दिन इतिहास के पन्नों से। और अब वक्त हो चला है प्रोग्राम में अगले गीत का।

श्रोताओं, कुछ लोग सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया बदलाव छोड़ जाते हैं। आज 22 मई का दिन भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिन्होंने समाज में नई सोच और जागरूकता की रोशनी जगाई। आज है महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की जयंती। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने उस दौर में समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जब ऐसा करना आसान नहीं था। सती प्रथा को समाप्त करने और महिलाओं को सम्मान दिलाने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और समानता के लिए जो संघर्ष किया वो आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। ज्ञान और जागरूकता से ही समाज में असली बदलाव आता है। उन्होंने लोगों को नई सोच, समानता और मानवता का संदेश दिया। आज उनकी जयंती पर हम भी अच्छे विचारों को अपनाएं और समाज में सकारात्मकता फैलाएं। श्रोताओं, राजा राम मोहन राय जैसे महान लोग इतिहास में नहीं लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा है आपसे कल फिर होंगे हाजिर नए साथी के साथ। आप सभी मेरे प्यारे श्रोता, इस तेज गर्मी में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ दीजिए सुषमा जोशी को अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी।

ये गीत जहाँ हर धुन में छुपी होती है यादें, हर गीत में बसता है प्यार और हर सुर दिल को छू जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे आरोप फिल्म से। गोविंद के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी भूपेन हजारिका ने। श्रोताओं, सदाबहार गीत यानी कभी न खत्म होने वाला सफर, ये गीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं बल्कि ये गीत भावनाओं की विरासत है। कभी मुस्कान बनकर तो कभी जीवन की में रंग भरने वाली एक मधुर प्रेरणा बनकर।

संतोष आनंद की खूबसूरत बोल अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। प्यासा सावन फिल्म का ये गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला तराना मोहम्मद रफी के स्वर में कन्यादान फिल्म से। नीरज के बोल, संगीतकार है शंकर जयकिशन।

वक्त बदल जाता है लेकिन कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते। सदाबहार गीत वो चिराग हैं जो घने अंधेरे में भी हर दफा रोशनी देते हैं।

श्रोताओं, कुछ नगमे वक्त नहीं एहसास लिखते हैं, इसीलिए हर दौर में बेहद खास लगते हैं। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आप सभी तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपको कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनवाने का, लेकिन चलते चलते आपसे यही कहेंगे, आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, गर्मी के मौसम में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ गीत गाता चल फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत जसपाल सिंह की आवाज़ में। संगीत और बेहतरीन बोल हैं रविंद्र जैन की।

सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद अभी आप ले रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अनुभव में डॉक्टर देश दीपक कुलपति से संकल्प मिश्रा की भेंट वार्ता।

श्रोताओं, कार्यक्रम अनुभव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं संकल्प मिश्रा आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर देश दीपक जी, जो कि राजबिहारी बोस

0: सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे। आप पेशे से डॉक्टर रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, उसके बाद आप एकेडमिक्स में आए हैं और आज एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो सबसे पहले तो देश दीपक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद अंकल जी, आपको नमस्कार और आपके समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने आज बुलाया अब मेरे जीवन पे चर्चा करने के लिए, तो आप बताइए कहाँ से शुरू करें।
0: हम अनुभवों की बात करते हैं और अनुभव हमारी यादों में सिमटे होते हैं। अपने बचपन की सबसे खास कौन सी वो बात है जिन्हें संजोए हुए रखे हैं और हमारे श्रोताओं के साथ साझा भी कर सकते हैं?
1: देखिए, मेरा जन्म जो हुआ मेरठ में, मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी थे और उनका ट्रांसफर होता रहता था, स्थानांतरण। तो मैं बचपन में रुड़की 1 साल रहा, फिर बदायूं 1 साल रहा, फिर पीलीभीत 1 साल रहा। तो वही 1, 2, 3, 4 क्लासेस हम पढ़ते रहे। तो वो बचपन में मुझे याद है 1965 की लड़ाई हुई थी, तब हम रेडियो सुना करते थे, मैं तो बहुत छोटा था। और जो आपने कहा कि सबसे अच्छी खास क्या बात है, तो वैसे तो बहुत है, लेकिन एक मुझे आती है बार बार याद कि मैं मुजफ्फरनगर में पढ़ता था 6ठी कक्षा में, और ड्राइंग की क्लास हुआ करती थी, चित्रकला की। तो मेरी चित्रकला ईश्वर की कृपा से बहुत खराब थी। तो एक मेरा मित्र था उमेश, उसकी बहुत अच्छी ड्राइंग थी। तो एक बार गुरुजी ने कुछ बनाने के लिए दिया, तो वो चूंकि हम या तो बना नहीं पाए या हम कॉपी भूल गए या जानबूझ के भूल गए, तो कॉपी फिलहाल हम पे नहीं थी। तो टीचर जी ने, गुरुजी ने कहा सब खड़े हो जाओ और अपनी अपनी कॉपी अपने सामने रख लो। फिर उन्होंने एक कमची मंगाई जो पेड़ से तोड़ के, कमची समझते होंगे हमारे श्रोता, आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, पुराने ज़माने में पतली सी टहनी तोड़ी जाती थी। तो वो उनको उन्होंने हाथ में ली और सब बच्चों से कहा सब खड़े हो जाओ, और वो आते थे, जिसकी कॉपी ठीक थी उसको छोड़ देते थे और जिसकी कॉपी नहीं होती थी तो वो आगे हाथ कर लेता था, उस पर कमची पड़ती थी। हम बड़े डरे हुए थे। तो जब वो टीचर हमारी तरफ आ रहे थे, तो हमारे मित्र ने अपनी कॉपी सरका के हमारे सामने कर दी और हम बच गए। और उस मेरे मित्र के हाथ पे जब कमची पड़ी और उसका जैसे मुंह बना, वो मुझे आज तक याद है। उसने हमारे लिए अपनी कॉपी आगे कर दी, ये बात जीवन में हमेशा याद रही, आज भी याद है, और ये बहुत काम आई आगे। कि आप कितने भी अच्छे कलाकार हों, जीवन में कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन आप किसी और के काम आ सकते हैं, तो वो टैलेंट इस टैलेंट से बहुत बड़ा होता है।
0: किसी और के काम आना, ये एक मजबूत दोस्ती की नींव भी डालता है। आपने बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया कि एक दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि वो वाकया आपके जीवन में आज तक आपको याद है। दोस्ती को किस नज़रिए से आप देखते थे जब स्कूल लाइफ में रहे? और स्कूल में टीचर्स का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, जैसे माँ बाप का घर में होता है। टीचर्स को कैसे देखते थे? जैसे बहुत से बच्चे शैतान होते हैं, टीचर से बचने की कोशिश करते हैं। आप की जो स्कूल लाइफ रही वो कैसी रही?
1: मैं जब बड़ा हुआ तो बहुत शैतान हो गया, लेकिन जब मैं छोटा था तो बहुत बुद्धू था। तो उस समय तो दोस्ती का मतलब ये था कि कोई मुझे बचा ले, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने फिर वो पलट के अपने दोस्तों को बचाया। एक टीचर्स की, जैसे आपने बात की कि अनुशासन के लिए वो छड़ी का सहारा लेते थे, ऐसा हमेशा नहीं था। आजकल भी छड़ी का तो नहीं खैर, लेकिन छड़ी बातों से की जाती है। मैं भी टीचर हूँ तो सब बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डरते भी हैं। हालांकि अब ये तो है नहीं कि मैं उन्हें चड़ी मारता हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके थे पहले में और अब में। मुझे याद है हमारे एक गुरुजी थे त्रिभुवन गर्ग जी, वो सहारनपुर में हमें 10वीं क्लास में साइंस पढ़ाते थे। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोलने की। एक बार मुझे चेचक निकल आई, तो मैं घर में 15 दिन बुखार में पड़ा रहा। तो मुझसे मिलने के लिए वो मेरे घर आए, त्रिभुवन गर्ग सर, और वो मेरे सिरहाने बैठे और उन्होंने इतने प्यार से मुझसे बात की कि मुझे लगा ही नहीं कि ये वही हैं। तब मुझे पता चला कि प्रेम और अनुशासन, ये टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी मानव है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तब मुझे पता चला था कि देखिए कितना प्यार करते हैं, और मैं तो इनसे इतना डरता था। तो टीचर्स चाहे तब के हों या अब के हों, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना तो नहीं है, उनके साथ बच्चों को पहले थोड़ा सा डराना और फिर खूब सारा प्यार करना। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बचपन की तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, वो डरते तो खूब हैं, फिर मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग इट टू यू, बिकॉज आई लव यू ऑल, यू आर लाइक माई चिल्ड्रेन।

0: वो चीज़ इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं हमेशा।
1: स्कूल और कॉलेज की लाइफ में डिसिप्लिन का तो एक महत्वपूर्ण रोल होता ही है, साथ में मानसिक दबाव भी रहता है। अगर हम खासकर 10वीं और 12वीं की बात करें, आज प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करवा रहे हैं। आपके समय में भी जब हम किसी मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते थे, तब इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ लेना परिवार को एक दूसरी दिशा में ले जाता था, जिसकी सभी उम्मीद और मनोकामना भी करते थे। स्कूली पढ़ाई के दौरान, चूंकि बाद में आपने डॉक्टरी की, आप पे कितना मानसिक दबाव था, उसको कैसे मैनेज करते थे उस समय?
0: मानसिक दबाव तो इतना था कि मन करता था कि भाई हम कहीं विलुप्त हो जाएं। हमारे पिताजी बड़े अनुशासन के थे, पुलिस ऑफिसर थे, वो खुद अपने ज़माने के टॉपर थे, यहाँ मिशन स्कूल में नंबर वन रहे वो, फिर यूपी बोर्ड में उनकी पूरे स्टेट में चौथी पोजीशन थी सन 45-46 में। तो नेचुरली वो चाहते थे कि मेरा बेटा मेरी ही तरह हो, लेकिन मैं बचपन से ही बड़ा सिर्फ पढ़ाई वाला बच्चा नहीं था। जब मैं रामपुर में पढ़ता था जुल्फकार हाई स्कूल में, तो वहाँ की लाइब्रेरी में जो पुस्तकें थी किशोर पुस्तकमाला की, उसमें रॉबिन्सन क्रूसो, गुलिवर्स ट्रेवल्स और ये दुनिया तमाम की किताबें थीं, वो सब मैं जाके एक एक दो दो करके पढ़ता रहता था, हालांकि वो कोर्स की नहीं थी। हमारे घर में कल्याण मैगजीन आती थी गीता प्रेस गोरखपुर की, वो मैं पढ़ा करता था दोपहर में जब सब सो जाते थे। उससे मेरी हिंदी बड़ी इम्प्रूव हुई, उसमें बड़ा सुधार हुआ। तो मेरे पिताजी बचपन से कहते थे कि लैंग्वेज जो भी बोलो शुद्ध बोलो। तो एक तो ये मेरे दिमाग में बात रही। मेरे पिताजी ने एक बार ये कहा था कि कोई राजा हर्षवर्धन हुए थे, तो मुझसे बोले राजा हर्षवर्धन जो थे वो गुणों के खान थे, उन्हें सब कुछ आता था। वो ही वॉज आर्टिस्ट भी थे, वो शिकारी भी थे, और योद्धा तो थे ही, और राजा तो थे ही, और वो दयावान भी बहुत थे। इस बात का मेरे मन पे बहुत असर पड़ा और मैं कोशिश करता रहा कि जीवन भर जिज्ञासु रहूँ, नई चीज़ सीखता रहूँ, जो आज भी मेरा चल रहा है। प्रेशर की बात यह है कि उस ज़माने में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या IAS, ये तीन ही थे। IAS बनना तो का ध्यान कम रहता था मध्यम वर्गीय परिवारों पर, वो डॉक्टर इंजीनियर ही चाहते थे। आज जो मैं डॉक्टर बना हूँ, पिताजी का हमारा जोर था, अगर वो ना होते तो मैं या तो जर्नलिस्ट बन जाता या कुछ और करता, डॉक्टर तो कतई ना बनता। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था अलावा डॉक्टर बनने के, तो इसलिए मैं मजबूरी में डॉक्टर बन गया। मैंने परीक्षा पास की, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था उस ज़माने में 1978 में उत्तर प्रदेश में, तो उसमें मैं पास हुआ। मेरठ मेडिकल कॉलेज में मैंने LLRM मेडिकल कॉलेज से मैंने किया। बस फिर पास करने के पढ़ने के दौरान मेरे पिताजी को हेमिप्लीजिया होती जैसे फालिस कहते हैं, वो हो गया, तो मुझे फिर देहरादून वापस आना पड़ा। मैं MD नहीं कर पाया, तो मैंने 18 साल तक मैंने देहरादून में प्रैक्टिस की, और उन 18 सालों में मैंने सब कुछ किया जो कर सकता है आदमी, और मेरी अच्छी रेपुटेशन थी। लेकिन एक डॉक्टर को फिनेंशियली जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा मैं, लेकिन मैंने घर का पूरा ध्यान रखा, और फिर MD का मौका जब मुझे मिला तब मैंने की।
1: निश्चित ही हम अपने बनाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत का भी एक बड़ा रोल रहता है किसी की भी ज़िंदगी में, लेकिन उस किस्मत को भी हम अपने संघर्ष से मात दे सकते हैं। इस बारे में हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि आपने बहुत मेहनत की, आपके घर में एक माहौल था डिसिप्लिन का, थोड़ा बताइए, जब रिज़ल्ट आया आपका, एडमिशन हो गया MBBS के कॉलेज में, तब घर में उस दिन कैसा माहौल था और कॉलेज की लाइफ आपकी कैसी बीती?
0: जिस दिन मैं PMT में पास हुआ, तो मैं रोज़ साइकिल लेके जाता था बस अड्डे के पास, अखबार की वो थी एजेंसी, तो उस दिनों नेशनल हेराल्ड में अखबार में रिजल्ट छपता था, उन दिनों इंटरनेट या यह तो नहीं था, तो मैं आने वाला था, मैं रोज़ जाता था। तो एक दिन मैं गया तो वो था रिजल्ट छपा हुआ, तो मैंने उसमें ढूंढा तो मेरा रोल नंबर था 10566। देखिए आज तक याद है मुझे, और 10566 में मुझे लगा कि यार ये 10566 है या 10556 है, तो मुझे रहा anyway, तो मैंने वो रिजल्ट का अखबार जो था अपनी साइकिल के कैरियर में अटकाया और मैं घर आ गया। जब मैं घर आया तो ये सोच के कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो सूचना घर में पहले ही आ गई थी। तो हमारे पिताजी जो जिनसे हम बहुत डरते थे, बहुत प्यार करते थे हमें, तो हंस के सिर्फ इतना बोले, भाई बहुत मेहनत की बस, आजकल तो लोग गले लग जाते हैं, केक कटते हैं और क्या क्या होता है, तब उनका इतना ही कहना बहुत था कि भाई बहुत मेहनत की। और एक हमारे जीजा जी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो उसमें दाढ़ी बना रहे थे, तो साबुन लगा हुआ था उनके मुंह पे, तो मेरी तरफ उन्होंने नज़र की और हंसे, हा हा हा बस दैट्स ऑल। तो यही सेलिब्रेशन हुआ था मेरे घर में, और शायद शाम को जलेबी आई थी जितना मुझे याद है, लेकिन हम सब लोग बहुत खुश थे। एक तरीके से दुनिया पलट गई थी, मेरी नहीं मेरे परिवार की। और जब मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज जा रहा था बस में बैठ के, तो पिताजी छोड़ने आए, तो पिताजी के कोई दोस्त मिल गए बस के नीचे, उनसे बात करने लगे। तो जब उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि मेरा बेटा मेरठ जा रहा है, ये डॉक्टरी में सेलेक्ट हो गया है, तो बाद में पिताजी ने बताया कि मुझे लगा कि मैं ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठ गया हूँ, इतना गर्व उन्हें महसूस हुआ।
1: आज भी इन बातों को सुन करके हम भी उतना ही रोमांचित महसूस कर पा रहे हैं जितना आपने उस समय महसूस किया होगा। डॉक्टर देश दीपक जी, अब कार्यक्रम में वो पड़ाव आ चुका है जहां हम अपनी मेहमानों की पसंद का एक गीत लेते हैं। आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवा सकते हैं?
0: तो जीवन तो गीतों से ही भरा है, मैं सोच रहा था आते हुए कि कौन सा गीत सुनाना चाहिए मुझको, तो कई गीत हैं, मुझे रवि साहब बहुत पसंद हैं, तो लेकिन इस अवसर पर मैं हेमंत कुमार जी का गाना है तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है।
1: सुबह सुबह के इस समय में हम आपको ये गीत अपने श्रोताओं के साथ सुनाते हैं। इस गीत को हमारे श्रोता भी उतना ही इंजॉय करेंगे जितना आपने इस गीत को कभी इंजॉय किया है।

0: मिला हुआ है। भगवान के बाद उनका नाम लिया जाता है। आपने जितने साल प्रैक्टिस की, आपका अपना अनुभव कैसा रहा है?
1: मेरा अपना अनुभव, जैसे आपने प्रैक्टिस के बारे में कहा, अच्छा रहा और अच्छा नहीं रहा इस बारे में कि उन दिनों एमबीबीएस को लोग पूरा डॉक्टर नहीं मानते थे। जब मैं पैदा हुआ हूँगा उस ज़माने में देहरादून में एक दो डॉक्टर थे एमबीबीएस, वो ही पूरा देहरादून देखते थे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन जब तक हम बड़े हुए तब तक एमबीबीएस एक तरीके से आधा रह गया था कि उसके बगैर एमडी के बिना वो पूरा नहीं माना जाता। तो मैंने जो प्रैक्टिस की बहुत अच्छी की, बहुत लोग मानते, अभी भी मानते हैं। हालांकि जिन बच्चों को मैंने कभी पोलियो का टीका लगाया होगा वो अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगवाते हैं, तो वो सब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और मुझे शुरू से ही शौक रहा, नहीं, जैसे मैं क्यूरियस में रहा तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक है, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, पता नहीं और क्या क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी के शौक में मज़ेदार बात यह थी कि मैं जन्मपत्री देखना शुरू किया था, तो मेरे मरीज दवाई भी लेने आते थे और जन्मपत्री भी लेके आते थे। तो मेरी अलमारी में एक तरफ एक्सरे भरे हुए थे और एक तरफ जन्मपत्री, और वो कभी एक्सरे मिल जाते थे आपस में, कभी जन्मपत्री आपस में मिल जाती है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपने कहा कि क्या अनुभव है, प्रैक्टिस के अच्छे अनुभव रहे। उन दिनों एक बड़ी अच्छी बात घटी कि मेरे पास पैसे उतने नहीं हुआ करते थे, तो मन था कार लेने का, तो हमने कहा चलो एक सेकेंड हैंड कार लेंगे, फिएट। तो मैं ढूंढता रहा उसको, लेकिन मन में लगन बहुत थी। तो किसी ने जैसे कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसको दूसरी तरह से लेते हैं कि जब हमारे अंदर प्रचंड इच्छा होती है तो ईश्वर उसको साकार कर देते हैं अगर चाहें तो। तो एक ऑल इंडिया प्रतियोगिता थी हिंदुस्तान टाइम्स में, देश की 50वीं स्वतंत्रता के अवसर पर, दिवस के 1997 में। तो उसमें अखिल भारतीय स्तर पर वो प्रतियोगिता अखबार में आई, उसके चार चरण थे, उसमें पांच सवाल होते थे और भी कुछ कुछ होता था। तो सवाल बड़े टिपिकल थे कि गांधी जी 15 अगस्त 1947 को कहाँ थे, या पहली बार लाल किले पर झंडा किस दिन फहराया गया, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, इस तरह के सवाल थे। तो मैंने फिर देखा कि पहली बार जो झंडा था वो 15 अगस्त को नहीं फहराया गया, वो झंडा 19 अगस्त को फहराया गया था, क्योंकि 15 अगस्त को तैयारियां नहीं हो पाई थी और गांधी जी 15 अगस्त सन 1947 को दिल्ली में नहीं थे, वो नोआखली में थे, बंगाल में, इस तरह के सवाल थे। खैर, हमने उसमें भाग लिया और एक दिन अखबार में देखा, फोन आया कि भाई बधाई हो, तुम्हें ऑल इंडिया फर्स्ट प्राइज मिला है। तो हमें ऑल इंडिया फर्स्ट प्राइज मिला, अखबार में नाम छपा, और वो प्राइज था ब्रांड न्यू मारुति डिलक्स कार, जो कि उन दिनों बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी, एक ही कार थी मारुति। तो ईश्वर ने हमें हमारी इच्छा ऐसे पूरी कर दी कि हमें कार मिल गई बिना पैसे खर्चे, और साथ में सम्मान तो हुआ ही, पूरे देहरादून वाले कहने लगे भाई वाह डॉक्टर साहब कमाल कर दिया। तो एक ये बात मुझे प्रैक्टिस के दिनों की याद आती है, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यह है कि प्रैक्टिस उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो इसके लिए बने हों। देखिए, प्रैक्टिस करने में सफलता या असफलता कहें या फिर कुछ भी कहें, प्रैक्टिस इस ज्ञान और साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस का भी होना चाहिए। आफ्टरऑल मरीज आपको पैसे देता है, अगर आप बिल्कुल ही पैसे लेते हुए शर्माएंगे या आप ले ही नहीं पाएंगे तो फिर नहीं चलेगा मामला। तो मैं प्रैक्टिस के लिए था ही नहीं, मैं बड़ा संकोची था पैसे के मामले में, आज भी हूँ। तो फिर जब मैंने एमडी की 2001 से लेकर 4 में, फिर मैं जब एकेडमिक्स में आया तो जो मुझे बोलने का शौक था बचपन से और चीज़ों को समझाने का शौक था और जो मेरी अपनी इंटेलिजेंस ईश्वर ने दी, उसके बाद मैंने एकेडमिक्स में मैं बहुत ही चमका, ईश्वर की कृपा से मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज प्रोफेसर्स हैं, उनके बच्चे भी मेडिकल में जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं, एकेडमिक्स में मैं बड़ा सफल हुआ। अगर आप किसी 10-12 साल के बच्चे को ये कहें कि जीवन का क्या अनुभव है, अगर आप 2 लाइनों में, तो मैं उसे ये कहूँगा कि बड़े होकर जीवन में तुम सफल होंगे तो इस सफलता की परिभाषा अपनी स्वयं के रखना, सफल अपने लिए होना, संसार के लिए नहीं। सफलता कोई बहुत महल बनाने में या धन अर्जन होना ही सफल नहीं है, आपके मन में जो इच्छाएं हैं उनको आप पूरी करें, अपने परिवार की और अपने समाज के लिए जितना हो सकता है उसको सहयोग करें, उसका समाधान करें, और अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता का जरूर ध्यान रखें। कहीं सफल होने के लिए आप अपनी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि मैं कहूँगा प्रसन्नता का जरूर ध्यान रखें। हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
0: डॉक्टर देश दीपक, आपने जिस समय में भारत में लिटरेसी रेट बहुत कम

0: था उस समय में, एक प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके MBBS किया। फिर उसके बाद आपने कई सालों तक प्रैक्टिस की और बाद में आप खुद एकेडमिक्स में आए, तो आपके पास एक पूरा पैनोरामिक व्यू है इस क्षेत्र का। थोड़ा बताइए, जो भविष्य में डॉक्टरी का पेशा रहेगा, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर को एक बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच भी रखना ही चाहिए, क्योंकि सेवा के लिए ज़रूरी है कि आपके आय अर्जन भी हो। अब AI इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, आप ही बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, आने वाला समय इस पेशे के लिए कितना बदलने वाला है? बहुत सी बातें हो रही हैं इस समय, नए ड्रग्स आ रहे हैं, कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स आ रहे हैं। कैंसर आज के समय में उतनी बड़ी बीमारी नहीं रह गई जितना आज से 15 से 20 साल पहले रहती थी। अगर आप बर्ड्स आई व्यू के लहजे से बात करें, आपको अगले 15 से 20 साल में क्या बदलाव नए नज़र आते हैं?
1: AI के आने के बाद से बहुत सारी जो स्किल्स थी, क्लिनिकल स्किल्स, वो अब धीरे धीरे रिप्लेस तो पूरी तरह नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें सहायता मिलने लगी है AI के कारण। अंत में जाके तो डॉक्टर ही है जो मरीज की सांसों को चलाएगा या उसमें सहायता करेगा। तो डॉक्टरी की जो विद्या है, वो अगर ये देखा जाए कि अनुपात देखें कि टाइम स्पेंट एंड द रिटर्न रिसीव्ड, उसमें उतनी आकर्षक नहीं है। और अगर आप कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सफल हो भी जाए पढ़ाई में, उसके बाद वो जीवन में धनार्जन के हिसाब से कितना होगा, इसका भी कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है कि ज़्यादा होशियारी होगा या कम होशियारी होगा। बहुत सारे हमारे ज़माने में तो इंजीनियर डॉक्टर यही थे या बैंक की नौकरियाँ थीं, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। डॉक्टरी में वही आए जो अपने 15-20 साल कड़ी मेहनत के देने के लिए तैयार हो, नहीं अन्यथा बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड हैं जहाँ पे लोग बच्चे जाकर अपना अच्छा करियर बना सकते हैं।
0: डॉक्टर देशदीपक, आपने एकेडमिक्स के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव हासिल किया है। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 20 से 25 सालों में, उसकी फहरिस्त लंबी है, हम उस पर बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें आगे भविष्य में सुधार की गुंजाइश है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और अंत में श्रोताओं को क्या बताना चाहें?
1: सुधार की आवश्यकता, अगर हम हार्डकोर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज की बात करें तो वो तो अपनी गति से अपने आप होती हैं। भारत अकेला नहीं है, विश्व के साथ चल रहा है। जो नई नई खोज होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, ड्रग्स आती हैं, टेक्निक्स होती हैं, ये पहले विश्व में डेवलप होती हैं, फिर भारत में भी आती हैं। कई टेक्निक सर्जरी की हम डेवलप करते हैं जो दुनिया हमसे सीखती है, वो तो अपनी गति से चलेंगे। आपका जो प्रश्न है शायद इसका है कि हम इसमें क्या सुधार हमें करना चाहिए। मेरे विचार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सुधार होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े अस्पताल जहां आप जाते हैं, वहां जितनी अच्छी तरह से मरीज मैनेज होता है, मरीज को अगर लाइन है तो ठीक से हो, अगर भर्ती है तो भर्ती होने में दिक्कत ना हो, मरीज भर्ती हो जाए तो उसको ऑपरेशन के बाद दिक्कत ना हो, ये सब चीज़ें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आती हैं। इसमें हमारा देश जो है उसमें भी और सुधार की गुंजाइश है। हालांकि हमारे देश में जो जो सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट पहले से तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें भी कार्य होना चाहिए। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ में, जो पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि जो एजुकेशन टू पीपल अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ देमसेल्व्स। डॉक्टर तो हर जगह नहीं जा पाएगा, तो पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से काम होना चाहिए।
0: और अंत में डॉक्टर देशदीपक, ज़रूरी सवाल पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। हम विश्व स्तर पर बात करें तो भारत एक सस्ती और अफोर्डेबल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। मेडिकल सर्विसेज यहाँ पर बहुत ही सस्ती और अफोर्डेबल हैं, लेकिन जब हम अपने ही देश में बात करें, इनकम ग्रुप्स की बात करें, तो ये उतनी अफोर्डेबल नहीं रह जाती अपने ही देश के लोगों के लिए जितनी होनी चाहिए। भविष्य में आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या इसका कोई समाधान है? और अगर वो समाधान है तो वो किस रूप में हमारे सामने आएगा? वो कितना ऑर्गेनिक हो सकेगा, जो बिना इन्फोर्स किए, बिना लोगों को कानूनों में बांधे हुए, क्या कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है?
1: देखिए, ये समस्या, इसको हम समस्या नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं अफोर्डेबल चिकित्सा, अफोर्डेबल का मतलब है धनराशि से, है ना? जो अस्पताल हैं, जो उसका जो खर्चे हैं वो तो हैं, अस्पताल बनाने में भी पैसा लगेगा, उसमें जो ऑपरेशन थिएटर्स होंगे उनमें भी पैसा लगेगा, जो हमारे टेक्नीशियंस वहाँ काम करेंगे उनको सैलरी भी देनी है। देखिए, ये खर्चे तो होंगे ही होंगे। आपने दो बातें कही कि भारत में सस्ती सुविधाएं हैं इन कंपेरिजन टू अब्रॉड, और वही सुविधाएं हमें

0: अफोर्डेबल लगती हैं। कारण सिर्फ ये कि हम अफोर्ड कर नहीं सकते, हमारा जो हमारे आय का जो स्तर है देश का वो अच्छा नहीं है, इसीलिए जो चीज़ औरों को सस्ती लगती है वो हमें महंगी लगती है। और देशों से हम इसलिए सस्ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और देशों से कम है, और दूसरे हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो और देशों से सस्ते हैं। और देशों में अगर बच्चे की देखभाल करने वाली जो महिला होती है उस और हमारे देश में जो महिला होती है उसमें 50 या 100 गुने का फ़र्क है धनराशि में। इसी तरह वहाँ के डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं। मैं परिवारों को जानता हूँ जिनको जब वहाँ बुखार आता है तो वो इंडिया वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टर 3 महीने का अपॉइंटमेंट दे रहा है और यहाँ तो 20 दिन में वो ठीक होकर वापस भी चले जाएंगे। वहाँ के मुकाबले हमारे देश का बिल्कुल इस सब कुछ अलग है। हाँ ये है कि हम अपने देश की जो धनार्जन है या जो हमारे देश का जो गरीबी रेखा है इसे किसी तरह से ऊपर करें। और रही बात मेडिकल सर्विसेज की, तो प्राइवेट सेक्टर में तो उन्हें अपने खर्चे निकालने ही हैं और सरकारी सेक्टर के जो अस्पताल हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे पहले से, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। सरकारी के अस्पताल और जितने जनता है हमारी उसका बोझ में कोई अनुपात बैठता नहीं है ठीक से। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो चिकित्सा का स्तर है और उसकी जो सुलभता है वो दिनों दिन बेहतर होती जा रही है।
1: क्या मेडिकल इंश्योरेंस इसके लिए एक समाधान हो सकता है, जैसे कि आयुष्मान योजना है या इस तरह की और रिफाइंड स्कीम्स भविष्य में आए सरकार की ओर से?
0: मेरा तो ये मानना है कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाना चाहिए। जैसे और देशों में मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर काम, ऐसे हमारे देश में भी, वहाँ तो और देशों में तो बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो, इतने महंगे हैं वो। हमारे देश में भी जागरूकता बढ़ रही है और मेडिकल इंश्योरेंस का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अपनी कहूँ तो मैंने अभी घुटना बदलवाया है 6 महीने पहले और उसके 4.5 लाख रुपये इंश्योरेंस नहीं दिए, है ना, ये तो मेरी जेब से जाते। इंश्योरेंस हम सबको कराना चाहिए। और जो सरकार की आयुष्मान भारत है, इस प्रकार की जो अन्य योजनाएं हैं, इनसे स्वरूप बदल गया है देश का। मैं कितने मरीज हैं जो कहते हैं कि अगर आयुष्मान भारत ना होता तो इसका ना तो ऑपरेशन होता ना ये बचता। तो बीमा जो है, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो या और जीवन बीमा हो या कोई भी बीमा हो, बीमा की जागरूकता जनता में फैलानी चाहिए हम लोगों को।
1: डॉक्टर देशदीपक, आज आप आकाशवाणी में आए और आपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ आपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुभवों को बहुत ही विस्तार में साझा किया हमारे श्रोताओं के साथ। इसी के साथ आपने अपनी राय रखी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिन पर लोगों को आज के समय में जानकारी होनी चाहिए। आकाशवाणी से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम अनुभव में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर देश दीपक कुलपति से संकल्प मिश्रा की भेंटवार्ता। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप पंकज सनवाल खुलबे से न्यूज हेडलाइंस सुनिए। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के चलते आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन लागू। NHAI द्वारा गणेशपुर देहरादून मार्ग पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। पंज प्यारों की अगुवाई में आज गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए रवाना होगा पहला जत्था। गुरुद्वारा ट्रस्ट ने पूरी की तैयारियां, कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा सुचारू रूप से जारी, अब तक 13,000 से अधिक श्रद्धालु ने किए दर्शन। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने बूथ स्तर की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्यालय में स्थापित 70 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से विभाग के बिजली बिल में भारी कमी दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने उधम सिंह नगर जिले के मेलाघाट क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का किया निरीक्षण। यात्रा शुरू होने के एक माह के भीतर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 16,50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत चीन

जी के ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा, वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादी जी उसे बाहर लेकर आई तो लड़का हैरान हो गया। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसने दादी जी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और अंदर वाला पौधा उतना विकसित नहीं हो पाया, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित था। दादी जी ने उसे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल होती है। सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस यही है। कहानी का तर्क यही है कि मुश्किलों का सामना करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, लहरों से डरकर नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this wonderful motivational story, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। हम हैं राही प्यार के इस फिल्म से शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत की। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल।

फिल्म संगीत में जीत फिल्म से सुनवाते हैं आपको अगला तराना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत में यस बॉस फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल स्वर में, जावेद अख्तर के बेहतरीन बोल, जतिन ललित का मधुर संगीत।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवस्थापना विकास, पेयजल व्यवस्था तथा जन सुविधाओं के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए 29 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के साथ जन सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन होने से प्रदेश की जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा के गणेशपुर देहरादून भाग पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन योजना लागू की जाएगी। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए पहाड़ी ढलानों की स्केलिंग और अतिरिक्त मलबा हटाने का कार्य कराया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा अब तक देश भर के 13,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रतिदिन 1,000 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। पर्यटकों की बढ़ती आमद से स्थानीय पर्यटन कारोबारों को भी मजबूती मिली है और होटल, टैक्सी और होम स्टे संचालकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। प्रदेश में चारधाम यात्रा भी इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। यात्रा शुरू होने से अब तक उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा शुरू होने के एक माह के भीतर केदारनाथ धाम में श्रद्धालु की संख्या 16,50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि प्रतिदिन 30,000 से अधिक यात्री विभिन्न धामों के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में 2 अहम परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठकों में रुद्रप्रयाग जिले के रतूड़ा गांव में प्रस्तावित राज्य अतिथिगृह तथा चमोली जिले के जोशीमठ के रविग्राम में प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग परियोजना पर चर्चा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने और आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के निर्देशों के क्रम में नैदानिक स्थापन अधिनियम के अंतर्गत गठित टीम द्वारा कल 6 चिकित्सालयों में औचक निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व कर रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप राणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले के कई अस्पतालों का संचालन नैदानिक स्थापन अधिनियम में पंजीकरण के बिना किया जा रहा था। टीम द्वारा बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे इन अस्पतालों को मौके पर बंद करवाया गया। वहीं कुछ अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ मौजूद न पाए जाने के कारण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के बिना संचालित चिकित्सालयों को बंद किया जा रहा है। साथ ही स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं संबंधित मानकों में ढील बरतने वाले चिकित्सालयों से भी जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में गोपाल दास और साथी के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुन रहे हैं गोपाल दास और साथी के गाए जौनसारी लोकगीत।

कार्यक्रम लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे गोपाल दास और साथी के गाए जौनसारी लोकगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100।

0: 105.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11 बजने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: वे अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम श्री जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And right now the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है. अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद.
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का. और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा.
3: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है. यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
4: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है।

0: अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
1: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
0: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
0: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा

0: रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुंचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi। तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उपकमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी

संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य, पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह, द गेस्ट ऑफ ऑनर ओवर हियर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई, और जब से BSF की स्थापना हुई है सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया, और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है, और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम BSF ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी BSF की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की

उभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहाँ बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है, और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे, वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां,
हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 270,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए 3 हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में
गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता।
समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण।

0: हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज वन, वाइब्रेंट विलेज टू आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले एक साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नार्कोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: Hello, a memento was given to the Home Minister by the DG of the Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय
5: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: Come to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force, and well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall, and it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। ये आकाशवाणी है।

0: राज्य अतिथिगृह और चमोली जिले के ज्योतिर्मठ के रविग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग परियोजना को मिली रफ्तार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर ढलान स्थिरीकरण कार्य के चलते आज से 8 जून तक यातायात डायवर्जन लागू। एनएचएआई द्वारा गणेशपुर देहरादून मार्ग पर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यापार की तैयारियों के संबंध में आज पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में बैठक की गई। फार्मर रजिस्ट्री साइट के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे व पारदर्शी तरीके से प्राप्त होगा। चंपावत से आज वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण व अद्यतनीकरण के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के सभी बीएलओ, सुपरवाइजरों और चुनाव अधिकारियों का प्रथम चरण का होगा प्रशिक्षण। देहरादून के निजी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया औचक निरीक्षण और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने उधम सिंह नगर जिले के मेलाघाट क्षेत्र में जगबूढ़ा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का किया निरीक्षण। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए शब्द।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे दें। आज शाम 5:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्मौन आकाशवाणी का 30वां भाग। आज इस पॉडकास्ट के अंतर्गत सुश्री एन राजम, जो कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, उनसे आज बातचीत होगी। समय याद रखिए, शाम 5:10 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों की गाए शब्द। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय ठीक 12:30 हुए हैं और अब हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी। बहनों, आज हम बात करेंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और जीवन में टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता। बहनों, हर साल 22 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता यानी हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, जंगल और प्रकृति की अनमोल संपदा। जरा सोचिए, अगर पेड़ ना हो, पक्षियों की चहचहाट ना हो, नदियां सूख जाएं, तो क्या हमारा जीवन सुंदर रह पाएगा? नहीं ना। प्रकृति हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देती बहनों, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग और जंगलों की कटाई जैव विविधता के लिए खतरा बनती जा रही हैं। बहनों, जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। जैव विविधता की समरसता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है बहनों, कि हम अपनी धरती की पर्यावरण संबंधित स्थिति के तालमेल को बनाए रखें। जैव विविधता का संबंध, जिसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं, मुख्य रूप से अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का धरती पर एक साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। और यह बहुत ही जरूरी है कि ऊंचे स्तर की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हम अपने प्राकृतिक परिवेश की अवस्था सही तरीके से बना के रखें। जैव विविधता मुख्य रूप से एक मापदंड है बहनों, जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी एक साथ रहते हैं। हर किस्म की वनस्पति और पशु वर्ग पृथ्वी के वातावरण को बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, जिससे आखिरकार पृथ्वी पर जीवन समृद्धशाली बनता है। ये सभी प्रजातियां एक दूसरे की मूलभूत जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे एक समृद्धशाली जैव विविधता का निर्माण होता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि हम वातावरण संबंधी मुसीबतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हों। बहनों, कई देशों की सरकार लोगों के बीच जैव विविधता के बिगड़ते संतुलन को लेकर जागरूकता फैला रही है और कोशिश कर रही है कि इस पर जल्दी काबू पाया जाए। आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वे इस नेक कार्य में हिस्सा लें और वातावरण को शुद्ध बनाने में सरकार का भी सहयोग करें। बहनों, एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वनस्पति और इतने ही जानवर हैं, जिसमें पक्षी, मछलियां, स्तनधारी कीड़े, सीप आदि शामिल हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी की खोज लगभग 450 करोड़ साल पहले हुई थी, और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 350 करोड़ साल पहले हुई थी, और पिछली कुछ शताब्दियों में कई वनस्पति और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और आने वाले समय में कई लुप्त होने की कगार पर हैं। ये जैव विविधता के लिए खतरा का संकेत है। इसलिए आज आवश्यकता है बहनों कि हम एक छोटा सा संकल्प लें, एक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनें। आप पर्यटक बन जहां पे भी जाएं, खाली बोतलें, रैपर्स इधर उधर ना फेंकें। हम अपने प्रकृति को संवारने में और संजोने में अपना योगदान दें। चलिए फिलहाल सुनते हैं फिल्म लुटेरा से ये गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: बहनों, आप सुन रहे हैं महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी। हर अंत में छुपा होता है एक नए सवेरे का प्रकाश, टूटे पत्तों की सरसराहट में भी जीवन लिखता नया इतिहास। गिरकर संभलना ही तो जीवन है, रुकना नहीं पहचान है, अंधेरों से लड़कर जो निकले उसी के हिस्से आसमान है। कल की हार अगर मिली थी तो उससे सीख भी आई है, हर दर्द की गहरी मिट्टी में उम्मीद की कली मुस्काई है। चलो फिर से कदम बढ़ाएं, सपनों को नया नाम दें, जो बीत गया उसे भूलकर जीवन को नई उड़ान दें। नई राहें, नई मंजिलें, नई उमंग, नया विश्वास, हर धड़कन अब कहती है यही है मेरी नई शुरुआत। तो बहनों, आइए सुनते हैं श्रीमती गार्गी मिश्रा द्वारा कहानी एक नई शुरुआत।
2: गंगा तट पर बैठी पानी की लहरों को एक टक निहारती अदिति न जाने किन ख्यालों में खोई थी। मन में एक अजीब सा शोर था, पर बाहर सब शांत। अरे अदिति, तुम अदिति हो ना? पीछे से एक आवाज आई। जानी पहचानी आवाज सुनकर अदिति ने पलटते हुए कहा, संजू तुम यहाँ? हाँ यार, कितने साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें, पहचान में ही नहीं आई। और बताओ कैसी हो, घर परिवार बच्चे सब ठीक हैं? अदिति ने फीकी सी मुस्कान के साथ, हाँ यार सब ठीक है, तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? संजू हंसकर, मैं तो काम के सिलसिले में आया था, दिन में काम निपट गया, कल की मीटिंग है, सोचा शाम को गंगा घाट ही घूम लूँ। किस्मत देखो तुम मिल गई, पर तुम बताओ यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मयंक भैया और बच्चे कहाँ हैं? अदिति ने नजरें झुकाकर, कोई नहीं है यहाँ, मैं अकेले आई हूँ। क्या बात है अदिति, कॉलेज में तो तुम सबसे ज्यादा बोलने वाली, हंसने वाली और सबको साथ लेकर मस्ती करने वाली लड़की थी, अकेले रहने वाली लड़की कब से बन गई तुम? क्या बताऊँ संजू, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है अपने दिल से लड़ना, पत्थर सी आँख लिए ओठों पे मुस्कान जड़ना, अपने दिल और दिमाग के द्वंद से भिड़ना, सही गलत के फैसलों पे खुद से खुद ही झगड़ना। बस खुद को ही खोजने आ जाती हूँ इन लहरों के बीच, कभी ये शांत होती हैं तो कभी हिलोरे मारती हैं बिल्कुल मेरी तरह। क्या बात है अदिति, हमेशा हंसती मुस्कुराती टेंशन को हवा में उड़ा देने वाली तुम, और आज तुम्हारे इतने भारी शब्द, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अदिति बात टालते हुए, कुछ नहीं संजू, तुम परेशान ना हो, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, शादी कर ली? संजू हंसकर, मैं तो मस्त मौला हूँ, तुम्हारी शादी के बाद मैंने शादी नहीं की, आज भी तुम्हारी यादों को दिल में सजोए हुए हूँ। अदिति शर्म से फीकी हंसी के साथ, यार संजू मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं कर रहा, पर सब यही पूछ लोगी या चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं और आराम से बात करते हैं? ये कहते हुए संजू एक पास के ढाबे की तरफ बढ़ चला। हाँ अदिति अब बताओ, अदिति दर्द से लगभग टूटते हुए, आखिर क्या बताऊं? इस शब्द के साथ थोड़ी देर के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सर आपकी चाय, कहते हुए वेटर ने उन दोनों के बीच की तंद्रा को भंग किया। अपनी ओर जिज्ञासा से देखते हुए संजू को देखकर अदिति ने कहा, क्या बताऊं संजू, छोटी मोटी परेशानियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा कि आस में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपना मान सम्मान भी। अब कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीजें कभी सही नहीं हो सकती, फिर चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो। अदिति ने आगे कहा, मयंक की माँ सुलेखा जी ने मुझे बहू की तरह कभी स्वीकार किया ही नहीं, हर काम में ताना, ये नहीं आता, वो नहीं आता, जरा सी देर हो जाए तो भी ताने, मायके में कुछ सीखा है या नहीं? सबसे बुरा क्या होता है पता है संजू? मैंने मयंक को हर बार हर बात बताया, वो सुनता था और कहता था मैं समझा दूंगा, अब कुछ नहीं होगा, पर फिर से वही वही सब दोबारा शुरू हो जाता। मुझे उनका सहारा कभी नहीं मिला। ओह, फिर क्या हुआ? संजू ने पूछा। फिर मेरा जीवन दिन ब दिन नरक बनता चला गया, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। मयंक बाहर जॉब की तैयारी करता था, 2-4 महीने में घर आता था। मैं सोचती थी वो जब आएगा सब ठीक करेगा, पर वो आता, 2 दिन रुकता और चला जाता, मैं वहीं की वहीं। संजू गुस्से में, इतना कुछ हो रहा था और मयंक ने कुछ नहीं किया क्या? अदिति एक फीकी हंसी के साथ, करता क्या संजू, वो कहता था जब तक नौकरी नहीं लग जाती थोड़ा बर्दाश्त कर लो, वो माँ बाप है, हम कर भी क्या सकते हैं। बर्दाश्त, बस यही एक शब्द मेरी जिंदगी बन गई थी। जब मैं माँ बनने वाली थी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हो सकता है, इतना सुनना था कि सासू माँ का ड्रामा शुरू, पूरा घर सिर पे उठा लिया, इसे मायके भेजो, कौन करेगा इसकी सेवा, मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं रहती, हमारे जमाने में घर पर ही बच्चे हो जाते थे, डॉक्टर क्या पड़ोसी को भी पता नहीं चलता था, ये सब नाटक हैं आजकल के। और जानते हो संजू, उस वक्त मयंक भी चुप, एक शब्द नहीं बोला मेरे लिए। मैं जहर का घूंट पीकर मायके चली गई, वहां माँ की देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी हुई, एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी हुई तो सास का मुंह फिर बन गया, पर जैसे ही पता चला कि सब नॉर्मल है, खर्चा नहीं हुआ, तो 15 दिन में ही फोन आया, वापस भेज दो इसे, घर का काम कौन करेगा। मैं फिर भी चुप, मैं फिर वापस आ गई, बहुरानी नहीं नौकरानी बनने। संजू ने कहा, हे भगवान, अदिति तुमने इतना कुछ कैसे बर्दाश्त किया? अभी खत्म नहीं हुआ है संजू, 2 बच्चे हो गए, उनके खाने पहनने पर भी ताने, मैंग को जॉब नहीं मिली तो मेरे चरित्र पर सवाल, कहा गया तेरा ही पनौती है, इसीलिए मेरे लड़के को नौकरी नहीं लग रही। और एक दिन हद हो गई, सुलेखा जी ने मैंग से कहा, हम तुम सबको नहीं पाल सकते, अपने बीबी बच्चों को खुद पालो, और हम सब घर से निकाल दिए गए संजू। फिर क्या हुआ? अब तो मैंग की जॉब लग गई है ना, अब सब ठीक है, संजू ने पूछा। अदिति आंसुओं के साथ हंसते हुए, हाँ, साल भर बाद ही जॉब लग गई थी, मुझे भी लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली, अब सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं संजू, नौकरी लगते ही मयंक फिर माँ बाप की तरफ झुक गया, भूल गया कि जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था तब सिर्फ मैं उसके साथ थी, उसी घर में जहाँ मुझे गालियां दी गईं, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, उसी घर में वापस जाने के लिए वो मुझ पर दबाव डालने लगा। मैं मना करती तो कहता समाज क्या कहेगा, परिवार टूट जाएगा, मैं भी शायद सब ठीक हो जाएगा कि लालच में झुकती चली गई। लेकिन नहीं संजू, अब जब मेरे माँ बाप भी नहीं रहे तो कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर वो जिंदा होते तो क्या सोचते, उन्होंने जिसे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया उनकी वही बेटी आज हर जुल्म सह रही है, मैं कल अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या सिखाऊंगी कि मेरा बेटा जुल्म सहो, जब मैं खुद आवाज नहीं उठा सकी। अदिति रोते हुए, संजू बहुत कुछ अंदर चलता है, दम घुटता है, क्या करूं, किससे कहूं, कुछ समझ में नहीं आता संजू, कहते कहते अदिति जोर जोर से रोने लगी। चुप, बस चुप करो अदिति, रो मत, रोने से क्या होगा, छोड़ो, जो हुआ अब सब बीत गया, पर अब अपनी नई जिंदगी की इस करवाहट को तुम अपने अंदर जहर मत बनने दो, अब बहुत हुआ, अब तुम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओगी, खुद के लिए लड़ना सीखोगी, जो सही लगे जो मन करे बस वही करोगी, अब खुद के लिए जीना शुरू करो अदिति, और सुनो, इस लड़ाई में कोई हो ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। संजू की उन बातों ने अदिति के अंदर जैसे कुछ प्रकाश सा जला दिया हो, सालों से जमी बर्फ पिघलने लगी। उसी शाम गंगा घाट पर अदिति ने फैसला लिया, बहुत सह लिया, उसने एक छोटी सी जॉब ढूंढकर अपने बच्चों के साथ नया घर, एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। संजू का साथ और अदिति का दृढ़ निश्चय, इन दोनों ने मिलकर अदिति को फिर से अदिति बना दिया, जो हमेशा हंसती थी, जो अन्याय के खिलाफ लड़ती थी, और यही थी अदिति की एक नई शुरुआत।
1: बहनों आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर बहनों का कार्यक्रम महिला जगत, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी। बहनों अभी हम सुन रहे थे श्रीमती गार्गी मिश्रा द्वारा कहानी एक नई शुरुआत। तो चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन शिक्षा, ये सब हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज सिर्फ सुविधा नहीं बहनों, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। एक क्लिक पर ज्ञान, घर बैठे इलाज, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल शिक्षा, ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, इसने हमारे दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदल दिया है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। और वैसे भी जब कोई भी चीज़ हमारा समय बचाए, हमारे काम को आसान करे, तो उसे भला कौन ही पसंद नहीं करेगा। हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है बहनों कि टेक्नोलॉजी के काफ़ी नकारात्मक प्रभाव हैं। पर अगर आप सही तरीके से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल में लाएं, तो उसके नकारात्मक से ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी भी उनमें से एक है। क्या आपने सोचा है कितना मुश्किल होता हम सभी के लिए बिना टेक्नोलॉजी के रहना? और एक समय था जब संचार सीमित था और महंगा था। लोग केवल पत्राचार के माध्यम से या लंबी दूर की कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते थे। हालांकि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ संचार अधिक सुलभ, कुशल और प्रभावी हो गया है। बात करते हैं संवर्धित वास्तविकता और वर्चुअल वास्तविकता का उपयोग, यानी यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। संवर्धित वास्तविकता और वर्चुअल वास्तविकता तकनीकों का उपयोग संचार को अधिक आकर्षक और समावेशी बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए

संबंधित वास्तविकता का उपयोग या अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर है, जबकि वर्चुअल वास्तविकता का उपयोग यह अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक कमरे में है। तो बहनों, याद रखिए, टेक्नोलॉजी तभी वरदान है जब उसका सही उपयोग किया जाए। हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, लेकिन मानवता, संस्कार और प्रकृति से जुड़ाव को कभी नहीं छोड़ना है। आइए फिलहाल सुनते हैं फिल्म तनु विच मनु का ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं मलेशिया का सबसे प्रसिद्ध और राष्ट्रीय व्यंजन, जिसे कहते हैं नासी लेमक। ये नारियल के दो

और पंडान के पत्तों में पकाया गया चावल होता है, जिसे तीखी सांबल यानी चटनी, कुरकुरी तली हुई मूंगफली और पनीर और खीरे के साथ परोसा जाता है। इसे घर पर आसानी से तैयार करने की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। फटाफट से कलम उठाएं और ये सामग्री आप नोट कर लीजिए। मुख्य सामग्री है, चावल के लिए आपको चाहिए 1 कप बासमती या जास्मिन चावल, 1 कप नारियल का दूध, 1 कप पानी, 2 से 3 पांडन के पत्ते गांठ बंधे हुए, 1 इंच अदरक कुचला हुआ और स्वादानुसार नमक। सांभर यानी चटनी के लिए आधा कप प्याज, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 2 चम्मच इमली का गूदा, 1 चम्मच झींगा पेस्ट और 1 चम्मच चीनी। गार्निशिंग के लिए तली हुई मूंगफली, तली हुई कुरकुरी एक ओवी और आप इसे खीरे के पतले स्लाइस काट लें। बनाने की विधि की बात करें तो चावल को धोकर 20 मिनट के लिए आपको भिगोना है। एक बर्तन में नारियल का दूध, पानी, चावल, अदरक, पांडन के पत्ते और नमक डाल लीजिए। चावल को तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी सोख न जाए और चावल खिले खिले और सुगंधित ना हो जाए। प्याज, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बना लें और एक पैन में तेल गरम करें और इस पेस्ट को भूनते रहें। अब इसमें इमली का पानी, चीनी और नमक डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना होने लगे। मूंगफली को अलग अलग कुरकुरा होने तक डीप फ्राई कर लें और एक प्लेट के बीच में नारियल के चावल रखें। इसके चारों ओर सांबल, तली हुई मूंगफली और खीरे के स्लाइस सजाएं और खाने का आनंद लें। बहनों, आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो कार्यक्रम है ये आपके लिए है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएं पत्रों के माध्यम से कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमें पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और हमारा पिन कोड है 248001। बहनों, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी आसानी से अपने बात हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है jagatmahila@gmail.com। मैं पता पुनः बताना चाहूँगी, हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हमारा पिन कोड है 248001 और हमारा ईमेल आईडी है jagatmahila@gmail.com। तो बहनों, इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर हाजिर होंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, वार्ता करेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे कार्यक्रम का फीडबैक हमको दें और हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए। फिलहाल आप मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय दोपहर का 1 बजने वाला है। बस थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री

0: तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। और चमोली जिले में गोविंदघाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ हेमकुंड साहिब के लिए

0: कल खुलेंगे कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुए घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून जिले के सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आगामी बरसात को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मलबे की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तत्काल इसके चैनलाइजेशन कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। श्री जोशी ने सरखेत क्षेत्र में आपदा के मलबे के चैनलाइजेशन और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए विधायक निधि से 5 से 10 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त जांच में कई ऐसे होमस्टे सामने आए हैं जो निर्धारित नियमों के विपरीत होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह संचालित किए जा रहे थे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं। पर्यटन सचिव धीराज करब्याल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 8 कमरों तक के आवासों को भी योजना के तहत आवेदन की अनुमति दी है, लेकिन सभी इकाइयों के लिए पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा।
2: होमस्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होमस्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होमस्टे में जो संख्या हमारे पहले 6 तक सीमित थी उसके स्थान पर 8 रूम तक के होमस्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स, और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होमस्टे चला रहे हैं, तो उनको बीएनबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जिले में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 3,86,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 281 मरीज बच्चों को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया और 132 बच्चों का उपचार हुआ। वहीं 149 मामलों में उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 30 बीमारियों को कवर किया जाता है और सभी बीमारियों का निशुल्क इलाज होता है।

0: जी हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहती है इसकी, इसका वजन नहीं बढ़ता, इसकी तबीयत खराब रहती है, खाता नहीं है, इसलिए हमें इन्होंने बुलाया था आंगनवाड़ी वाली ने, तो हम यहाँ पर आए दिखाया, इन्होंने दवाइयाँ दी और चेकअप के लिए बोला, कहा जिला अस्पताल आओ और आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। एक बच्चा बोलता नहीं है, इसके लिए भी दिखा उन्होंने, कहा वहाँ पर लेकर आओ, इसे भी आराम हो जाएगा।
1: आंगनवाड़ी में मेरी मोनोमिसिस बच्चों को लेकर आई थी, यहाँ बच्चों को डॉक्टर साहब ने देखा है, चेकअप के लिए हॉस्पिटल बुलाया है, इसका इलाज वहाँ पर होगा और प्लस इन लोगों ने यहाँ पे दवाई उनको रिसीव करी है।
2: चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है और पहले जत्थे के साथ विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है ताकि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी यात्रा पूरी कर सके। यह जत्था आज रात घांघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके बाद कल विधि विधान और अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों के निस्तारण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
3: जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDMs, तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के, सभी के साथ में बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी, चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं, उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1139 पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया। और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: बदला के चलते हो, कभी पल भाग के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले।
1: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में, जिसे लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का था। अब आपको सुनवा रहे हैं चरस फिल्म का ये दो गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं छलिया फिल्म से। इस गीत को गाया है मुकेश ने, लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे छलिया फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
0: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
0: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
0: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही।
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
0: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
0: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति

0: संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
1: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
0: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
1: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
2: सालू मर्दा तिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: पाजी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
5: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
5: हाँ हाँ,
4: ये देखो
5: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
4: प्यारा लग रहा
0: है। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।

0: क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: सालू मर्दा तिमक्का समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा तिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
4: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
7: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on the 18th of next month. Supreme Court to hear plea against CBSE's 3-language compulsory study for Class 9 students from July the 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. In his joint statement, Prime Minister Narendra Modi said the

0: चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर एंड लाहौल स्पीति, लीडिंग टू अ स्लाइट ड्रॉप इन टेम्परेचर्स अक्रॉस द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द मेटीरोलॉजिकल सेंटर शिमला, दिस चेंज इन वेदर इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। द सेंटर हैज इशूड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेन एकॉम्पनीड बाय थंडरस्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स, कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी एंड बिलासपुर ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स। रितेश कपूर, आकाशवाणी न्यूज, शिमला।
1: In Malaysia Masters, Indian shuttler Ashmita Chaliha's campaign came to an end after she lost to former European Games champion Lene Kierfeldt of Denmark in the women's singles quarterfinals today. With Chaliha's exit, India's challenge also concluded at the BWF Super 500 tournament. Chaliha, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent 23-21, 18-21, 11-21. In 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत

0: खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा

0: अध्यक्ष ओम बिरला ने त्रिवंचुर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, रोजाना की तरह हम हाजिर हैं कुछ गीत और जानकारी के साथ, और ये कार्यक्रम आज हम समर्पित कर रहे हैं लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी भारतीय सेना के एक अत्यंत बहादुर अधिकारी थे, जिन्होंने उत्तर सिक्किम में गश्त के दौरान अपने एक साथी अग्निवीर की जान बचाते हुए 22 मई 2025 को अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। उनकी इस असाधारण वीरता, अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और भी कुछ जानकारी इनके जीवन से जुड़ी इस गीत के बाद।

साथियों, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का जन्म 24 जनवरी 2002 को अयोध्या यूपी में हुआ था। मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश अयोध्या के निवासी और उनके पिताजी जंग बहादुर तिवारी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। एनडीए की कठिन पढ़ाई करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद उनका चयन भारतीय सेना में हुआ था और उनकी बहादुरी लीडरशिप ने उन्हें बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बनाने का मौका दिया और यही कारण रहा कि वो अपने साथियों के बीच भी बहुत ही जाने पहचाने गए।

साथियों, 22 मई 2025 के दिन मात्र 6 महीने पहले ही 14 दिसंबर 2024 को कमीशन पाए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में एक ऑपरेशनल मिशन के दौरान अपने साथी की जान बचाते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। एक कष्ट के दौरान जब वो पहाड़ी से गुजर रहे थे, तभी उनका एक साथी अग्निवीर स्टीफन सुब्बा लकड़ी के पुल को पार करते हुए फिसलकर तेज बहाव की नदी में गिर गया और पहाड़ी झरने में बहने लगा। बिल्कुल भी देर न करते हुए शशांक तिवारी ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और अपने साथी को बचा लिया, लेकिन वो स्वयं उस जलधारा में बह गए। तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें झरने से 800 मीटर नीचे बह जाने के बाद निकाला गया और वो जब तक शहीद हो गए थे।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को हम समर्पित कर रहे हैं लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को। उनकी वीरता भारतीय सेना के केवल मूल्यों, निस्वार्थ सेवा, नेतृत्व, ईमानदारी और सैनिक जो उनके साथी हैं उनके बीच जो अटूट बंधन है उसका जीवंत उदाहरण है। लेफ्टिनेंट तिवारी न केवल एक अधिकारी थे बल्कि अपने जो कर्म और लीडरशिप, उनकी जो ड्यूटी है उसके एक सच्चे योद्धा भी थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सेना में केवल लीडरशिप नहीं होती है बल्कि जो उनके अधिकारी होते हैं वो आदेश नहीं देते हैं बल्कि आगे खड़े होकर अपने सैनिकों के लिए जान भी लुटा देते हैं।

साथियों, भारतीय सेना में शशांक तिवारी के सर्वोच्च बलिदान, कर्तव्य निष्ठा और अपने साथी के लिए असीम प्रेम को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी की शहादत भारतीय सेना के सर्वोच्च आदर्शों, देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सबसे पहले का जीता जागता और प्रेरणादायक उदाहरण है। उनके शौर्य और बलिदान को हम सब नमन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में टी ऑफ कर 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के 179 गोल्फर भाग ले रहे हैं। इस वर्ष की प्रतियोगिता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति को समर्पित किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जिले के सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बरसात से पहले प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के जूनियर हाई स्कूल गंगनाली श्रीकोट में कंप्यूटर कक्ष निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर कक्ष के निर्माण से छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ रवाना हुआ। ये जत्था आज रात घंघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके बाद कल अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। पौड़ी जिले में खिरसू विकासखंड की ग्राम पंचायत कोटी के राजस्व ग्राम दुर्गाकोट में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, शौचालय, सोलर लाइट और स्वरोजगार से जुड़ी समस्याएं रखी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दिलाया। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

हरिहरन और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत। अब सुनते हैं थप्पड़ फिल्म में राघव चैतन्य का गाया, शकील आजमी का लिखा और मंगेश धाकड़े का संगीतबद्ध किया हुआ गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इस संदेश के पहले जो गीत अब सुना आपने, उसे हमने लिया था फिल्म जिद्दी से। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत समीर ने लिखा था, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का था। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उजड़ा चमन फिल्म से। यासिर देसाई की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है देवशी खंडूड़ी ने और संगीत गौरव रोशन का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नेहा भसीन की आवाज़ में सुल्तान फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था विशाल शेखर का। अब सुनते हैं दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू को सूरमा फिल्म में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने।
1: नूर कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखिए।
1: समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं?
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से कार्यक्रम गाने नए तराने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सावरिया फिल्म से, पृथ्वी गोहिल की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है मोंटी शर्मा ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत रॉय फिल्म से। आवाज है केके की और गीत संदीप नाथ का, संगीत अंकित तिवारी का।

करीब करीब सिंगल, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज़ में, जिसे लिखा है राजशेखर ने और संगीत विशाल मिश्रा का है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में टी ऑफ कर 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के 179 गोल्फर भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मॉनसून तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि युवा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों को बेहतर उपचार और साफ सफाई पर जोर दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में रीप परियोजना के तहत आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों की महिला समूह के उद्यम परिवारों को 14,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने रुद्रप्रयाग जिले में जखोली ब्लॉक के आपदा प्रभावित पूर्वी बांगर क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ रवाना हुआ। कल अरदास के साथ हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारत शिंदे का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं ताल पंचम सवारी और 3 ताल। आइए पहले सुनते हैं पंचम सवारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारत शिंदे से तबले पर ताल पंचम सवारी। आइए इन्हीं से सुनते हैं ताल तीन ताल।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे भारत शिंदे से तबले पर ताल पंचम सवारी और तीन ताल। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का अंक यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं आज फिर एक नए कलाकार के साथ। हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा। आज हम बात करेंगे इनके जीवन से जुड़ी और इनके फिल्मों की। पहले आपको सुनवाते हैं उनकी सुपरहिट फिल्म का ये गाना, आप अंदाज़ा लगाइए

जी हाँ श्रोताओं, आपने ठीक अंदाज़ा लगाया, ये वही फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया और बहुत लंबे समय तक चलने वाली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में आई, जिसने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया और इसके कलाकारों को जैसे अमर कर दिया। शाहरुख खान और काजोल अभिनीत ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक समय तक चलने वाली फिल्मों से एक है। और बात की जाए अगर आदित्य चोपड़ा की जो फिल्में रहीं, उनमें उनकी फिल्म आई थी मोहब्बतें 2000 में। सन 2000 में ये फिल्म अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी। ये फिल्म भी सुपरहिट रही, रब ने बना दी जोड़ी। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सफल रही। आइए इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा ने इंडस्ट्री को नए कई स्टार ऐसे दिए और उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें दर्शकों ने हमेशा याद किया और उनके जहन में वो बस चुकी हैं। इन फिल्मों में निभाए गए जो किरदार हैं वो भी अमर हो गए। आदित्य चोपड़ा का जन्म हुआ था 21 मई 1971 को मुंबई में और वो मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा के बड़े बेटे हैं और उनकी यश राज फिल्म के नाम से जो एक फिल्म निर्माण कंपनी भी है और इस फिल्म निर्माण कंपनी के बैनर तले कई सारी फिल्में बनी। इसमें ही एक ऐसी फिल्म बनी धूम और इसके बाद फिल्म आई बेफिक्रे। बहुत सारी जो फिल्में उनकी रहीं जिसमें उन्होंने निर्देशन का काम भी किया और साथ ही प्रोड्यूसर के तौर पर भी उन्होंने फिल्में बनाई। जो प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने फिल्में बनाई उनमें धूम, वीर जारा, चक दे इंडिया, एक था टाइगर, वॉर और पठान, ये फिल्में रहीं जिन फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया। आइए एक ऐसी ही फिल्म का आपको गीत सुनवाते हैं।

श्रोताओं, यशराज चोपड़ा के बेटे होने के कारण आदित्य चोपड़ा को बचपन से ही घर में फिल्मी माहौल मिला। हर वक्त घर में फिल्मों, शूटिंग और कलाकारों की बातें होती थी और यही कारण था कि उनका झुकाव भी फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बचपन में उन्हें एक ऐसी बीमारी थी, एक डिसऑर्डर था, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि इसमें इंसान को आवाज़ें तो सुनाई देती हैं लेकिन दिमाग उन्हें ठीक से समझ नहीं पाता है। कई बार आसपास की आवाज़ों को पहचानना मुश्किल हो जाता है और ये समस्या किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही दुखदायी हो सकती है। उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आदित्य ने इससे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया बल्कि अपनी खूबी बना लिया और खुद को फिल्मों और कहानियों की दुनिया में पूरी तरह से डुबो दिया। मात्र 18 साल की आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्मों में अपने पिताजी यानी यश चोपड़ा को असिस्ट किया और फिल्म मेकिंग की बारीकियाँ भी सीखीं।

श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा की। आदित्य चोपड़ा ने मात्र 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का निर्देशन किया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। हिंदी सिनेमा में सबसे आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों में इसे गिना जाता है। इतिहास में ये फिल्म दर्ज हो गई है। इस फिल्म में आदित्य चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और इतना ही नहीं, फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और इसके बाद जो उनकी फिल्में आई उन्हें भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बैनर तले बनी एक फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: श्रोताओं, आज आदित्य चोपड़ा एक सफल डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही नहीं है बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ताकतों में भी गिने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यशराज फिल्म्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वो ऐसे ही ऊंचाइयों पर बढ़ते रहें और फिल्म जगत को बहुत ही अच्छी फिल्में देते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
4: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
3: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन

0: अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर आज आप सुनेंगे पॉडकास्ट का 30वां भाग पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पौड़ी जनपद के खिरशु ब्लॉक में गांव बदेशु की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम झांकी, प्रस्तुति विनय ध्यानी जी की होगी। किसान साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत आज सुनिएगा जैव विविधता और पर्यावरण विषय पर श्री सुमन कुमार से बातचीत। आरएनए देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद का समय रहेगा शाम 7:50 पर। रात्रि 8 बजे सुनिएगा कहानी। रात्रि 8:15 पर आज आप सुनेंगे एक संवाद प्रेरणा का विषय पर उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतोड़ी से विशेष भेंटवार्ता। आपसे बातचीत करेंगे रमेश चंद्रा। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर और रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 10 बजे।

कल प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट का 30वां भाग पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका। कल रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा जगत राम वर्मा की आवाज में जौनसारी लोग।

प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे कल प्रातः 10:02 पर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11:00। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत कल दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे महिलाओं की बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और उनका उपचार विषय पर डॉक्टर स्वाति चोपड़ा से कल्पना पंकज की बातचीत। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे राग मुल्तानी पर डॉक्टर निर्मल पांडे का ख्याल गायन। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ऑन आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई,

0: थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी विशेष के, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बड़े सहज रूप।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा, तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
1: वाँ, वाँ।
0: तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे

0: से मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता है, नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक या किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका वो, हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अमर जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर
0: है। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहां शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहां शुरू होता है, और कहां वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा।
0: लोगों को
1: जी,
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो करना

0: म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सके, आत्मसात कर सके, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, उसके जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा आप लोग एक लव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एक लव्य का, तो लोग कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया, तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:36 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
1: 8700014242।
3: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 होने को है। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत सुनने वाला सभी सुनदरों थे सरिता भट्ट की तरफ बटे ब्योखुंदा की नमस्कार से वसौली। ते दगड़ियों कंचो आप आशा कर दें कि आप सभी राजी खुशी से होला, स्वस्थ होला, मस्त होला और जबरदस्त होला। आप सभी की कुशलता की कामना हम भगवान बद्री केदार से कर दें और सदनी कर दी ही रौला। दगड़ियों दिन छ रूढ़ियों रूढ़ियों का और बुन क्या च घाम लगणु चटके को दिन में क्या सुबेर 8-9 बज बटी भी इत घाम लग जानू कि बाहर निकलने को मुन नहीं बुनू। पर के कन परिवार की जिम्मेदारी छिन, स्कूल छिन, कॉलेज छिन, तो जान तो पोड़ो ली तो भारे अप दगड़ी पानी की तुमड़ी छाकल बोतल जरूर ली जाया और मुख थोड़ा ढका कि जो मुख भरा पड़ा खादी कपड़ा बांध के ले जान और आराम से जान। ज्यादा चिलचिलाती धूप में नहीं जान भाई, भारे स्वास्थ्य पहली तब और काम हो लो कि लेकिन स्वास्थ्य च तो तब सब कुछ। और भाई परिवार की जिम्मेदारी छिन सब कुछ अपूर ध्यान जरूर रखन। और ये जो ये मौसम छ ना यहाँ मत भाई ज्यादा लून मर्च मसाला नहीं खानिन और हल्को खानो भोजन को प्रयोग कन। खिचड़ी खा लिया जन हल्को हल्को और ज्यादा छाछ और दही और जो फलों रस च वे थे खा, ककड़ी खा, खीरा खा, है ना, हल्के हल्के चीज जो सुपाच्य हो जल्दी पच जाओ और हमारे शरीर से ठंडक में रखो, ठंडक में बनियो शरीर रहे तो अछुरान कि लेके भाई घाम तो 8-9 बजे बटे इन लग जानो कि कई बुन तब और दिन दोपहर चिल मिलाती धूप में तो ये बोई भैर जानो मन ही निकलो। तो भारे ध्यान तो रखनी पड़ो लो कि लेके रूढ़ियों के दिन छिन और हम कुछ नहीं मौसम बदलता रहने न तो काम भी कन पड़ोल, स्कूल कॉलेज सब कुछ जान ही पड़ोल। जब काम खास हो तो तभी घर बटे निकलो, अगर काम खास नीच हो सकद अगने पिछने तो भाई वही हिसाब से करें। दगड़ियों आप कार्यक्रम का बारे में आप थे बता देंदू कुमाऊनी जौन सारी गड़बड़ी गीतों का रम का झमका तरा लही कुछ होला रंत रह बार। और आज एक ग्राम झांकी पौड़ी जनपद का खिरसू ब्लॉक का गांव बुदेसू की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित और प्रस्तुतकर्ता छिन जो प्रस्तुत करला हमार दगड़िया हमार सहयोगी विनय ध्यानी और दगड़ में ही होला हमारी आपा के छुई बातों की मौज बहार। तो आप कार्यक्रम थे अग्नि बढ़ा दू और अनीता कंडारी का स्वर में सुना आप थे यू सुंदर सी गड़बड़ी गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
3: ओ,
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: दगड़ियों रैबानों से पहले आप सुनना चाह अनिता कंडारी का स्वर मायु सुंदर सी गढ़वाली थड़िया लोकगीत। और अब सुनना पौड़ी जनपद का खिरसू ब्लॉक का गांव बुदेसु के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम ग्राम झांकी में। और प्रस्तुत करता छिन हमर दगड़िया विनय ध्यानी। तो सुनना यह सुंदर सी ग्राम झांकी।

0: से घंडियाल जुग राज रे तू, घंडियाल जुग राज रे तू।
1: ग्राम झांकी में आज की प्रस्तुति पौड़ी जनपद को खिरसु ब्लॉक और वखा को गांव बुदेसु की स्थल रिकॉर्डिंग।

0: श्रोताओ नमस्कार। ग्राम झांकी कार्यक्रम का खातिर आज मैं पहुंचो छु जनपद पौड़ी को खिरसु ब्लॉक और वक गौच बुदेसु एक सुंदर रमणीक गांव। हम गांव में पहुंचा तो पता चल कि प्रधान जी हेल लगाना छन। तो एक बहुत सुंदर बात छ कि अगर गांव को प्रधान आज भी अपने खेती से अपने काश्तकारी से जुड़ू छ तो पक्के बात छ कि गांव संपन्न छ, लोग अभी भी अपने खेती करना छन। ये जाने बहुत सुंदर लगे और हमन सोची कि आज ग्राम बुदेसु की ग्राम झांकी आप तक पहुँचौला। यख का लोग माता बहनी ये बात हमारे समण में छन, लेकिन सबसे पहले नमस्कार कला हम यख का जवान ग्राम प्रधान। नमस्कार, आप अपनों क्या छन?
1: महिताब सिंह।
0: महिताब जी सुंदर लगे कि साहब अभी आप पुंगड़े पटेल करना छन। तो जो मुख्य खेती छ यख की वो क्या छ? सभी लोग खेती पाती करना छन?
1: बिल्कुल हाँ जी, सभी लोग कर दें। यख मंडवा गेहूँ और धान।
0: धान बर्खा पर आधारित हो ना?
1: हाँ जी।
0: सेरा तो नहीं होला एक डांड में?
1: सेरा नहीं, एक उखाड़।
0: अच्छा, आप जरा इस गांव को परिचय दिया कि कितना परिवार छन गांव में, जनसंख्या क्या छ, आसपास कुकु राजस्व गांव छन?
1: एक तीन राजस्व गांव छन, एक राखाल, एक घनीगाड़ और एक बुदेसु। लेकिन जन तो सिर्फ बुदेसु मरानी, बाकी खाली छन।
0: आप एक जवान प्रधान छन और कितना समय हो गया आप तो ग्राम प्रधान बने, क्या प्राथमिकता रहे यहाँ पे की क्या गांव का खातिर आप करण चाहना छन?
1: मैं यहाँ ले पहले भी ग्राम प्रधान छ और मेरे पहले वो कर्तव्य हो गाँव की स्वच्छता और सफाई जी भी, और वे के बाद रोजगार। तो सफाई जो जो गाँव की महिला मंगल दल कर दी और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को भी कि गाँव की सफाई थी दिखदन।
0: सभी लोग एक मुठ एकजुट नजर आना चाहिए आप तो, क्योंकि हमन बाकी गांव का लोग मैं सुनाल ये गांव की तारीफ और आपक भी तारीफ, आप बताएं कि सब एकजुट छ?
1: बिल्कुल एकजुट। हाँ जी, थोड़े चुनाव को टाइम पर हो एक बात फिर एक हो
0: जाए चु तो है ना। अब आपसे ये गांव की जो विकास की संभावनाएं छ मांग च वो हम घड़े मार छू लगोला, ये बीच हम गाँव का लोगों से बातचीत कर ला। एक सबसे बुजुर्ग माओ म्यार समण मच, नमस्कार, आपक नो क्या
2: अवतार सिंह।
0: अवतार जी आपक उम्र कितना छ?
2: 85।
0: 85 साल, अरे आज भी टकटका दिखेना है, चश्मा भी नहीं लगाना मिजा
2: नहीं लोगों
0: है लगान छन। अच्छा, आप ये गांव का इतिहास के बारे में हम तो बता सक दिन कि कक बटक पुराने या क्या होला कन के क्यों गांव बस?
2: ये मैं हम नहीं मालूम क्या कब बस नहीं।
0: अच्छा, गांव में खास अगर देवी देवताओं की बात करे जाए तो एक माँ हमारा जो इष्ट छन ठा छन वो क्या छन?
2: क्यों जब से पूजा छन ये खा
0: कु देवता छ?
2: घन्याल। देवी घन्याल।
0: अच्छा, आपन पुराना दिन भी तो देख होला जब ये सड़क नहीं रहा होले
2: हमारे देख देख देख है।
0: अच्छा, तो यख का जो स्कूल छ स्वास्थ्य छ ये का बाबत पहले भी इन्हीं सुविधा छे या अब मठ मठ के के?
2: अबे अबे बोलो छे पहले से।
0: धन्यवाद बहुत बहुत आपको। नमस्कार, आपक नो क्या छे?
3: अमित कुमार।
0: अमित जी क्या कर देना आप गाँव में?
3: अभी तो कुछ नहीं करना फिलहाल, काम भर ही जाऊंगा।
0: नहीं बोलो यार कुछ नहीं करना
3: बस।
0: अभी एक जवान दगड़े हम तो मिल चाहूँ बल्कि मैं अपन दुकान को नोचू, कुछ सोचना छे ना अभी? पर्यटन को क्षेत्र छ, किला ना हम पर्यटन रोजगार से जुड़ सका। पढ़े लिखे कब तक?
3: पढ़े लिखे 10 करे।
0: अच्छा, यख का जितना भी युवा शक्ति छ जो जवान दगड़ा छन वो सब आप की तरह सोचना छन कि मैं जॉब करण या छु लगा दो बेखुनदार सब मिली के
3: सब अलग अलग सोचूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक छुयाल दगड़े छन हमारा उनसे बात कला हम केला कि जन उनसे मिला हम तो लग कि हाँ गांव में एक छुयाल दगड़े होन छ। नमस्कार, आप अपनों क्या छे?
4: मेरा नाम महावीर लाल जी।
0: महावीर लाल जी आप कुछ जरा बलिक छुई लगा दो जन के सब हैं जी कि ये गांव में खास क्या लगे आप ने?
4: ये गांव में ये जितना भी वो जो भी आने तो हमारे गाँव तक खास ही समझ दें
0: क्या होल खास कुछ तो खास होलू में मां
4: सब सब सुविधा छन, पानी एक छे घास एक छे, पर हम जंगल से एक बहुत परेशान जा वन विभाग हम तो इन वीरान करियो छे हम जंगल में नहीं जा सकता।
0: जंगल तुम्हें तो चौ छोड़ दिखेणो
4: जन कनो पुंगड़ा भी बांध पाड़े न हमारा पुंगड़ा भी बांध पाड़े न ये जड़ो सुंगर सब खेती भी बर्बाद करेगा हम कन भी जाना छा। अब बोल हम अगर कहीं जाना वैसे जाना करेंगे बोल तो सब साफ कर देगा। अब हम दुई बुढ़े बुढ़ी छा घर में, अब हम कर के सकता?
0: आप क्या कर दें फिर घर
4: में? ये गारंटी रोजगार में चल जाना और बाकी आप काम करता घर में बस रोटी पको भात पको बस बात तीनों टाइम यही छे।
0: ये खाको जो कोई खास प्रसंग हुआ ये गांव को कोई किस्सा याद आनो हो आप तई या

0: कोई गीत लगी हो, मिसाई हो आप को?
1: हमार खास तो एक हमारे जो दिवाली छोटी दिवाली बड़ी दिवाली या बबला एक त्यौहार हो चो उ गैर खेचदा छा और भैलक घुमा छा तो वो रमणी चीज तो खत्म है है। भले आज हम सब कुछ देखना चाहिए कि हम तो सुविधा हुई छे, पहले भले हम पैदल जान छा वो अच्छो लगो छो कई लोग मिल छा, आ तो हम तो रोड पर एक भी नहीं मिल गाड़ी के सिवाय, गाड़ी फुर से आए फुर से गई, अब पैदल भी नहीं चल सकते।
0: अच्छा एक बात बताओ दी, अब पुराने जमाने में कुछ ना कुछ गीत में शायद इन छा कोई गीत ही ना अच्छे छे कुछ मिस हो?
1: ना ना जी कुछ नहीं छे फिलहाल में मो
0: कोई गीत यार नो याद जरे
1: ना ना भी इन कुछ नहीं छा
0: कुछ नहीं छे
1: सब लेसन छे तो आप
0: ऐसा कोनी तो बना जो हम आपते
1: ना ना नहीं कोई बात
0: चलो घड़े एक में फिर ऐसा दिया। हां अब जब गीतक बात आई छे तो हम माता बहनों का छोड़ोला और सबसे पहली हम भी जब गाँव में पहुँचा तो घंडियाल देवता तो हमने प्रणाम करी तो हम सोचना कि जो सांस्कृतिक एक कार्यक्रम छो वो एक शुरुआत अगर घंडियाल देवता की भजन से गीत से करे जाए तो कनराल ठीक छे माता बहन बना चेन हाँ बल तो चला मान

0: घंडियाल जुग राज रे तू, घंडियाल जुग राज रे तू।
1: जय दीदिन सुंदर घंडियाल को गीत और ये गो को परिचय दे अपना गीत का माध्यम से जुगराज ने आप अपनो क्या छो?
0: मेरा नाम सर्वेश्वरी देवी।
1: सर्वेश्वरी जी आप ही बताएं कि क्या कर दिन गो माँ यख जो ANM छिन आशा छिन माता बहनों का स्वास्थ्य बच्चों का स्वास्थ्य का प्रति जागरूक छिन सभी लोग और उनकी जो सेवाएं छिन उ कन चलना।
0: हाँ वो तो ठीक छिन ना क्यों समस्या हॉस्पिटल से सब जाना छिन आना छिन ना स्वास्थ्य ठीक छो
1: ANM बैंड लगातार आन छ
0: पता नहीं एक था आम दा तुम आंदे छिन या छोटा पाछ सुनो दा मालूम न के आंदे छिन के नहीं आंदे ताम
1: और आशा
0: आशा भी आन छ
1: जितना भी महिलाओं से जुड़ी योजनाएं छिन उनका बाबत आप क्या जान देन के बुधे सुमा को योजनाओं को लाभ हमारे जो ग्रामीण महिलाएं छिन उ लेना छ के योजना का लाभ लेना छिन लोग या महिला जो छ
0: आ रोजगार में लगया छन सब
1: बस एक मात्र
0: आना छ ना कुछ भी काम आप खेती बाड़ी में लगया छन आप गोर बछर आप खेती बाती आप की प्रधान जी रोजगार लाना छन बस सब लोग वहां में काम कर देना।
1: राज्य सरकार ना कई इन योजनाएं चलाए छन जो की सीधा सीधा महिलाओं से जुड़े छन अगर हम घसियारी योजना की बात करा सौभाग्य की बात करा भाग्य लक्ष्मी की सुकन्या धन योजना कुछ नहीं क्या क्या आप तो यूं योजनाओं के बारे में मालूम छे पहले अपन नो बताओ आप।
2: मैं नो हेमा देवी।
1: हेमा जी आपन कभी यूं योजनाओं को नो सुनी या गाँव में यूं योजनाओं का बाबत जो विभाग छन उनको शिविर लगा कर आप तो जानकारी दे हुए आप क्या कर देना
2: कुछ ना बस घरे में।
1: अच्छा घर में खासकर दिनचर्या क्या रहे गाँव के लोगों के
2: कभी काम पर है कभी पुंगड़ा कभी
1: जरा दुई सारियों का नौ बता दियो मैं तब जनूल में क्या काम कर देना आप नहीं जाना ही घास खुण भी ना। अच्छा डांडों का नाम बता दो जो घास लेना खुण जाना
2: खाल पल तेरे डांडा खील
1: आ गया हुए क्या ठीक बोल यून चलो पुराना मौसम पूछ लो जो उन खूब घास लखुड़ कर रहा आप अग्नो क्या चे
2: सुशीला देवी।
1: सुशीला जी यूं तो नीले साग सारियों का नो भी और डांडियों का नो भी ना आप बताओ आप पुरान घसेर छन
2: तो ये पहले छाले हुल छाले
1: हां थोड़ा हूं तब नो धरे रहे दिन घसेरियों का तो बढ़िया से
2: कि नो धन कुछ नहीं धन का।
1: अच्छा लखड़ो कौन का जंदन
2: डांड जने
1: औ जंगलात होला
2: जंगलात होला की कर दन कुछ नहीं कर दन लूट दन छन बस है।
1: अच्छा
2: लूट दन छन बस।
1: अच्छा
2: तो कुछ नहीं कर दन हां तो ना तो की कर दन उसे क्या लग रहा लनिया कब का तो लग रहा लान कब से क्या लग रहा।
1: अच्छा एक और बहुत समस्या ये बत पौड़ी जनपद में दिखेणी छ वो छ जंगली जानवर के जिनके हमारा दगड़े ने बता छा एक तो यख भी आप थे रिख बाघ को आतंक दिखेणी छ
2: ठीक छ ना दुनिया भर छ
1: कोई आन गण होला कि नहीं गण होला दुनिया भर का छन बल
2: चा छ ना ते ये कि ताण रंदन ता बाघ मुख पर ले जाना रंदन बकर बुक रहते
1: यख कोई जान माल को कोई नुकसान हुआ छ
2: ना नहीं
3: नुकसान तो नहीं।
1: चलो अभी बहुत बहुत भगवान की कृपा छ है ना घंडियाल देव तो सहर है कि कके बच्चा स्कूल जाना छ वगैरह है ना। आप अग्नो क्या छ
3: सुनीता देव।
1: सुनीता जी ने बताया कि कोई खास इधर अभी कोई समस्या नहीं छे लेकिन अगर खेती पाती की हम बात करना तो खेती तो नुकसान पहुंचाना छन जंगली जानवर आप अग्नो क्या छ बहुत सुंदर मैं सब बिग्यो और बात यह छ कि देखा भावनाएं छन और सबसे बड़ी बात यह छ कि उपस्थिति बहुत बड़ी बात छ कि कोई आदम चाहे बोल साक न सुन साक न कुछ हुआ लेकिन अगर कखि म कठ होना छन लोग वख म आना छन यह एक हमार गाँव की सबसे बड़ी पहचान हो। नो क्या चाहियो को शकुंतला देवी जी ते प्रणाम हमारो और अब जरा गीतक छुए कला कुछ गीतों की बात कला आप अग्नो क्या छ
4: लीला देवी।
1: लीला जी आप अपना दगड़े ने तो भटाओ दी जरा अरे खुदेड़ गीत कुछ हम तो सुनाओ। लीला जी ने बताया कि बल अभी ना दगड़े आन मेरे आने छे ना अभी मिसाल लो गीत बाद हम सुनो आप तब रही हम गाँव का और लोगों से बातचीत कर दा। नमस्कार आप अग्नो क्या आप हम तो ये बताए कि गाँव का समय सबसे बड़ी समस्या परेशानी क्या चे जैसा कि आप सरकार और शासन का बोलना चाहना चाहिए।
5: सबसे बड़ी समस्या तो खेती ही थी हमारी खेती आवाज सही लेकिन जंगली जानवरों का कारण खेती छोड़ने लगी। ये बारी फसल पर जैसे गेहूँ पूछा जो घर नजदीक पौन वाले एक दो बीज होता मुँह ले पेन बाकी कोई भी गेहूँ नहीं ले।
1: अच्छा ये चीज से जुड़े जितना भी विभाग छे ना हम उद्यान की बात करता हूँ कृषि की बात करता हूँ वो बोलना चाहिए कि साहब घेर बार करण हमन एक योजना भी ना घेर बार तो वे की व्यवस्था ये गाँव में अभी तक नहीं हुई क्या
5: व्यवस्था हुई थी 1 किलोमीटर 300 मीटर बनी बीच उसके बाद फिर बंद हुई अग्नि हुई पर कुछ नहीं हुई। अगर जो घेर बार पूरी हो जाती तो शायद जंगली जानवर से रोकथाम हो जो तो लोग खेती कर रहा नहीं तो खेती बंद हो खत्म हुई खेती।
1: एक बहुत बड़ी समस्या कई भी गाँव का समझ में आनी चाहिए कि जो मुख्य धंधा है वो कृषि व्यवसाय है और कृषि का खातिर ही हमारा तमाम विभाग बिल्कुल सही आ रहे हैं। अरे जब भाई जय गाँव में खेती कना छन लोग उन हेल्थ आंगल छोड़े लेन, लेकिन जय गाँव का लोग काम कना छन खेती कना छन ऊ गाँव तक के लिए नहीं आप सुविधा देना छन। नमस्कार, आप अपनों क्या छन?
3: आलम सिंह।
1: आलम जी, आप बताएं कि अभी आपन बताए जो बात कि साहब खेती किसानी से जुड़ी कोई भी सुविधा नहीं मिलनी। अच्छा बताओ, कभी ये विभाग का लोग आना छन गाँव
3: में? कबर कबर
1: क्या कह रही गांधी ना और क्या कह रही जान देना?
3: कुछ नहीं बोलते हैं बस।
1: बोलने थोड़ा हो जान कुछ है ना भाई। अच्छा जन, ये बताना चाहे कि अदर है घेर बाढ़ तो जो आपका जनप्रतिनिधि छन, आपका प्रधान छन, क्षेत्र पंचायत विधायक छन, यू मां कभी आपन अपनी बात जो एक बड़ी समस्या हो रैक कुछ हुआ च निदान कुछ?
3: ना कुछ नहीं,
1: निदान कुछ नहीं हुआ। ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा जो ठुल जनप्रतिनिधि छन, गाँव का जो प्रधान छन, क्षेत्र पंचायत छन, वो तो बेचारा लगे आ रहे हैं लेकिन उन रोज गाँव का लोग से मुलाकात करण, लेकिन जो ठुल जनप्रतिनिधि छन वो कहीं ना कहीं उदास छन किले जनदा। आप अपनों क्या छन? रूपचंद जी, आप बताएं कि हमारा जो ठुल जनप्रतिनिधि छन वो सिर्फ चुनाव का दौरान तो खूब दिखे दिन गाँव में इन केड़ दूला क्या सड़क चढ़ क्या पैण चढ़ वो एक बात क्या हूँ फिर?
4: मतलब हमारे जो प्रधान जी से नहीं हूँ तो मतलब काफी प्रोग्रेस कर गाँव में, बाकी रहे नेता लोगों को बात वो तो हम नहीं जानना।
1: तो वो अकेले जान देना आप जब तो बोल रहे कि हाँ रे कुछ कह रो
4: ना ना अभी ना सब उन्होंने कहा बोल जन की भाई हमें निकल आता निकल पर कोई कुछ नहीं करता खाली आश्वासन से भाई कुछ नहीं।
1: आप तरफ बड़े कोई बड़ी मांग छे कि साहब गाँव में अगर इन हुए जा तो हम ही कर दूँ?
4: ना ना हम तो इन ना कि एक तो मतलब जो चुकी हॉस्पिटल नहीं छे हॉस्पिटल है परेशान छे किस जान पड़ दो किस वाला से नगर भेज दिन ये वजह से वो परेशान छे मतलब बहुत ज़्यादा
1: बोलन बैठ गए ना हमारा छुआ दगड़ा। अच्छा देहरादून घूमे के आ जाओ घंटा घर?
6: अरे घंटा घर तो घूमे जो हम 5 साल उम्र से।
1: अच्छा
6: आप क्या घूमना आप तो देख देखी थे उन मन भी नहीं करते हो जाना होता है
1: भीड़ का था ना।
6: अरे उनका खा पाया तो खुला रहा आप जन ये कुछ खुला उन रहा जो चारों तरफ घूम लिया नई नई चीज देखा हो बारे आप तो नई चीज के देखो तो सब नई चीज भी पुरानी हुई जिन
1: बिल्कुल ठीक बना चे नई चीज पुरानी हुई जहाँ एक दिन और ये गाँव को इतिहास भी बहुत पुराना छ लेकिन समय का साथ ये गाँव का जो अपना मूल्य छन वो बदलता हमल नहीं देखा कि लेके आज भी पठलदार कूड़ मित्र ठीक समय में दिखेणु और यह हमारा अपन पछाण छ ठीक छ एक विकास छ लिंटर भी आनी चंदिन जय मोह मा भगयानों में पैसा वाला वो कर निकाला लेकिन जो एक हमारी सभ्यता छ उख में ही हम देखना चाहूँगा कि ठीक ये पंचायत भवन का समीण में एक कूड़ देखना चाहमी जे फिर ताला लगे छन तो क्या यक पलायन की समस्या भी छे जय दगड़न में था एक पंचायत भवन तक पहुंचा है उनसे बात कर ला। नमस्कार, आप अपनों क्या छे?
7: नमस्कार, मेरा नाम जगमोहन सिंह।
1: जगमोहन जी, कितना लोग पलायन से प्रभावित छिन के लगे पौड़ी में बोले जान कि ज्यादातर गाँव भुथा हुए गिन निराय लोग अब क्या यह समस्या ये गाँव का संबंध में भी छे?
7: हाँ कले नीचे छे चा पलायन मतलब यो छ कि अगर कह परिवार में अगर दुई भाई छन तो वहाँ में से एक भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में चाहे या कहीं सेटल चाहे तो वही लोग मतलब कोई देहरादून कोई पौड़ी कोई श्रीनगर दिल्ली तक बसिया छन मतलब लेकिन इन नीचे की वो पलायन होगी तो वो ओणी वो कुछ भी ब्यो कार्य जो हों तो ओण लगे।

0: से चलना चाहूँ मतलब
1: स्थानीय उत्पाद का खातिर सरकार बनी छे कि भाई जे गांव में जो चीज ज्यादा हो वही पर ही आधारित छोटा छोटा उद्योग खोल देला तो भल हो जा, यानी एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पादन, इनका एक कुछ योजनाएं चलना चाहिए राज्य सरकार की। आप ही बताओ कि गांव बुधेशु में सबसे ज्यादा क्या हूं अन्न फसल पात फल फ्रूट क्या हूं?
0: फल फ्रूट मतलब केवल मतलब ये ठंड चाह तो केवल माल्टा मौसमी ये चीज हूं तो ये तो अब सीजन हो तो 1 रुपये किलो भी नहीं बिबे को तो बाकी भुजी भाजी तो 1-2 साल बड़ी बिल्कुल निरपट छ खेती बाड़ी बिल्कुल 1-2 साल बड़ी बिल्कुल खत्म छ क्या कि पहले लीन हो ना कि हो ही जान छो लगभग लगभग लोग इन उन्हें भी पहुँचा दें छ लोग लिड़ू भी आँदा छ या गाँव में लेकिन अब बार कभी टाइम पर नहीं चाहे अजब हो तो बहुत बेकार हो जाते।
1: अपना सुन दो तो बताऊँ लगे ग्राम झांकी में ये बता आप मेहरदगढ़ बुधेशु गांव में छन जो कि खिरसू ब्लॉक के एक गाँव जनपद पौड़ी छे और अब तक लोगों से बातचीत करी कि आपन भी जानोल कि सच में गाँव एक विकसित गाँव छ अभी लोग और कुछ मांग करना छन कि ये गाँव का खातिर कुछ और करे जा। लेकिन एक बात जो म्यार समझ में आनी छे कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई गाँव सिर्फ 4 किलोमीटर दूर छ मुख्य पर्यटक केंद्र खिरसू से, क्या यख का लुखुत है ये पर्यटन से कुछ लाभ मिलनु छे कि ना? नमस्कार आपक नो क्या छे?
2: सोहन सिंह।
1: सोहन जी जो म्यार सवाल छे कि पर्यटन क्षेत्र चाहिए सुंदर रमणीक लोग पुजाण का कक बटकाना छन तो क्या ये गाँव है पर्यटन से कुछ लाभ मिलनु छे कि ना?
2: पर्यटन पर्यटक तो इमने सब खिरसू में
1: पर 4 किलोमीटर पर तो क्या यख का जवान दगड़ा कखे होम स्टे या कुछ खोलना छन या वक नौकरी करना छन कह न कह रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
2: होम स्टे भी है सब खिरसू में
1: तो पता छे पर बुधेशु तो वो लाभ क्या छे?
2: बुधेशु रोजगार यहाँ कुछ नहीं है
1: यख कुछ नीच बल है लेकिन आप कुछ बोलना चाहना चाहें पर्यटन से यख क्षेत्र तक कोई लाभ
3: पर्यटन क्षेत्र तो वो लाभ मिलन तो ग्वाल तक मिलन कूठे कोठी तक मिलन हमारे गाँव तक वही वही वही से कोई लाभ नहीं। दूसरी बात जब तक पलायन की बात जो सक्षम सन ये पलायन करना सन जो सक्षम नहीं सन तो मजबूरी में गाँव में रहना पड़ना।
1: बहुत सही जवाब और सवाल आपन उठाया कि सच में पलायन सिर्फ उ लोग नहीं करना छन दाना सहना छन घर गाँव में कोई संसाधन नहीं छन कोई रोजगार नहीं छ वही लोग छन घर में जो माँ संसाधन छे छन वाकई वो अपने बच्चों तो लेख दे रहा दून जग जग भी जा सक दिन पलायन का खातिर वक पहुंचना छे तो ये बात हम यख लोक जीवन थे देखना छुआ गाँव बुधेशु में। अब कुछ गीत गात की बात कह लू लगे लकी लीला जिन बोल छा की घड़े एक माँ सुनोला
4: के मासी को फूल।

0: सुंदर पारंपरिक गीत एक माँ हमारे माता बहनों ने सुना है और अब महिला मंगल दल की अध्यक्षा जो छन उनसे बातचीत कला आप अखनो क्या छे?
1: मैं हेमा देवी।
0: हेमा जी से हमने पहले भी बात करी लेकिन वे भाई नहीं पता चाहे कि महिला मंगल दल की अध्यक्षा छन। आप ही बताएं कि क्या क्या गतिविधियां आपको महिला मंगल दल कर क्या क्या काम कर दें? घास पात पर्यावरण स्वच्छता बोना छा प्रधान जी
1: हम तो मैंने एक बार सफे कर दा 15 तारीख।
0: अच्छा बोल दा छिन्न की साहब कुछ बचत की स्कीम स्वयं सहायता समूह कुछ बने छिन्न गो मा आप लोगों का?
1: हाँ बने समूह छन 7 समूह।
0: क्या क्या कर देनो समूह?
1: पैसे जमा कर दन बस।
0: ये तो मैं तभी पता छ तो आप तक नहीं पता। अच्छा बाकी यक जितना भी माता बहन छिन्न यू माँ जागरूकता की अगर हम बात कर दा सभी पढ़ी लिखी छिन्न अपना बेटियों का खातिर उनकी शिक्षा का खातिर जागरूक छिन्न या ऊँ था आप जागरूक कर दे
1: सब भी चीज है ना पढ़िया लिखिया छन सभी बस।
0: अच्छा बोल

चिन्ह की महिला मंगल दल का लोग कुछ कारा नहीं कारा डायबिटीज लगे नहीं लगे लेकिन गीत भजन खूब गंदे बोलू है ना सचेक तो चला एक आध गीत भजन नहीं हो महिला मंगल दल की सदस्यों से सुन लेना।

0: गांव बुदेसु मा पर्यावरण की इतना सुंदर तस्वीर हम तो दिखेणी छ कि गर्म मा भी ठंडक महसूस होनी छ, सुंदर बथो चलनु और ब्यालती एक बरखा भी हुए तो वैसे बहुत सुंदर मौसम बण्यु छ। लोगों आज भी स्वेटर लगाया छन किला कि गुण जंगल जान खेती में जान तो वैसे कद हिर जड़ला जा। ये कार्यक्रम को उद्देश्य छ कि जो सरकार की केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाएं छन उनको संचालन गांव में कन होनु छ। उज्ज्वला योजना का कुछ लाभार्थी छन, कुछ पात्र व्यक्ति छन, उनसे कुछ हम बात करला। नमस्कार, आपक नो क्या छ?
1: अंजू देवी।
0: अंजू जी, उज्ज्वला योजना जो कि हमारा खास करे के गैस से जुड़ी छ, वे का बाबत क्या बोल रहा आप तो मिली छ?
1: हाँ जी, हम तो मिली हूँ, लाभ तो हम तो मिली पर गैस नहीं मिली।
0: गैस तो कहते भी नहीं मिलनी आज कल।
1: गैस नहीं मिली वांग कुछ बात
0: तो वे में कोई खैरित नहीं है आप तो जो
1: घर तक पहुँचा है।
0: और कितना लोग होला जो था कि उज्ज्वला को योजना को लाभ मिले हो?
1: बहुत सारे छ, 8-10 लोग छ गाँव में जो था उन लाभ मिल।
0: ये मैं योजना में कुछ अदलाव बदलाव कर दिया वो एक बाबत पता चाह आप तो पहले कुछ खास लोग तो मिलू छ बाद में फिर सभी तो मिलन बैठ गया।
1: वो तो ऑनलाइन छ ना कनेक्शन जो ऑनलाइन हो लो लागू पता ना ऑनलाइन में जै में निरल कनेक्शन राशन कार्ड से ऊँ तो मिले ऊँ तो लाभ है वहाँ बस।
0: बिल्कुल ठीक बोले हाल की जय मैं पहली बेटे सिलेंडर छ वे थे कन के मिलन लाभ जय मैं नीच ऊँ था उज्ज्वला योजना को लाभ मिलन छ। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ग्राम झांकी माँ अब एक बहनी हमारे शामिल होनी छ, हेमा देवी छ उनको, लेकिन वो हेमा देवी ना जो कि महिला मंगल दल की अध्यक्ष छ, ये है कि हेमा देवी छन सुंदर गीतांग छन बल गाँव की तो जगदा क्या सुना ना ना हर कलाकार ही बोलो कि मैं कलाकार नहीं छो है ना तो आपके सुनाना छे नाम तय।

0: बांझ बुरांस काफल हिलास सब कुछ गौ बुदे सुमा। और जन के हमने शुरुआत में बताया कि ये गौ प्रकृति के गोद में बसी एक सुंदर गौ छ। लोग भी यखा का अपन लोक जीवन से जुड़िया छन और भरसक कोशिश करना छन कि गौ से पलायन नहीं हो सक, अपन खेती पाती से जुड़िया छन। लेकिन अजू बहुत कुछ संभावनाएं छन कि गौ बुदेशों में विकास की कुछ और योजनाओं था ले जा। यख की क्या मांग छ, विकास की क्या संभावनाएं छे, एक दा फिर ग्राम प्रधान जी से हम बात कर ला। ग्राम प्रधान जी, क्या विकास की संभावनाएं देखना छे ना आप, क्या क्या और करे जा सकत?
1: यख वी छ कृषि पर सबसे ज्यादा, और हमर जो कृषि खेती क्षेत्र पर जो बहुत ज्यादा छ, एक साथ सारी उन्हीं हुई सकती। लेकिन अभी हमारे जिला पलान में चैन फिक्सिंग वालों वो रखी हुई कृषि के घेरवाड़ों तक, तो सबसे पहले वही छ। बाकी रोजगार तो हमेशा चना रहना, रोजगार तो कहते भी पूछ लिया, कोई कमी नहीं।
0: स्वास्थ्य की बात आज है और खेती की बात आज है, ये मांग क्या करे जा सको सरकार से, आपक सबसे ठुल मांग क्या है?
1: स्वास्थ्य तो हल्का फुल्का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे कृषि में, और एक व्यक्तिगत गाँव तथा एक हॉस्पिटल नहीं खुले जा सको तब भी ठीक चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं।
0: अगर रोजगार की हम बात करा, पर्यटन से जुड़ी रोजगार की बात करा, तो वैसे कोई जन दीनदयाल उपाध्याय योजनाएं छिन, उससे अपना जवान दगड़ियों हम रोजगार का खातिर कुछ दह लगा सकते हैं सरकार से?
1: रोजगार तो जन जन पर्यटन बटी यूं तो होम स्टे का पैसे मिल दें, लेकिन यहाँ लड़के वहाँ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहना छा। हाँ जी,
0: तो अजी खारियों कुछ करण, आप एक जवान प्रधान छन, आपक अब सबसे बड़ी प्राथमिकता गौं बुदेशु का खातिर क्या छ?
1: मेरे तो रोजगार तो मुल देखे लोल मूड़ी में कुखड़ा बकरा हर चीज छन, तो रोजगार तो यहाँ से भी स्टार्ट करे सको अभी भी, बाकी लोग अपने अपने सोच छन।
0: बहुत सुंदर रविवार पे दिया लापन कि सच में कोई भी काम छोटू नहीं छ, अगर हम सोचना छुआ अपन विकास का खातिर, गौ का विकास का खातिर, तो पक्की बात छ हम तो अपन रोजगार से जुड़न, स्वरोजगार से जुड़न। तो एक रैबार गौ बुदेशु बेटे जानू छ कि जितना भी योजना सरकार बेटे ऐ वो रोजगार था देख ऐ कि यख रोजगार कन के लोग तो मिल सक, रोजगार चाहे कृषि से जुड़ी हुआ चाहे अपन व्यवसाय से जुड़ी हुआ, तो वैसे गौ को विकास भी होलू और गौ को पलायन भी रुकल। ये उम्मीद का दगड़ कि आने वाले समय गौ बुदेशु का खातिर बहुत सही जन कल्याणकारी योजनाओं को सफल संचालन का खातिर और एथर हिटलो। मैं विनय ध्यानी अब गौ बुदेशु ब्लॉक खिड़सु जनपद पौड़ी बिटिक वापस लौटनो छो अपन आकाशवाणी स्टूडियो, और गौ का लोको पण बोलोलो प्रणाम।
2: दगड़ियों अभी आप सुनना छा कार्यक्रम ग्राम झांकी पौड़ी जनपद का खिड़सु ब्लॉक का गौ बुदेशु की, और प्रस्तुत करता छा हमारे सहयोगी विनय ध्यानी। और अब चलना कुमाऊं के छोड़ और सुनना हयात सिंह बोरा का स्वर मायू सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: दगड़ियों अभी आप सुनना छा हयात सिंह बोरा का स्वरमायू सुंदर से कुमाऊने गीत और ठंड मठ के वक्त होनु चे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को हम बने आरोला समाचारों का बाद भी तो घड़ेक में ही सुन दिया समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मॉनसून तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मॉनसून तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतल खेत मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने पर जोर दिया। श्री धामी ने फायर लाइन के आसपास छोटी छोटी तलैया बनाने, वनाग्नि रोकथाम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने तथा आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1000 नई नियुक्तियों के जारी करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही ग्राम समितियों और वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए नियमानुसार आवश्यक बजट उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग के प्रत्येक डिवीजन में पशु चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पेयजल, स्वास्थ्य और मानसून तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। लोकभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आज से 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के 179 गोल्फर भाग ले रहे हैं। इस वर्ष की प्रतियोगिता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति को समर्पित किया गया है। शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करने वाला खेल है तथा प्रधानमंत्री के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को नई दिशा दे रहा है।
5: ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसके अंदर में हमारे युवाओं ने और हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सबको एक क्लैरियन कॉल दिया है जिसके अंदर में हम सब इकट्ठे फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में जुड़े हुए खेलो इंडिया, और उनका विजन कितना सुंदर है जो कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। तो आपकी जो खुद की भी प्रगति होगा, विकास होगा, वो खेल के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब ये एक हैबिट सी बन जाती है कि किस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
4: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं को मिलने जा रहे नियुक्ति पत्र इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पत्र वितरण प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, लगन और संकल्प का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

0: उन्होंने कहा कि आज नौकरी में चयन मेहनत और प्रतिभा से हो रहा है और ये नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
1: हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है, नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है। मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है, और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में ग्रामोत्थान रीप परियोजना के तहत आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों की महिला समूह के उद्यम परिवारों को लगभग 14 लाख रुपए के आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को पुनः सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान रीप परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आज देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गहन निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सभी चिकित्सक उपस्थित मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने पर्चा काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। श्री उनियाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
3: नए भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूं जो कि हम में अच्छे डॉक्टर्स हैं और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जो सेवाएं दे रहे हैं, मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं।
0: चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंह ने कहा कि यह जत्था आज रात घंघरिया स्थित गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके बाद कल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे।
4: आज 22 मई को गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु श्री गोविंद धाम के लिए रवाना हो गए हैं और कल 23 मई को श्री हेमकुंड साहब में सुबह पहुंचकर इस साल की यात्रा का जो शुभ आगाज हो रहा है उसमें सभी लोग शमूलियत करेंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पांच प्यारों की अगुवाई थी, उसके साथ बैंड बाजों की दोनों में गतका पार्टी और सभी नानक नाम लेवा संगत है जो वाहेगुरु का जाप करते करते आज सुबह 9 बजे घाघरिया के लिए रवाना हो गए हैं।
0: उधर हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए।
5: बहुत उत्साह है संगत के अंदर, रात भी इतनी भीड़ थी, सुबह भी इतनी भीड़ हो रही है और बहुत ज्यादा रश है क्योंकि लास्ट जो टाइम आया था मैं 10 साल पहले आया था, 3-4 बार मैं आ चुका हूँ, इस टाइम मैंने उत्साह जो देखा है बहुत टाइम बाद देखा, बहुत ज्यादा संगत है।
0: रुद्रप्रयाग जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और वन संपदा की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में जखोली रेंज के वन क्षेत्र में आग लगाने वाले एक व्यक्ति को ड्रोन निगरानी के माध्यम से चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने आरोपित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि विभाग का प्राथमिक उद्देश्य आमजन के सहयोग से वनाग्नि की घटनाओं को रोकना और लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस फायर सीजन में अब तक 13 मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। और चमोली जिले में गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। कल खुलेंगे कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: स्वागत है आपको अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत की दूसरी पाली में। अरमी छापक दगड़िया सरिता भट्ट दगड़ियों अब चल दिया जौन सार के छोर और सुन दिया कविता चौहान का स्वर मा सुंदर सी जौन सारी गीत।

दगड़ियों, अभी आप सुनना चाह कविता चौहान का स्वर में सुंदर सी जौनसारी गीत, और अब फिर हृदय एकदम गढ़वाल के छोड़, और माधुरी भंडारी का स्वर में सुन लिया सुंदर सी गढ़वाली बाजूबंद।

0: अभी आप सुनना छा माधुरी भंडारी का शर्मा ये सुंदर सी बाजूबंद और आप सुनना गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटीन गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में मृणाल रतुड़ी। पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट को शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंचाई और कृषि विभाग का अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र दिनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चलन लगियां विकास और सुरक्षात्मक कार्यों को निरीक्षण करी और चमोली जिला में गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहलू जत्था हेमकुंड तय निकली। भोल खुल्ला कपाट। अब समाचार विस्तार से। लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आज बटिन 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन टी ऑफ कर प्रतियोगिता को शुभारंभ करी। 3 दिनों तक चलन वाला ये प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों का 179 गोल्फर भाग लेना छन। ये साल की प्रतियोगिता प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की स्मृति में समर्पित छ। शुभारंभ अवसर पर राज्यपालन बोली गोल्फ धैर्य अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करने वालू खेल छ और प्रधानमंत्री का फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान तय अगिन बढ़ोण और युवाओं ते नई दिशा देणु छ।
2: ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसके अंदर में हमारे युवाओं ने और हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सबको एक क्लैरियन कॉल दिया है जिसके अंदर में हम सब इकट्ठे फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में जुड़े हुए खेलो इंडिया, और उनका विजन कितना सुंदर है जो कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। तो आपकी जो खुद की भी प्रगति होगा विकास होगा वो खेल के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब ये एक हैबिट सी बन जाती है कि किस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग का अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र दिनी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री बोली आज युवाओं तय मिलन लगियां नियुक्ति पत्र, ये बात को प्रमाण च कि राज्य सरकार उनका सपनों तय पूरु करनी च। उन बोली यू नियुक्ति पत्र वितरण प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत लगन और संकल्प को सम्मान च। मुख्यमंत्री बोली राज्य सरकारन देश को सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करी जैका परिणाम सामनी आना छन, और उन बोली कि आज नौकरी चयन मेहनत और प्रतिभा से होनी च और यू नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत बननी च।
3: हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है, नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है। मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है, और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
1: प्रदेश का विभिन्न जिलों में प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त जांच में कई यन होम स्टे सामणी एन जो निर्धारित नियमों का विपरीत होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की चार चलना छन। जिला प्रशासन और पर्यटन विभागन ये तय गंभीरता से लेनी और नियमों को उल्लंघन करने वाला होम स्टे को पंजीकरण निरस्त करीन। पर्यटन सचिव धीराज गर्भ्यालन बोली कि नियमों को उल्लंघन कन वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रैली। उन बताए कि राज्य मंत्रिमंडल होम स्टे तय बढ़ावा देण खुण 8 कमरों तक का आवासों तय भी योजना का तहत आवेदन की अनुमति देनी च, पर सभी इकाइयों खुण पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य रोलू।
4: होम स्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होम स्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होम स्टे में जो संख्या हमारे पहले 6 तक सीमित थी उसके स्थान पर 8 रूम तक के होम स्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स, और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होम स्टे चला रहे हैं, तो उनको बीएनबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए हैं।
5: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशीन आज देहरादून जिला का सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चलन लगियां विकास और सुरक्षात्मक कार्यों को स्थलीय निरीक्षण करी। ये दौरान उन जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग का अधिकारियों ते आगामी बरसात ते देखी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों ते प्राथमिकता का आधार पर जल्दी पूरा करने का निर्देश देनी। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मलबा की स्थिति को जायजा लेंदों अधिकारियों ते तत्काल ये को चैनलाइजेशन कार्य शुरू करने का निर्देश देनी। उन बोली कि बरसात से पहले आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों तय समयबद्ध तरीके से पूरा करन बहुत जरूरी चाहिए, इससे भविष्य में कै भी प्रकार की आपदा से होने वाला नुकसान तय कम कर सको। उन बोली कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास और सुरक्षा तय लेकी गंभीर और जनहित से जुड़िया कार्यों में कै प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होली। चमोली जिला में स्थित हेमकुंड साहिब की यात्रा खुण आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब की श्रद्धा और बैंड बाजों की मधुर ध्वनि का बीच सिख श्रद्धालुओं को पहलू जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तय निकली। गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी का प्रबंधक सेवा सिंघन बोली कि यू जत्था आज रात घांगरिया स्थित गुरुद्वारा में विश्राम कर लूँ, ये के बाद भोल हेमकुंड साहिब का कपाट श्रद्धालुओं खुण दर्शनाथ खोली जाला।
6: आज 22 मई को गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु श्री गोविंद धाम के लिए रवाना हो गए हैं और कल 23 मई को श्री हेमकुंड साहब में सुबह पहुंचकर इस साल की यात्रा का जो शुभ आगाज हो रहा है उसमें सभी लोग शमूलियत करेंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पांच प्यारों की अगुवाई थी, उसके साथ बैंड बाजों की दोनों में गतका पार्टी और सभी नानक नाम लेवा संगत है जो वाहेगुरु का जाप करते करते आज सुबह 9 बजे घाघरिया के लिए रवाना हो गए हैं।
1: वखी हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जान वाला श्रद्धालु यात्रा ते लेकी बहुत उत्साहित छन। यात्रा ते सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनौन का खातिर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भला इंतजाम करिया छन। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियान कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करी। अधिकारियों ते समयबद्ध पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनौन का निर्देश देनी। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्था, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों का निस्तारण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करी।
7: जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDM तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के सभी के साथ में बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट को शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन सिंचाई और कृषि विभाग का अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 483 अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र दिनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशीन सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चलन लगिया विकास और सुरक्षात्मक कार्यों को निरीक्षण करी और चमोली जिला में गोविंद घाट से पंज प्यारों की अगुवाई में पहलू जत्था हेमकुंड साहिब तय निकली, भोल खुल्ला कपाट। ये का साथ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
0: समाचारों का दगड़ी ही कार्यक्रम ग्राम जगत बटोल ने मीथे दया अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार साथियों, एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं देहरादून केंद्र से कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज मैं धनंजय भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों, पौधों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता से है। एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या को प्रजातीय विविधता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे जंगल, रेगिस्तान, झील और उनके पर्यावरण के बीच की विविधता को पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। इसके उद्देश्य मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों को लेकर वैश्विक स्तर पर विकसित करना है। दुनिया की अधिकांश खाद्य आपूर्ति जैसे पौधों और मछलियों से और पारंपरिक दवाएं सीधा तौर पर जैव विविधता पर ही निर्भर है, इसलिए इस दिवस को मनाते हुए हमें इसके संरक्षण के लिए भी पहल करनी चाहिए। चलिए साथी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सबसे पहले ये जरूरी संदेश।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए साथी, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक

0: साथियों, इस गीत के बाद आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अब वक्त है कार्यक्रम में एक वार्ता का। सुनते हैं जैव विविधता और कृषि विषय पर। वार्ताकार हैं मिस्टर सुमन कुमार। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: जैव विविधता प्रकृति का वह अनमोल खजाना है जिसमें छोटे छोटे कीट से लेकर विशालकाय वृक्ष और जीव जंतु शामिल हैं। इन सबका संतुलन ही हमारी धरती के जीवन का आधार है। हमें भोजन, कपड़ा, ईंधन और जीवन रक्षक दवाइयाँ प्रकृति से ही प्राप्त होती है। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। जैव विविधता स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग है जो स्वदेशी और आधुनिक चिकित्सा के लिए औषधीय संसाधन उपलब्ध करवाती है। औषधीय गुणों वाली प्रजातियों सहित 45,000 से अधिक पौधे की प्रजातियां आयुर्वेद जैसी भारत की पारंपरिक चिकित्सा पर

प्रणालियों की रीढ़ है। कृषि में जैव विविधता की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जो अपनी कृषि जैव विविधता पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत फसल विविधता का केंद्र है, जहाँ चावल की 50,000 तथा ज्वार की 5,000 से अधिक किस्में हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अत्यंत लोकप्रिय कविता है, जो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। यह कविता हमें पेड़ों, नदियों और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देती है। तरवर हमें पुकारते, मत काटो हमको यार। तरवर हमें पुकारते, मत काटो हमको यार। हम देते प्राण वायु, करते सबका उपकार। हम देते प्राण वायु, करते सबका उपकार। फल फूल और छाया देकर करते सुख की छांव। फल फूल और छाया देकर करते सुख की छांव। सदा मुस्कुराते हम खरे, दूर कर देते दुख दूर। मत दूषित करो जल को, यह है जीवन का आधार। मत दूषित करो जल को, यह है जीवन का आधार। पेड़ लगाओ, वन बचाओ, प्रकृति का करो श्रृंगार। पेड़ लगाओ, वन बचाओ, प्रकृति का करो श्रृंगार। धरती माता की रक्षा में तुम भी हाथ बटाओ। धरती माता की रक्षा में तुम भी हाथ बटाओ। पर्यावरण सुरक्षित हो, ऐसा नया युग तुम लाओ। पर्यावरण सुरक्षित हो, ऐसा नया युग तुम लाओ। भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विविधतापूर्ण देशों में से एक है। वनस्पति प्रजातियों की विविधता के मामले में यह 9वें स्थान पर है। विश्व के 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट में दो भारत में स्थित हैं। अरहर, बैगन, खीरा, कपास और तिल जैसी महत्वपूर्ण फसलों की उत्पत्ति भारत से हुई है। बाजरा, दलहन, सब्जियां, अनाज, औषधीय और सुगंधित फसलें आदि का केंद्र भारत है। भारत अपनी जीव जंतुओं की विविधता में भी उतना ही समृद्ध है। यहाँ लगभग 91,000 पशु प्रजातियाँ पाई जाती है। हालांकि विविधता में तेजी से कमी आ रही है। जैव विविधता भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यह कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करती है। जैविक संसाधनों का विशाल भंडार आजीविका और उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। वानिकी और लकड़ी उद्योग भारत के सफल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% का योगदान करते हैं। 200 मिलियन से अधिक लोग वनों पर निर्भर हैं। भारतीय मत्स्य पालन 3 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन है। विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण समुदायों में रोजगार सृजन एवं ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं हैं। जैव विविधता कार्बन को पृथक कर जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम कम होता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करती है। जैव विविधता सीधे तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं जैसे परागण, मृदा उर्वरता और जल विनियमन का समर्थन करती है। यह मानव कल्याण और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत की समृद्ध जैव विविधता बढ़ते पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र की आधारशिला है, जो सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। पारिस्थितिकी पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करता है तथा संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देता है। मानवीय गतिविधियां और आधुनिक विकास के कारण जैव विविधता पर भारी संकट मंडरा रहा है। कृषि और शहरीकरण के लिए जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जिससे जानवरों के प्राकृतिक आवास छिन रहे हैं। औद्योगिक और प्लास्टिक कचरे से भूमि, जल और वायु प्रदूषित हो रहे हैं।
कई प्रजातियां विलुप्त होने

0: से जुड़े होते हैं। यदि एक प्रजाति विलुप्त होती है तो पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं आज हम जैव विविधता पर क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। आज का दिन जैव विविधता के संरक्षण, उसके महत्व और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। यह तिथि इसीलिए चुनी गई क्योंकि 22 मई 1922 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, अर्थात वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। इसका मूल उद्देश्य है स्थानीय समुदायों, शहरों और नागरिकों को छोटे छोटे प्रयासों के लिए प्रेरित करना। इसके तहत पौधे लगाना, बागवानी, संसाधनों का संरक्षण आदि है, ताकि वैश्विक स्तर पर इसका असर हो। जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान है। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसीलिए जैव विविधता को बचाना ही समय की सबसे बड़ी मांग है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों के दायरों को बढ़ाना चाहिए। यदि हम वास्तव में वन्य जीव का संरक्षण चाहते हैं तो हर हाल में अवैध शिकार पर रोक लगनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग से बचना चाहिए और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैव विविधता प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसका संरक्षण किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। यदि हमने समय रहते अपने इकोसिस्टम को नहीं बचाया तो पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज के दिन हम संकल्प लें जैव विविधता जैसी अनमोल धरोहर को हम सब मिलकर संवारेंगे। पेड़ पौधे तथा प्रत्येक जीव का संरक्षण कर जैव विविधता को अपनाएंगे। प्रकृति की इस अद्भुत विविधता में ही मानव का कल सुरक्षित है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि का सहारा लेते हुए कहना चाहूंगा, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदीजन खग बृंद शेष फल सिंहासन है, बंदीजन खग बृंद शेष फल सिंहासन है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। क्षमा मई तू दया मई है क्षेम मई है, क्षमा मई तू दया मई है क्षेम मई है, सुधा मई वात्सल्य मई तू प्रेम मई है, सुधा मई वात्सल्य मई तू प्रेम मई है, हे शरण दायनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे शरण दायनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी है तू प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आपने सुनी वार्ता जैव विविधता और कृषि पर, वार्ताकार थे मिस्टर सुमन कुमार। चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

साथियों, इस गीत के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण होने वाली फसल खराब होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत अगर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी और प्राकृतिक आग जैसी कोई भी जोखिम से किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। भूस्खलन और जलभराव जैसे स्थानीय जोखिम से भी होने वाले नुकसान को सुरक्षा प्रदान कर राहत राशि मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा अगर कटाई के बाद भी कोई नुकसान होता है तो उसे भी किसान को नुकसान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे फसल कटाई के बाद लगातार चक्रवात या बेमौसम बारिश से खेत में कटी हुई फसलों को होने वाले नुकसान से भी किसान को बीमा योजना में मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसे पंजीकरण कराने के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक, कृषि कार्यालय, जनसेवा केंद्र या ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए साथियों, कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

साथियों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, 2408-001। अब मुझे तनुजय भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 हो रहे हैं और अब वक्त है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी गीता भंडारी। पहली मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सिंचाई और कृषि विभागक भीतर अलग अलग पदों में चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास और सुरक्षात्मक कामों का निरीक्षण करो। और चमोई जिला में गोविंद घाट बटी पंज प्यारों की अगुवाई में पहली जत्था हेमकुंड साहिबक लिजी रवाना। भूल खुलल कपाट। अब समाचार विस्तारल। लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आज बटी 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू है गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंगल टी ऑफ करबेर प्रतियोगिता का शुभारंभ करो। 3 दिनों तक चलण यह प्रतियोगिता में अलग अलग श्रेणियों 179 गोल्फर हिस्सा लेने। यह सालक प्रतियोगिता प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी की स्मृति के समर्पित करी गई छू। शुभारंभक मौक में राज्यपाल को कि गोल्फ धैर्य अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करण वाल खेल छू और प्रधानमंत्री फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान के अखिल बढ़े बेर जवानों को नई दिशा देना।
2: ये जो गोल्फ टूर्नामेंट है इसके अंदर में हमारे युवाओं ने और हमारी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट कर रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सबको एक क्लैरियन कॉल दिया है जिसके अंदर में हम सब इकट्ठे फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर में जुड़े हुए खेलो इंडिया, और उनका विजन कितना सुंदर है जो कहते हैं कि जो खेलेगा वही खिलेगा। तो आपकी जो खुद की भी प्रगति होगा विकास होगा वो खेल के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, मतलब ये एक हैबिट सी बन जाती है कि किस प्रकार आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में सिंचाई और कृषि विभाग के भीतर अलग अलग पदों में चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। यह मौक में मुख्यमंत्री को कि आज जवानों को मिलण वाल नियुक्ति पत्र यह बातक प्रमाण छू कि राज्य सरकार उनर स्वर्णों को पुर करण है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण प्रतिभाशाली जवानों की मेहनत लगन और संकल्पक सम्मान छू। मुख्यमंत्री को कि राज्य सरकार देशक सब है सख्त नकल विरोधी कानून लागू करो जैक परिणाम शामिल में उड़िन। उन्होंने कहा कि आज नौकरी में चयन मेहनत और प्रतिभाल होना और यह नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड सबु है ठुल ताकत बनना।
3: हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। आज नौकरी अब सिफारिश से नहीं मिलती है, नौकरी मिलने का मानक है तो केवल और केवल मेहनत है, प्रतिभा है, क्षमता है। आज चयन पहचान से नहीं बल्कि प्रतिभा से होता है। मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नई सोच के साथ ये हमारा नया उत्तराखंड है जो अनवरत रूप से अब आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सेटिंग नहीं चलती है बल्कि मेरिट चलती है और मेहनत चलती है, और यही नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है।
1: प्रदेशक अलग अलग जिलों में प्रशासन और पर्यटक विभागक दगड़ जांच में बहुते यस होमस्टे शामिल में आई छिन जो निर्धारित नियमों को उल्ट होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसी संचालित करी जाने। जिला प्रशासन और पर्यटन विभागल इके गंभीरता से लेबेर निकायों को उल्लंघन करण वाल होमस्टे और पंजीकरण निरस्त करी हालिन। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्यालल को की नियमों को उल्लंघन करण वालों पर अगिल्ले सख्त कार्रवाई जल। उन्होंने बता कि राज्य मंत्रिमंडल होमस्टे के बढ़ावा देने के लिए 8 कमरों तक आवासों को ले योजना के भीतर आवेदन अनुमति दी रहे, तब ले सब के लिए पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन जरूरी छू।
4: होम स्टे में एक तो वो जो अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी चीज एक अच्छी बात क्या है कि होम स्टे के प्रमोशन के लिए अभी कैबिनेट ने हमें परमिशन दी है कि जो होम स्टे में जो संख्या हमारी पहले 6 तक सीमित थी उसके स्थान पर 8 रूम तक के होम स्टे के लिए लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं जो यहाँ लोकल्स, और वो ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने केवल 250 स्क्वायर मीटर की जमीन ली है और उसमें अपना घर बनाया, उसमें होम स्टे चला रहे हैं, तो उनको BNB के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना कॉमर्शियल बिजली पानी सब वगैरह यूज कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज को लाए हैं।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील आज देहरादून जिला सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चलनवाल विकास और सुरक्षात्मक कामों का स्थलीय निरीक्षण करो। यह बीच उन्होंने जिला प्रशासन और सिंचाई विभागक अधिकारियों को आने वाले बरसात को ध्यान में धरवे प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कामों को प्राथमिकता के आधार में जल्दी

0: करणक निर्देश दें। जेल की स्थानीय मैसों को कुल प्रकारक परेशानी सामना नहीं करण पड़ल। कैबिनेट मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मलबा के स्थिति जायजा ले ले और अधिकारियों को तुरंत यैक चैनलाइजेशनक काम शुरू करणक निर्देश दें। उन्होंने कहा कि बरसात है पहली जरूरी सुरक्षात्मक कामों को समयबद्ध तरीकाल पूर्व करण बहुत जरूरी छू ताबे भविष्य में कैले प्रकारक आपदा से होने वाले नुकसान को कम करी जा सकल। श्री जोशील सरखेत में आपदाक मलवाक चैनलाइजेशन और सुरक्षात्मक कामों के लिए विधायक निधि बटी 5 है 10 लाख रुपए तक धनराशि दिलाणक बात ले कोय। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर गंभीर छू और जनहित से जुड़ी कामों में कशील प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाली।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: चमोई जिला में स्थित हेमकुंड साहिबक यात्रा के लिए आज पंज प्यारों की अगुवाई में पावन निशान साहिब का अगाध श्रद्धा और बैंड बाजों के मिठ धुनों के बीच सिख श्रद्धालुओं का पहली जत्था गुरुद्वारा गोविंद घाट बटी हेमकुंड साहिबक लिए रवाना है गई। गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सेवा सिंघल कौ की यह जत्था आज रात घांगरिया स्थित गुरुद्वारा में आराम करल। यह एक बात भूल हेमकुंड साहिबक कपाट श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए खोली जल।
2: आज 22 मई को गोविंद घाट से पांच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु श्री गोविंद धाम के लिए रवाना हो गए हैं और कल 23 मई को श्री हेमकुंड साहब में सुबह पहुंचकर इस साल की यात्रा का जो शुभ आगाज हो रहा है उसमें सभी लोग शमूलियत करेंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था है सारी, पांच प्यारों की अगुवाई थी, उसके साथ बैंड बाजों की दोनों में गतका पार्टी और सभी नानक नाम लेवा संगत है जो वाहेगुरु का जाप करते करते आज सुबह 9 बजे घाघरिया के लिए रवाना हो गए हैं।
0: वह हेमकुंड साहिबा की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर बहुत खुश दिखेणीन। यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाक वास्ता जिला प्रशासन और पुलिसक तरफा बटीले बहुत भल इंतजाम करी गई छिन। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मैणक स्टाफ बैठक में अलग अलग विभागों की प्रगति की समीक्षा कर बीर अधिकारियों के बगत पर पारदर्शी और जनहित केंद्रित कार्यप्रणाली अपनौणक निर्देश दी। बैठक में राजस्व वसूली, चारधाम यात्रा व्यवस्था, अवैध खनन, पेयजल आपूर्ति और जन शिकायतों के निस्तारण सहित अलग अलग विभागीय योजनाओं की समीक्षा ले करी गई।
3: जो मासिक बैठक थी उसमें सभी SDM तहसीलदार और जो हमारे अन्य स्टाफ होते हैं कलेक्ट्रेट के सभी के साथ में ये बैठक की गई। उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितनी भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए, उसका समीक्षा भी किया गया और साथ में हमारे जितने न्यायालय के केस होते हैं उसकी भी पूरी समीक्षा की गई और साथ में पूरे जिले में हमारी कानून व्यवस्था या राजस्व संबंधी चाहे वो खनन हो, आबकारी हो या पुलिस से संबंधित केसेस हैं उन सबका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी छोटी हमें आजकल जैसे कुछ पेयजल की समस्याएं हैं या फिर अभी हमारा SIR का काम शुरू होने वाला है या सेंसस का काम अभी चल रहा है, इन सभी चीजों का भी रिव्यू किया गया।
0: आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सिंचाई और कृषि विभागक भीतर अलग अलग पदों में चयनित 483 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील सरखेत में आपदा प्रभावित क्षेत्रों चलन वाल विकास और सुरक्षात्मक कामों का निरीक्षण करो और चमोई जिला में गोविंद घाट बटी पंज प्यारों की अगुवाई में पहली जत्था हेमकुंड साहिब क्लिजी रवाना है गए भोल खुलल कपाट। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार समाप्त होनी। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और सुनेंगे फिल्म संगीत में ये पहला गीत, फिल्म प्रेम बंधन से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:46 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आइए सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत लता और मन्ना डे की आवाज में फिल्म रात और दिन से। इस गीत को संगीत बद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और बोल हैं शैलेंद्र के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं RNU देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं अखिलेश चंद्र गैरोला आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम विषय संवाद में। विषय संवाद के अंतर्गत हमारे विशेष पॉडकास्ट अशोक चक्र विजेता श्रृंखला में आज हम आपको ले चल रहे हैं उस वीर योद्धा की कहानी में जिन्होंने सीमा पर नहीं बल्कि शांति के समय भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश की रक्षा की। लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र, उनका जीवन, उनका साहस और उनका बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट अंतरिक्ष थपलियाल, जो असम रेजिमेंट के साथ सेवा का अनुभव रखते हैं। लेफ्टिनेंट थपलियाल, आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मैं आकाशवाणी के इस मंच से भारत माता के वीर पुत्र लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र के अपार शौर्य को नमन कर सकूं।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अशोक चक्र का महत्व क्या है।
1: देखिए, अशोक चक्र भारत के शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह उन वीरों को दिया जाता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में, चाहे दुश्मन का सामना हो या किसी जानलेवा स्थिति का, असाधारण साहस, अप्रतिम हिम्मत और अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं बल्कि हर सीमा, हर चौकी और हर जिम्मेदारी पर होती है।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, अब जरा हमारे श्रोताओं को लैंस नायक सुंदर सिंह के जीवन के बारे में बताइए। वो कहाँ के थे, कैसे सेना में आए और कौन सी यूनिट से जुड़े थे?
1: लैंस नायक सुंदर सिंह का जन्म 14 फरवरी 1929 को जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ जिले के गांव चौखदान में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले इस युवक के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा था। फरवरी 1947 में उन्हें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस में भर्ती किया गया, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के रूप में पुनर्गठित हुई। अपनी कठोर ट्रेनिंग के बाद वो फोर जैकरिफ के साथ तैनात हुए और धीरे धीरे एक अनुभवी इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में उभर कर आए।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, हमने सुना है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन पंजाब के हुसैनीवाला सेक्टर में हुआ। उस समय उनकी यूनिट किस ड्यूटी पर तैनात थी और स्थिति क्या थी?
1: 17-18 मार्च 1956 को फोर जैकरिफ की तैनाती पंजाब के हुसैनीवाला फिरोजपुर के आसपास के इलाके में थी। ये इलाका सतलुज के किनारे डैम और गाइड बंद के कारण बहुत संवेदनशील सेक्टर माना जाता है। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना के तत्वों ने इस क्षेत्र में हमला किया। हमारे सैनिकों ने प्रतिक्रिया में वीरता से पलटवार किया और बंद के एक हिस्से पर कब्जा वापस ले लिया, लेकिन डैम और गाइड बंद के कुछ हिस्सों पर अब भी दुश्मनों ने मजबूत पकड़ बना रखी थी। दुश्मन ने पथरीले इलाके में मशीन गन्स लगाकर ऐसी फायरिंग पोजीशंस बना ली जहां से वो हमारे जवानों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। किसी एक व्यक्ति को अपनी जान की परवाह किए बिना आगे जाकर इन पोजीशंस को खामोश करना जरूरी हो गया। और यहीं से शुरू होती है लैंस नायक सुंदर सिंह की वो कहानी जो उन्हें अशोक चक्र तक ले गई।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब ग्राउंड पर हमारे जवान किस प्रकार की टैक्टिकल चुनौतियों का सामना कर रहे थे? क्या था वो जो इस मिशन को इतना कठिन बना रहा था?
1: सबसे बड़ी चुनौती थी खुला और नंगा मैदान, जहां से डैम और गाइड बंद की तरफ बढ़ते हुए हर सिपाही दुश्मन की सीधी नजर और फायर के दायरे में आ जाता था। दूसरी बात, रात का अंधेरा, पानी के आसपास की नमी और पथरीला इलाका, इन सब ने मूवमेंट को धीमा और खतरनाक बना दिया था। दुश्मन की लाइट मशीन गन्स ऊंचे ग्राउंड से नीचे की तरफ फायर कर रही थी, जिससे हमारे जवानों के लिए सिर उठाकर आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में किसी एक जवान का आगे बढ़कर इन पोजीशंस को तबाह करना पूरी कंपनी के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल था, और यही जिम्मेदारी लैंस नायक सुंदर सिंह ने बिना झिझक अपने कंधों पर ले ली।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पल था, वो कौन सी रात थी जहां लैंस नायक सुंदर सिंह ने ऐसा शौर्य दिखाया कि उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पूरी घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और बंद के उस पार से दुश्मन की मशीन गन की गोलियां अंगारों की तरह बरस रही थी। हमारे जवान डैम पर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दुश्मन ने एक ऐसे कोने पर मजबूत पकड़ बना ली थी जहां से वो हमारे सैनिकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। ऐसे में एक ही रास्ता था, किसी को अपनी जान दांव पर लगाकर सीधा उनकी पोजीशन तक पहुंचना था। इसी समय लैंस नायक सुंदर सिंह नंबर 15103 को दुश्मन की पोजीशन को खामोश करने का टास्क दिया गया और उन्होंने बिना झिझक हाँ कर दी। उनके पास सिर्फ 6 हैंड ग्रेनेड थे और सामने थे दुश्मन की मशीन गन्स और तेज गोला बारूद। वो लगभग 150 मीटर तक खुले पथरीले इलाके में गोली की बौछार के बीच रेंगते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े। जब वो दुश्मन की पहली पोजीशन के करीब पहुंचे, उन्होंने पहला ग्रेनेड फेंका। इससे दुश्मन की एक पोस्ट खामोश हो गई, उनके कुछ सिपाही मारे गए और मशीन गन चुप हो गई। फिर वो आगे बढ़े दूसरी और तीसरी पोजीशन की तरफ, हर बार वो अपने ऊपर हो रही गोलीबारी को नजरअंदाज करते हुए पथरीले इलाके का फायदा उठाते हुए आगे सरकते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। तीन 3 बार ऐसा करके उन्होंने तमाम पोजीशंस को तबाह कर दिया जहां से हमारे जवानों पर सबसे तेज फायर हो रहा था। उनकी इस वीरता के कारण फोर्ट जैकरिफ बंद के उस हिस्से पर पूरी तरह कब्जा जमा पाई, दुश्मन को पीछे धकेल दिया और पूरा इलाका सुरक्षित कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की, उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, मिशन कम्प्लीट करना और अपने साथियों की जान बचाना।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, इतनी कठिन परिस्थिति में जब हर पल मौत सामने खड़ी हो तब भी ऐसे साहस का प्रदर्शन, ये भारतीय सेना के किस मूल सिद्धांत को दर्शाता है?
1: यह भारतीय सेना के उसी मूल मंत्र को दर्शाता है जिसे हम अक्सर बोलते हैं, नाम नमक निशान। सोल्जर के लिए अपने रेजिमेंट का नाम, अपने देश का नमक और अपनी पलटन का निशान उसकी अपनी जान से भी बड़ा होता है। लैंस नायक सुंदर सिंह ने दिखाया कि जब देश की मर्यादा, यूनिट का सम्मान और साथियों की जान दांव पर हो तो एक फौजी अपनी सुरक्षा के बारे में सबसे आखिर में सोचता है। इसी कर्तव्य निष्ठा की वजह से उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और वो जम्मू एंड कश्मीर से पुरस्कार को पाने वाले प्रथम वीरों में शुमार हुए।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज के युवाओं के लिए जो फौजी जीवन को सिर्फ एक नौकरी के रूप में देखते हैं, लैंस नायक सुंदर सिंह का जीवन क्या संदेश देता है?
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि फौजी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का प्रतीक है। एक साधारण परिवार का बेटा जो एक छोटे से गाँव से निकल कर फोर्ट जैकरिफ का वीर जवान बनता है और फिर हुसैनीवाला जैसे संवेदनशील सेक्टर में अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी कंपनी को जीत की राह दिखाता है। ये कहानी हर युवा को बताती कि आप कहीं से भी आते हो, अगर जज्बा सही हो तो आप देश के इतिहास में अपना नाम लिख सकते हैं।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, जब आप जैसे अधिकारी स्टूडियो में बैठकर इन कहानियों को सुनाते हैं तो हम सब के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हम कभी उन वीरों का कर्ज चुका सकते हैं? आप आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम इन वीरों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनकी कहानियों को जिंदा रखें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। चाहे आप फौज में हों, पुलिस में, किसी दफ्तर में, खेत में या कक्षा में, अगर आप अपना काम ईमानदारी और समर्पण से कर रहे हैं तो आप भी देश की सुरक्षा और उन्नति में हिस्सा डाल रहे हैं, यही असली राष्ट्रभक्ति है।
0: तो श्रोताओं, आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने सुना लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र की वीरगाथा, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्होंने हुसैनीवाला के मोर्चे पर अपनी जान से खेलकर दुश्मन को पीछे धकेला, अपने साथियों की जान बचाई और भारत के तिरंगे को सर उठाकर लहराने दिया। आइए अंत में उन सब वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने सीमा पर खुद को भुला दिया, जिन्होंने सीमा पर खुद को भुला दिया, गोलियां खाकर भी तिरंगा संभाल दिया, वही असली वीर हैं जिनके एक एक श्वास देश के नाम लिखा हुआ, भारत के विकास के पास। ये कहानी सिर्फ लैंस नायक सुंदर सिंह की नहीं, उन सब वीर सैनिकों की कहानी है जो रोज हमारे लिए जागते हैं ताकि हम आराम से सो सकें। इन्हीं वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन। यही थे आज के विशेष कार्यक्रम के ट्रू हीरोज ऑफ आर नेशन। मैं हूं आपका आरजे, आकाशवाणी देहरादून से विदा लेता हूं। शौर्य जिनका स्वभाव है, देश सेवा जिनका धर्म है, भारत उन्हें सदा याद रखेगा। जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कथा सागर के अंतर्गत श्री दिनेश चंद्र जोशी से कहानी भयमुक्त।

0: कहानी का शीर्षक है भय मुक्त। उसने पहले मुंह बनाया, फिर त्योरियां चढ़ाई, फिर गर्दन झटकी और अंत में सारे गुस्से को बटोरते हुए बड़बड़ा उठा। इस बड़बड़ाहट में बड़े बाबू के लिए निकली हुई भद्दी गालियां थी, अपनी हालत के लिए जिम्मेदार अपनी ही कारस्तानियां, और सुरेश के लिए खींच भरे हुए जुमले थे। इस एहसास के बावजूद कि पिछले साल भर से सुरेश ने उसे तथा उसकी पत्नी दीपा को अपने घर में शरण दे रखी है, शरण ही नहीं दे रखी, वह बाकायदा उन दोनों के खाने पीने का खर्च भी वहन कर रहा है। साफ कोई से कहा जाए तो खर्च ही नहीं वहन कर रहा बल्कि उन्हें पाल पोस रहा है। सुरेश ने उन दोनों को आर्थिक व भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर रखी थी, वरना वे दोनों अब तक फाके बिताकर मौत के कगार पर होते या नदी में डूबकर एक निहायत रोमांटिक किस्म की आत्महत्या कर लेते। इतना सब करने के बावजूद भी आज उसे सुरेश के ऊपर खींच इस बात पर को लेकर चढ़ी थी कि उसने किस काइयां बदमाश व निकम्मे आदमी से उसका परिचय कराया। इतने बड़े शहर में सिर्फ यही लंपट आदमी मिला था उसे परिचय करवाने के लिए। असल में सुरेश भी बड़े बाबू को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता था, एक तीसरे शख्स के माध्यम से उसने बड़े बाबू से उसका परिचय कराया था। बड़े बाबू रिटायरमेंट के वक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पहुंच गए थे, लेकिन उनके प्रति संबोधन वही पुराना चल रहा था जिसके जरिए वे पिछले 30 साल की नौकरी में जाने जाते थे, यानी बड़े बाबू। रिटायरमेंट के बाद वे एक नए खुले कॉरपोरेशन में नौकरी कर रहे थे। वे जरूर तुम्हारे दोस्त की नौकरी दिलवा देंगे, कॉरपोरेशन नया खुला है, नियुक्तियाँ होनी ही हैं। बड़े बाबू काफ़ी अनुभवी, संपर्क वाले व मददगार व्यक्ति हैं, अपने पिछले विभाग में काफ़ी लड़कों को नौकरी लगवा चुके हैं। थोड़ा सा लत खराब है पीने पिलाने की, वरना हीरा आदमी है हीरा। सुरेश के दोस्त ने बड़े बाबू का ऐसा शानदार परिचय कराया था। अपने दोस्त के इतने भरोसेमंद आश्वासन के बाद ही सुरेश ने बड़े बाबू से उसको मिलवाया था, उसकी मजबूरी का बखान करते हुए यथाशीघ्र भरपूर कोशिश करने की सिफारिश की थी। बड़े बाबू शालीनता से मुस्कुराए थे, उन्होंने बंद गले का कोट पहना हुआ था, बुढ़ापे के बावजूद उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर दार्शनिक किस्म की प्रौढ़ता। ठीक है, कल अपने सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर ऑफिस में आ जाना, रिज्यूम एप्लीकेशन मैं वहीं बनवा दूंगा। बड़े बाबू ने दिलासा के साथ उसके कंधों पर हाथ रखा था, उसे लगा यह गंभीर स्नेहिल व्यक्ति जरूर उसे नौकरी दिलवा देंगे। ठीक उसी दिन से बड़े बाबू से उसका पाला पड़ना शुरू हुआ था। इस परिचय के बाद एक लंबा अरसा बीत चुकने के उपरांत एक रोज वह घर से गुस्से में दांत पीसते हुए यह इरादा करके निकला था कि आज बड़े बाबू का गिरेबान पकड़कर वहीं मेज पर सबके सामने जवाब तलबी करा के छोड़ूंगा कि अगर काम नहीं हो सकता है तो उसे पिछले 7-8 महीनों से मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है। हर बार अगले हफ्ते का आश्वासन दे देते हैं, कभी कहते हैं बड़े साहब छुट्टी पर हैं, कभी कहते हैं चीफ के यहाँ से रोड़ा अटक रहा है, बस एक ही वाक्य, धैर्य रखो, काम जरूर होगा, आते रहा करो, मिलते रहो। और आखिर में सातिर मुस्कान के साथ अपनी मनपसंद व्हिस्की की फरमाइश कर देते हैं। उसे अच्छी तरह से याद है पिछले 8 महीनों में वह बड़े बाबू को 1 दर्जन से भी अधिक व्हिस्की के क्वार्टर पिला चुका है, पर वे इतने बेशरम हैं कि लगता है जैसे उन्होंने शराब न पीकर सिर्फ 12-13 गिलास पानी के पिए हों। नकली शालीनता ओढ़े हुए घाक किस्म के पेशेवर पियक्कड़ हैं वे, और वह मूर्ख है कि एक अदद सरकारी नौकरी के वास्ते उनके झांसे में फंसता ही चला जा रहा है। उसे अपनी मूर्खता पर बेहद कोफ्त हुई। रास्ते भर सिटी बस की भीड़ भड़क्का के बीच दबने पिसने के बावजूद बड़े बाबू के प्रति पैदा हुई वितृष्णा उसके मन में जारी थी। सिटी बस से उतरकर बड़े बाबू के ऑफिस तक पहुंचने में उसे 1 किलोमीटर पैदल चलना था। अपने गुस्से को सुरक्षित रखकर तमतमाए हुए चेहरे से इस पैदल दूरी को तय करके वह ऑफिस के गेट तक पहुंच गया था। पता नहीं हर बार क्या होता है, हर बार वह गेट तक तमतमाता हुआ आता है, लेकिन गेट के भीतर कदम रखते ही उसका गुस्सा काफुर होने लगता है, उसकी बड़बड़ाहट गिड़गिड़ाहट में बदल जाती है और वह बड़े बाबू के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ गिड़गिड़ाने लगता है। देखिए बाबूजी, आप मेरी मजबूरी समझिए, अगर काम नहीं हो सकता है तो स्पष्ट बता दीजिए, मैं मुगालते में तो नहीं रहूँगा, कहीं और कोशिश करूँगा। आप तो जानते हैं मैं सुरेश के ऊपर बोझ बना हुआ हूँ, फिर मेरे साथ मेरी पत्नी भी है दीपा, वो पार्ट टाइम पढ़ाती है एक स्कूल में। अगर आप जल्दी कोशिश कर देंगे नौकरी के वास्ते तो मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा। बड़े बाबू हर बार अपनी अनुभवी अदा के साथ उससे हमदर्दी जगाते, कहते भैया थोड़ा धैर्य रखो, इन कामों में टाइम तो लगता ही है। फिर वे अपनी सुरती की सफ़ेद चमचमाती हुई डिबिया निकालते, सुरती मसल कर ओंठों के बीच दबाते और मेज़ की ड्रॉर से फाइल निकाल कर उसके सामने रख देते। फाइल के दो तीन पन्ने पलटने पर एक पन्ने पर 10-12 उम्मीदवारों के नाम टाइप होते। उसका नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर होता। नीचे मुहर व बड़े बाबू के हस्ताक्षर होते। वे उस पन्ने को दिखाते हुए कहते, देखो बड़े साहब ने ये सब लिस्ट सिलेक्शन के लिए रिकमेंड कर दी है, इसमें तुम्हारा नाम तीसरे नंबर पर है। अब सिर्फ चीफ साहब के यहाँ से अप्रूवल आना बाकी है, अन्य सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उन सारे लोगों के आवेदन पत्र व अन्य विवरण इसी फाइल में पीछे नत्थी होते। बड़े बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते, देखो मुझे इस कॉरपोरेशन में रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिली है, आखिर रिटायर आदमी को नौकरी उसकी योग्यता पर ही तो मिलती है ना। ये सारे अधिकारी मेरे हाथ के भर्ती हैं, बड़े साहब, चीफ साहब, माथुर साहब, सब हमारे पिछले विभाग में जब नौकरी में भर्ती हुए थे तो इन सबको मैंने अपने हाथ से ज्वाइन कराया था। उन दिनों मैं डीलिंग असिस्टेंट था और ये सब लड़के नए नए इंजीनियर भर्ती हुए थे। आज सब इस नए बने कॉरपोरेशन में डेपुटेशन में आ गए हैं तो मुझे भी रिटायरमेंट के बाद याद कर लिया भाइयों ने। आखिर याद क्यों नहीं करेंगे, मैंने ही तो सिखा रखा है सबको नौकरी का शऊर। ये सब आज धनाढ्य हैं, कोठी कार इंडस्ट्री वाले हैं, पिछले विभाग की आमदनी की बदौलत इन सब की ऐश छन रही है। बड़े बाबू फिर असली मुद्दे पर आ जाते, कहते अब अगर मैं इनसे किसी काम के लिए कहूँगा तो मना थोड़े करेंगे, तुम्हारी सिफारिश मैंने सबके कान में कर रखी है, तुम चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। वे फिर सुरती की डिबिया से सुरती निकाल कर ओठों के मध्य रख लेते और फाइल में नज़रें गड़ाए हुए ऐसे खो जाते जैसे फाइल में से विस्की की संभावना खोज रहे हों। यह बात 100% सच होती, उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ विस्की गूंज रही होती और दिल में उठ रहा होता हल्का हल्का सरूर। इस कल्पना के बाद उनको असली तलब लगती और वे बेताब हो उठते। आज भी वैसा ही हुआ, गिड़गिड़ाने के बजाय वह उनके सामने आकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसको देखते ही बड़े बाबू की आंखें चमक उठी, उन्होंने गर्मजोशी से उससे हालचाल पूछे। उनकी आंखें उसकी जेबों की ओर फिसली, नशा न किए हुए उन्हें 3 दिन बीत चुके थे। वे बेसब्री से अपने किसी मुवक्किल का इंतजार कर रहे थे। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब कोई नहीं आता था तो वे अपने खर्च से पी डालते थे। उसने आज कोट भी नहीं पहना था और न ही उसके हाथ में कोई थैला था। बड़े बाबू निराश हो उठे थे, उन्होंने नज़रें नीचे फाइल में गढ़ा ली थी और वे चुपचाप खिन्न से फाइल में गोतासा लगाने लगे थे। काफ़ी देर तक उन्होंने नज़रें नहीं उठाई। वह अधीर हो उठा, उसने स्वयं पहल की, बड़े बाबू आगे कुछ उम्मीद है कि नहीं, कब तक मेरा काम होगा? उसके स्वर में रुखाई थी। हाँ हाँ, उम्मीद क्यों नहीं है, प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहे हैं, उम्मीदवारों की जल्द आवश्यकता पड़ेगी। असल में फील्ड में टेक्निकल काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल हम लोग टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की भर्ती में व्यस्त हैं, उसके पश्चात टेक्निकल भर्तियां की जाएंगी। तुम्हारा काम मैं करवा कर ही रहूँगा, थोड़ा सब्र की ज़रूरत है। आखिर तुम्हारा देनदार हूँ भैया, हैं हैं हैं, बड़े बाबू खिसियानी सी हंसी हंसने लगे थे। अच्छा, आज वो कुछ नहीं लाए हमारी दवा? वे बेशर्मी पर उतर आए थे। बड़े बाबू के मुँह से दवा का नाम सुनते ही उसका दिमाग भन्ना गया। जाने उसे क्या हुआ कि वह गुस्से से आग बबूला हो उठा, कुर्सी से उठा और जोर जोर से चीखने लगा, धूर्त शराबी कहीं के, नौकरी लगवाने के का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाते हो सीधे साधे बेरोजगार लड़कों को, मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ साहब से। वह गुस्से में तमतमाता हुआ बड़े साहब के चैम्बर की ओर जाने लगा। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर ऑफिस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बड़े साहब के पास जाने से पहले ही उसे घेर लिया। क्या हो गया, क्या हो गया भैया, बड़े बाबू पर क्यों नाराज़ हो रहे हो, वे बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी उम्र का ख्याल तो रखो, उनमें से कोई बोला। बहुत देखे हैं ऐसे शराबी बुजुर्ग जो युवाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं नौकरी दिलाने के नाम पर, आज मैं इनकी शिकायत करके ही रहूँगा। वह भयमुक्त होकर अपनी बात पर अड़ गया था। बड़े बाबू अपनी सीट पर बैठे बैठे कांपने लगे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे कथा सागर के अंतर्गत श्री दिनेश चंद्र जोशी से कहानी भयमुक्त। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:10 हो रहे हैं।

श्रोताओं, एक बार आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर यानी रात्रि 8:15 पर सुनिएगा एक संवाद प्रेरणा का विषय पर उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी से विशेष भेंटवार्ता। आपसे बातचीत करेंगे रमेश चंद्रा। फरमाइशी गीतों फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 10:00 और फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 9:30 पर।

कल प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट का तीसरा भाग पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और कल रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगत राम वर्मा और साथियों की आवाज में जौनसारी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर।

फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11 बजे। कल दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे साजन बाबू कव्वाल और साथियों की आवाज़ में चंद कव्वालियाँ। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत कल दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगी महिलाओं की बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और उनका उपचार विषय पर डॉक्टर स्वाति चोपड़ा से कल्पना पंकज की बातचीत। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे राग मुल्तानी पर डॉक्टर निर्मल पांडे का ख्याल गायन। फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम एक कलाकार का समय रहेगा कल दोपहर 4:30 पर, जिसमें हमारे कल के कलाकार होंगे गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 होने को श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक संवाद प्रेरणा का विषय पर उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी से विशेष भेंट वार्ता। आपसे बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने प्रशासन को केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संवेदनाओं, सेवा और संकल्प के साथ उसे जन जन तक पहुंचाया। हमारे कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड राज्य की पूर्व मुख्य सचिव, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: रमेश जी, आपका नमस्कार और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: आपके करियर की बात करें, आप भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी रही हैं, इसके बाद आप पुलिस सेवा में भी रहीं और फिर प्रशासनिक सेवा में भी आपने कार्य किया। इस बहुआयामी और गतिशील सफर की शुरुआत की प्रेरणा मैडम आपको कहाँ?

0: समाचार पत्र है अंग्रेजी का, उसमें मैंने इंटर्नशिप की थी, और अंग्रेजी की मैगजीन है इंडिया टुडे, वहां पे भी मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत अनुरोध था कि सिविल सर्विस का एग्जाम दो। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद, बीए फाइनल करने के एक महीने बाद ही मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम दे दिया था। तो पहली बार 1985 में जब एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया था 1986 में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में, भारतीय सूचना सेवा। आपका आकाशवाणी का भी उससे संपर्क है, सूचना सेवा से, क्योंकि सूचना सेवा के अधिकारी भी आते हैं यहाँ पे।
1: जी
0: मेरा बहुत पुराना संबंध है आकाशवाणी से। मेरी प्रथम जो नौकरी थी वो सूचना सेवा में ही थी,
1: जी
0: और आकाशवाणी दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग की थी एज असिस्टेंट न्यूज एडिटर, ANE बोलते थे उस समय। और जो न्यूज बुलेटिन होता था आकाशवाणी का, दिल्ली का, उसका एडिटिंग मैं करती थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम था, बहुत उसमें बहुत आनंद आता था मुझे उस कार्य में। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से एग्जाम दे दिया था 86 में, सेकेंड टाइम जब एग्जाम दिया तो फिर से मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा रैंक इम्प्रूव हो गया, तो मुझे IPS मिल गया, इंडियन पुलिस सर्विस। तो फिर ट्रेनिंग में हैदराबाद में चली गई नेशनल पुलिस एकेडमी में। उसके पहले मैंने तीसरी बार एग्जाम दे दिया था। तो मैंने 3 साल कंटिन्यूअसली सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, और ईश्वर की कुछ कृपा थी कि तीनों बार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो थर्ड टाइम जब मैंने एग्जाम दिया 87 में, तो उस समय मेरा रैंक 16 आया था, ऑल इंडिया 16 रैंक मिला मुझे, और तब मुझे IAS अलॉट हुआ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो मेरा गोल रहा था शुरू से। तो तब फिर मैंने इस सेवा में काम किया।
1: आप उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला चीफ सेक्रेटरी भी रही हैं।
0: जी, ये गौरव की बात है। मैं फिर से यही कहूंगी कि ईश्वर की कृपा है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तराखंड जैसे सुंदर राज्य में, उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है, और यहाँ की मुख्य सचिव बनने का मुझे मौका मिला। तो इसके लिए मैं पूरे सिस्टम को और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ।
1: अभी आपने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ प्रशासन चलाने में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी?
0: देखिए, पर्वतीय राज्य होने के नाते बहुत सारी चुनौतियां हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ पर भौगोलिक है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ है और बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जो अनकनेक्टेड हैं, जहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ पे संपर्क का कोई मार्ग नहीं है, BSNL भी नहीं है। शायद जहाँ पे और कुछ नहीं है वहां पे आकाशवाणी जरूर पहुंच जाता है। तो
1: जी
0: ये कह सकते हैं कि जहां ना पहुंचे वाणी वहां पहुंचे आकाशवाणी,
1: जी
0: और
1: शुक्रिया।
0: आपका जो रेंज है, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए भी आकाशवाणी का हर जगह पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके माध्यम से जो जनता है उसको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कहीं कोई आपदा आने वाली होती है तो अलर्ट भी आपके माध्यम से चला जाता है, लोग सतर्क हो जाते हैं, उससे बहुत लोगों की जानें बच जाती हैं। और हर प्रकार की सरकारी योजनाओं की सूचना भी आप लोग देते रहते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन को और जो भी हम लोगों की गवर्नेंस है उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से। तो इसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। और पर्वतीय राज्य में मुख्य चुनौती होती है दैवीय आपदाओं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दैवीय आपदाएं आती हैं, अतिवृष्टि, क्लाउड बर्स्ट, एवलांच, फ्लड, इस तरह की जो आपदाएं आती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 2013 में केदारनाथ मंदिर से संबंधित बहुत ही भयंकर एक त्रासदी हुई थी, आपदा आई थी, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 5-10 मिनट में ही सारा बह गया था नीचे, और बहुत लोगों की डेथ हुई थी उसमें, क्योंकि पूरे देश से यात्री यहाँ आए हुए थे। उस समय बहुत कठिन समय से प्रदेश गुजरा था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे।
1: अभी आपने आपदाओं के दौरान आकाशवाणी की जो भूमिका है उसकी बात की, लेकिन हम आपके विभाग के ही बारे में जानना चाहेंगे। जब आपदाएं आए तो अधिकारी को किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, सबसे जरूरी चीज है आपदाओं के समय कि जो भी स्थानीय नागरिक हैं उनको पहले से प्रशिक्षण दे दिया जाए। जो गांव ऐसे हैं जहां पे आपदा आने की संभावना ज्यादा है, वो पहले से ही उसका आकलन हो जाता है। वहां के जो युवा हैं उनको वॉलंटियर की तरह उनकी ट्रेनिंग करा दी जाए, जिससे कोई भी आपदा आए तो वहां पर आपको ट्रेन्ड लोग उपलब्ध रहें। और उसके लिए जो 13 जिले हैं उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम्स हैं, वहां पे भी ट्रेन्ड अधिकारी हैं। पुलिस में यहाँ पे एक विशेष फोर्स है जिसको कहते हैं SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये फोर्स तभी बनाया गया था 2013 की त्रासदी के बाद, और SDRF एक बहुत अच्छा फोर्स है, क्योंकि वो लोग कम समय में ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पे कोई आपदा आती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाने में उनका योगदान रहता है। पुलिस के कुछ चुने हुए फोर्स को विशेष

0: ट्रेनिंग दी जाती है आपदा से लड़ने की। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है। और फिर अन्य प्रदेशों में भी अब उन्होंने SDRF क्रिएट किया है, जो स्पेशली डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए एक फोर्स है।
1: मैडम, हमारे श्रोता और खास तौर से जो युवा श्रोता हैं, वो जो कार्यक्रम सुन रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल उठता होगा, एक इतना बड़ा व्यक्तित्व जो प्रथम महिला चीफ सेक्रेटरी रही और वर्तमान में प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं उत्तराखंड राज्य की, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का,
0: जी
1: उनके
0: जी
1: बचपन के बारे में जानने का।
0: मेरे पिताजी केंद्र की सेवा में थे, सेंट्रल सर्विस में थे। उनके ट्रांसफर्स होते थे पूरे देश में, तो उस हिसाब से मेरी जो स्कूल की एजुकेशन है बहुत डिस्टर्ब रही, क्योंकि बार बार ट्रांसफर हो जाता था, तो हम लोग फिर एक नई व्यवस्था में पढ़ते थे। लेकिन शायद उसी वजह से मुझे एग्जाम्स देने की बहुत आदत हो गई, और सिविल सर्विस में कुछ फायदा हुआ होगा उससे। और इस वजह से कहीं एक जगह कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। जैसे बहुत ज्यादा समय हमारा कैलकटा में बीता, जो स्कूल एजुकेशन है ज्यादातर कैलकटा में हुई, और कॉलेज एजुकेशन बॉम्बे में हुई। और उसके बाद जब सिविल सर्विस में आ गए, पहले 2 साल तो मेरी ट्रेनिंग ही रही, पहले इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में ट्रेनिंग हुई, IPS में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद IAS में आए तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग के बाद हम लोग की 2 साल की ट्रेनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट। उस समय मुझे जो काडर अलॉट हुआ था, मेरा जो गृह राज्य है वो मध्य प्रदेश है, मेरे पिताजी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि मेरा रैंक बहुत हाई था, मुझे MP काडर मिला था। तो मध्य प्रदेश में मैंने उज्जैन में ट्रेनिंग करी, लेकिन उसके पहले मेरा विवाह हो गया था जो 1987 बैच IPS अधिकारी अनिल रतूड़ी जी से, उनसे मेरी मुलाकात राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ही हुई थी, जब हम लोग IPS की ट्रेनिंग कर रहे थे तब हम लोग मिले थे, उसके बाद हमारा विवाह हुआ, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश काडर अलॉट हुआ था। तो 1 साल तक मैं मध्य प्रदेश में थी, वो उत्तर प्रदेश में थे, तो फैमिली लाइफ तो बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन क्योंकि ऐसा नियम है कि आप काडर चेंज कर सकते हैं, तो मेरा काडर उसके बाद चेंज हुआ और 1 साल के बाद मैं उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हुई 1990 में। उसके बाद बरेली में हम लोगों की प्रथम पोस्टिंग भी साथ में हुई, फिर लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश में कई जगह ट्रांसफर्स हुए। और उसके बाद मेरे पति राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में गए थे एज अ ट्रेनर, 4 साल रहे वहां पे 1995 से 1999 तक। तो उस समय मैं भी हैदराबाद चली गई थी अकेडमी में, और 2 साल तो मैं छुट्टी पे रही। मैंने MA किया, क्योंकि उसके पहले मैंने MA नहीं किया था, तो मैंने पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट में MA किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई थी राज्य सरकार में, उस समय आंध्र प्रदेश एक प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के सचिवालय में, तो 2 साल मैंने वहां काम किया। उसके बाद हम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए, फिर 2000 में उत्तराखंड बन गया। जब अलग राज्य उत्तराखंड बना, तो क्योंकि मेरे पति उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गढ़वाल के हैं, तो हम लोग डोमिसाइल पॉलिसी में उत्तराखंड आ गए, और तब से फिर उत्तराखंड का सफर शुरू हुआ, जो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे काम करना।
1: क्या कभी आपने बचपन में सोचा था कि एक दिन प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और किसी राज्य की चीफ सेक्रेटरी बनेंगी और बाद में उसी राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त भी बनेंगी?
0: नहीं, बचपन में ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक एक्चुअली समाज सेवा का था। तो जैसे अपने घर के पास जो कुछ गरीब बच्चे अगर रहते थे जो स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको मैं बैठा के पढ़ाती थी। तो मुझे ये बहुत था कि जो हमारे आसपास जो भी गरीबी दिखती थी उससे बहुत दुख होता था, और ये प्रयास मेरा रहता था कि उनको क्या मदद कर सकते हैं, उनको कैसे हम लोग अपने बराबर ला सकते हैं, जो लोग लेस एडवांटेज हैं, हम लोगों जैसा मौका नहीं मिल रहा उनको। तो समाज सेवा का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। जब कॉलेज में आए तो वहां पे NSS की योजना आप लोग जानते होंगे, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम, उसमें भी हम लोग बॉम्बे के स्लम्स में काम करते थे, तो उस समय काफी अच्छे अनुभव रहे और मुझे लगा कि समाज सेवा में बहुत कुछ करने को है। इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर तुमको समाज सेवा करनी है तो सबसे अच्छा होगा तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाओ, क्योंकि वहां तुम बहुत बड़े स्तर पे समाज की सेवा कर सकती हो। और शायद यही मोटिवेशन था मेरा इस सेवा में आने का।
1: संघर्ष भी करना ही पड़ता है जब व्यक्ति सिविल सेवाओं की तरफ जाता है। कभी ऐसा आपको लगा कि रास्ता बहुत कठिन है, और जब ये लगा कि रास्ता बहुत कठिन है, तब आपने खुद को कैसे संभाला? हमारे युवा श्रोता जो सुन रहे होंगे, शायद उनके लिए भी ये प्रेरणादायक हो।
0: मैं अपने सभी युवा श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि विशेष रूप से अगर सिविल सर्विसेज की बात है और जो UPSC का एग्जाम है, तो पहले से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि कठिन है या आसान है। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि देश सेवा में और समाज सेवा में अगर आपके आने की रुचि है, तो आप सिविल सर्विस का एग्जाम जरूर दीजिए। और मेरा खुद का उदाहरण है कि मैंने 3 बार एग्जाम दिया और तीनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इसमें इतना कठिन कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी थोड़े पढ़ने में रुचि हो, और पढ़ने से मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई नहीं, जो देश विदेश में क्या हो रहा है, समाचार में क्या है, वो अगर आपके अंदर रुचि है, आपको पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और उससे आप अप टू डेट रहेंगे, जनरल नॉलेज में अलग अलग विषयों के बारे में आप पढ़िए, जो भी आपकी रुचि है, उससे आपको इस एग्जाम में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसके लिए तो मैं आपके आकाशवाणी और दूरदर्शन की भी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम लोग रेगुलरली आपकी न्यूज सुनते हैं या जैसे हम लोग दैनिक समाचार पत्र अगर पढ़ते हैं, तो उससे अपने माइंड की ग्रोथ होती है, मानसिक विकास होता है, हमें पता चलता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो बहुत अच्छा होता है हमारे अपनी ग्रोथ के लिए, और अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो उसमें भी फायदा मिलता है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इसके लिए प्रयास जरूर करें, और कभी भी अगर एक प्रयास में अगर आप नहीं पहुंचे वहां तक तो निराश नहीं होना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आशावान रहना है, प्रयास निरंतर करना है, तभी आपको अल्टीमेट सफलता मिलेगी।
1: मैडम, आज के समय में इंस्टेंट का टाइम है, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, 2 मिनट्स मैगी और नूडल्स का, वह भी वैसा ही हो चुका है, उसको तुरंत सफलता चाहिए। और सिविल सर्विसेज का जैसा आपने कहा, बहुत वक्त देना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक साल की बात है, अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पहले प्रीलिम्स देना होगा, जिसको आप सीसैट कहते हैं, उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको मेन एग्जाम देना है और उसके बाद इंटरव्यू देना है। तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, एक साल का समय आपको देना है, और एक साल का समय देके अगर आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निर्णय होगा।
1: आपका प्रशासनिक सेवा के दौरान का कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा मौका जिसने आपको बहुत बदला हो?
0: प्रशासनिक सेवा के दौरान बहुत सारे ऐसे अवसर आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपके श्रोताओं को भी शायद रोचक लगे। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, वहां पर मेरी तैनाती हुई थी जिलाधिकारी फतेहपुर के पद पे। फतेहपुर एक जिला है, कानपुर इलाहाबाद के बीच में है, गंगा और यमुना दोनों के बीच में पड़ता है फतेहपुर। तो वहां पे मेरी तैनाती हुई डीएम के रूप में। तो वहां पे मैंने एक विशेष अभियान चलाया, वो दिव्यांगों के लिए था। वहां पे जितने भी गांव थे, उन सभी गांव में जो लेखपाल या पटवारी होते हैं, उनके माध्यम से एक सर्वेक्षण कराया और जितने दिव्यांग जन थे उनको चिन्हित किया, उनको किस एड की जरूरत है, उनको कौन सा ऐसा यंत्र की जरूरत है। अगर कोई नेत्रहीन है तो उसको या तो छड़ी चाहिए होगी या टेप रिकॉर्डर चाहिए होगा जिससे वो अपने लेसन रिकॉर्ड कर सकता है, या अगर कोई पैरों से दिव्यांग है उसको व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल चाहिए होगी, कोई अगर हियरिंग हैंडीकैप्ड है उनको हियरिंग एड चाहिए। तो दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार अलग अलग असिस्टिव डिवाइसेस बोलते हैं उनकी जरूरत होती है। तो पूरा एक डिटेल सर्वे कराया, फिर हम लोगों ने एक एलिम्को संस्था है जो कानपुर में स्थित है, भारत सरकार की संस्था है, एलिम्को में आर्टिफिशियल लिम्स और ये असिस्टिव डिवाइसेस बनाई जाती है, एलिम्को से बात करके हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया और हर ब्लॉक में हम लोगों ने कैंप लगवाए जहां पे एलिम्को के स्पेशलिस्ट आते थे और दिव्यांगजन वहां उपस्थित रहते थे, उनकी जो नाप तोल करनी होती थी, मेजरमेंट कैंप्स लगाए किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से। और उसके बाद वहां पे 3 तहसीलें थी, तीनों तहसीलों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाए, जिस समय उनके डिवाइसेस बन गए उनको फिर से बुलाया गया और उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसमें लगभग 5,000 दिव्यांग जन जो आइडेंटिफाई हुए थे, 8-9 महीने की अवधि में उनको सबको वहां पे कुछ ना कुछ असिस्टिव डिवाइस मिल गई। ये एक बहुत ही बड़ा काम था और इसमें सरकार से कोई बजट नहीं लिया हम लोगों ने। एलिम्को ने कहा कि आपने इतने सिस्टमैटिकली ये किया है तो हम आपके सारे कैंप्स को स्पॉन्सर करेंगे। तो उन्होंने अपने CSR के माध्यम से हम लोगों के कैंप स्पॉन्सर किए और उसके बाद दिव्यांग जन इतने खुश थे फतेहपुर में। उसके बाद मेरा ट्रांसफर जब हुआ वहां से तो वो लोग सब आके हमारी गाड़ी का घेराव कर दिया, उन्होंने कहा हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे। और बहुत मुश्किल से हाथ जोड़ के हमने उनको समझाया कि नहीं, हमारा लखनऊ ट्रांसफर हुआ है, हमारे परिवार भी लखनऊ में है, तो आप हमें जाने दीजिए। फिर बहुत मुश्किल से माने, लेकिन ये बहुत अच्छा अनुभव था। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन राज्यपाल थे उन्होंने विश्व दिव्यांग दिवस पे मुझे सम्मानित भी किया था राजभवन में। तो ये बहुत अच्छा अनुभव मेरी प्रशासनिक सेवा का रहा।
1: मैडम राधा रतूड़ी, यहाँ एक तरफ भावनाएं खड़ी होती हैं, एक तरफ प्रशासनिक निर्णय, ऐसे में किस तरह से जो आज के युवा प्रशासनिक अधिकारी हैं फैसला करें?
0: देखिए, प्रशासन किसके लिए होता है, ये एक प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। तो प्रशासन किसके लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। तो अगर हम लोग जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो फिर प्रशासन होना न होना बराबर है। तो जो युवा अधिकारी है उनके लिए मैं पहले से भी यही कहती थी, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी कि सबसे जरूरी है कि आप एक्सेसिबल रहिए। हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे तो इसको हम लोग कहते थे एबीसी, एबीसी ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन का एबीसी क्या है? एक्सेसिबिलिटी, बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप उपलब्ध रहें जनता को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आप अपने कार्यालय में उपलब्ध रहें, ये सबसे जरूरी है। और दूसरा बिंदु जो और भी जरूरी है वो आपका व्यवहार है, बी से बिहेवियर। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप अगर अपने को जनता से अलग समझते हैं तो समस्या होगी। अगर आप समझते हैं कि मैं भी जनता का ही हिस्सा हूं और मुझे ये मौका मिला है इस कुर्सी पे बैठने का, और आप जनता की बात सुन के उनकी समस्या का समाधान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सम्मान मिलेगा और आत्मसंतुष्टि मिलेगी।
1: कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुर्सियां अधिकार ही नहीं देती, एक जिम्मेदारी का भार भी देती हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने बोली, कुर्सी जिम्मेदारी का भार देती है। और कुर्सी तो एक कुर्सी है ना, मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति है वो अपने को कुर्सी क्यों समझते हैं। मैं तो राधा रतूरी एक व्यक्ति हूँ, तो मैं समझती हूँ कि व्यक्ति बड़ा है, कुर्सी छोटी है। कुर्सी पे तो आप कुछ दिन बैठेंगे, उसके बाद कोई और उस कुर्सी पे बैठेगा। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूर्व मुख्य सचिव हूँ, नहीं, मुख्य सचिव तो एक कुर्सी है। उस समय मैं थी, मैं उस कुर्सी पे बैठी, अब मैं मुख्य सूचना आयुक्त हूँ, ये भी एक कुर्सी है। 2 साल बाद मैं हट जाऊंगी, मैं सिर्फ राधा रतूड़ी एक अच्छे इंसान के रूप में जानने को मानती हूँ।
1: कोई भी बड़ा अधिकारी होता है, जैसे कि मुख्य सचिव या मुख्य सूचना आयुक्त हो, एक बहुत बड़ी टीम होती है, उस टीम को प्रेरित भी करना होता है, कह सकते हैं हनुमान जी की तरह, जिनको अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का आभास ही नहीं होता। ऐसे में क्या करती थी?
0: देखिए, टीम को प्रेरित करने के लिए सबसे प्रथम स्टेप है कि आप टीम को समझें। आपकी जो भी टीम है, आप आकाशवाणी में भी काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं, क्योंकि मानव का जीवन जो है वो सामाजिक है, साथ में मिलके काम करते हैं हम लोग। तो टीम के जो आपके मेंबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल क्या परेशानियां हैं, अगर आप वो समझ के टीम से काम लेंगे तो आपकी टीम बहुत ही मोटिवेटेड रूप से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगी। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मेरी टीम ने हमेशा अपना पूरा दिल लगा के काम किया, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छे हुए जब हम लोगों ने काम किया।
1: मैडम, हमारे कार्यक्रम की एक रवायत है, जिन मेहमान को हम कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं उन्हें उनकी पसंद का एक गीत भी सुनवाते हैं।
0: अरे,
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मुझे एक गीत बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो एक पुराना गीत है, फिर सुबह होगी एक फिल्म थी जिसमें मुकेश और आशा भोसले जी का गीत है, वो सुबह कभी तो आएगी।

0: बहुत ही
1: बहुत ही अच्छे शब्द हैं इसके, बहुत ही प्रेरणादायक शब्द।
0: कोई खास वजह है इस गीत को पसंद करने के पीछे?
1: बिल्कुल, क्योंकि इस गीत के जो शब्द हैं अगर आप सुनेंगे तो उसमें यह है कि मनुष्य की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कब होगा, जब वो सुबह आएगी जब सब बराबर होंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो गैर बराबरी है उसके बारे में ये गीत कहता है कि जो गरीब अमीर सब बराबर हैं, और एक दिन ऐसा आएगा, एक सुबह ऐसी आएगी जब सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और जो हमारे गरीब तबका है उनको भी उनका अधिकार मिलेगा।
0: आपके अनुसार ऐसी कौन सी बात युवाओं में हो ताकि वो सफल हों?
1: देखिए, सबसे बड़ी चीज जो अपने युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक तो आप आशावादी रहें, कभी भी निराशा में ना आए, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, मानव के रूप में आपका जो जन्म हुआ है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मानव बाकी सभी जीव जंतुओं से फर्क है क्योंकि हम लोगों को एक दिमाग दिया हुआ है ईश्वर ने, जिससे हम लोग सोच सकते हैं और हम लोग भला कर सकते हैं। आपको अगर मानव जीवन मिला है तो आप किसी का भला करने के बारे में सोचें। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और कभी भी निराशावादी ना हो। दूसरी बात, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जंक फूड बहुत ज्यादा चल रहा है और खाद्यान्न में मिलावट है। तो एक तो अच्छा खाना खाएं, सब्जी फल निरंतर अपने भोजन में रखें जो प्राकृतिक है, उससे आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, निरंतर कोई दैनिक व्यायाम करें, अपनी डेली जो एक्सरसाइज होती है आप वॉक करें या आप साइकिल चलाएं या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करें और अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप प्रसन्न भी रहेंगे और आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं पूर्व प्रथम महिला मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी जी से। कहा यह जाता है, खासतौर से उत्तराखंड के युवाओं को लेकर बात करें और यहाँ के पानी को लेकर बात करें, कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती।
1: उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से बहुत सारे युवा मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, आजीविका के लिए। तो ये निश्चित रूप से एक समस्या है जिसके लिए पलायन निवारण आयोग भी बनाया है राज्य सरकार ने, और इसमें काफी लोग अभी वापस अपने गांव भी आ रहे हैं। जो हमारे प्रवासी हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे प्रवासी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो प्रवासियों को जोड़ने के लिए भी उत्तराखंड सरकार ने काफी पहल की है, और अभी बहुत से प्रवासी अपने गांव को गोद ले रहे हैं, अपने गांव में कुछ काम शुरू कर रहे हैं, जिससे युवाओं को वहीं पे एक मौका मिले, वहीं पे आजीविका मिले और हमारे युवा गांव छोड़ के ना जाए, वहीं पे काम करें।
0: सफलता की चाह सबको होती है, युवाओं में वो इच्छा कुछ ज्यादा ही बलबती होती है क्योंकि वो उम्र होती है सफल होने की। सफलता के लिए क्या चाहिए?
1: सफलता के लिए कोई और विकल्प नहीं है, मेहनत करनी है आपको। जो आपने एक पूर्व में चर्चा की थी कि माथे का पसीना जो है वो हाथ की रेखाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो
0: जो हाथ की
1: लेकिन
0: लकीरें
1: हाथ
0: हैं।
1: की जो लकीरें सबकी हैं, लेकिन उन हाथ की लकीरों को लेके आप कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत आपको करनी है। जब तक आपको माथे पे पसीना नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे।
0: जी, कोई ऐसे 3 टिप्स जो हमारे युवाओं को देना चाहें, खास तौर से अगर बात करें उत्तराखंड के युवाओं को?
1: युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो सबसे पहले, क्योंकि युवा में बालक और बालिकाएं दोनों आती हैं मेरे प्रशासनिक जीवन में भी और निजी जीवन में भी, कि बालिकाओं को समान अधिकार दीजिए, और ये मैं सबसे कहना चाहूंगी। आपके जितने श्रोता हैं, परिवार में भी अगर आपके बेटा और बेटी है तो उनको बराबरी से देखिए, क्योंकि हमारी बालिकाएं अगर उनको बराबरी मिलेगी तो वो भी आगे चल के मुख्य सचिव बन सकती हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पे जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज है, जो बालक हैं उनसे मैं कहूंगी कि अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सम्मान दीजिए, क्योंकि अगर बालक बालिका को सम्मान देगा तो हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि बालिकाओं को पूरी शिक्षा दीजिए, उनकी जल्दी शादी मत करिए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जैसे बाल विवाह, बहुत कम उम्र में जब लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसका बहुत उससे नुकसान होता है, और बेटी को भी समान रूप से पढ़ाइए, उसको भी आजीविका में आने दीजिए, उसके बाद उसकी विवाह के बारे में सोचिए। और दहेज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है, अभी भी आप समाचार में देखते होंगे, अभी भी दहेज हत्या जैसे पाप हो रहे हैं। तो मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगी, जो हमारी बेटे बेटियां जिनकी विवाह होने वाले हैं, दहेज को मना करिए, देने वालों को भी और लेने वालों के दोनों को ही दहेज पे जब मना करेंगे तभी जाके ये दानव जो है इसका अंत होगा।
0: आप वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि हम आरटीआई के द्वारा
1: हाँ,
0: दूध का दूध है, पानी का पानी कर लें।
1: ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये 2005 में आरटीआई एक्ट भारत सरकार ने पास किया था और उसके बाद सभी प्रदेशों में भी ये लागू हुआ। आरटीआई बेसिकली नागरिकों को सशक्त करने का सबसे बड़ा औजार है। जो भी भारत के नागरिक हैं वो किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी सूचना मांग सकते हैं आरटीआई में, और इससे पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार पे रोक लगती है। जो हमारे बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो आरटीआई के एप्लीकेशन लगाते हैं, जिनको पेंशन नहीं मिली या जीपीएफ नहीं मिला, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी आरटीआई में आते हैं। तो कोई भी भारत का नागरिक आरटीआई में एप्लीकेशन लगा सकता है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जाती है लोक सूचना अधिकारी के पास, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको लोक सूचना अधिकारी कहते हैं। 30 दिन में लोक सूचना अधिकारी को आपके आरटीआई एप्लीकेशन पे सूचना देनी है आपको। सूचना वही होगी जो उनके पत्रावलियों में धारित होगी, उनके कार्यालय में जो धारित सूचना है वही वो देंगे। 30 दिन में अगर आपको सूचना नहीं मिलती तो आप प्रथम अपील में जाते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होगा, उसको आप एप्लीकेशन भेजेंगे। अगले 60 दिन में प्रथम अपीली अधिकारी को एक सुनवाई करनी होगी, जिसमें आपको भी बुलाएंगे और पीआईओ को, जो लोक सूचना अधिकारी को भी बुलाएंगे। उसके बाद वो आदेश करेंगे। अगर वो सूचना आपको मिल जाती है 60 दिन में तो ठीक है, नहीं तो 60 दिन के बाद फिर आप द्वितीय अपील में हमारे आयोग में आएंगे। तो आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मैं हूँ और हमारे साथ 3 आयुक्त भी हैं। हम लोगों के कोर्ट है वहाँ पे, कोर्ट में हम लोग सुनवाई करते हैं। जो अपीलार्थी आते हैं और दूसरी तरफ विभाग आता है, सरकार के विभाग, उसमें हम लोग दोनों की बात सुन के फिर अपना आदेश करते हैं। तो मुझे लगता है आरटीआई प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अच्छा टूल है।
0: लेकिन सरकारी तंत्र में तो ये लोग
1: मदद मिलती है इनफैक्ट, लेकिन वो लोग कहते हैं परेशानी की बात, जो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो सही काम करने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इसी हिसाब से हम लोग आगे।
0: जी मैडम राधा रतूड़ी जी, यदि आपको अपने पूरे जीवन के अनुभव को किन्हीं 2 वाक्यों में समेटना पड़े, किन्हीं 2 शब्दों में समेटना पड़े, तो वो क्या होंगे?
1: ईश्वर की कृपा।
0: आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो खास मेहमान हैं वो हैं मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड श्रीमती राधा रतूड़ी जी। आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एक संवाद प्रेरणा का, विषय पर उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी से विशेष भेंट वार्ता। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश चंद्रा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक तक बढ़ाया गया है।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
4: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
3: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
5: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
6: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
3: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला।

0: हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:40 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आप ये सुन रहे हैं अगला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म आन से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और बोल दिए हैं समीर ने।

के और जयंस गांधी की आवाज़ में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। इस गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने और बोल थे इरशाद कामिल के। तो श्रोताओं सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत फिल्म अक्सर से। के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:53 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM संगीत। तो श्रोताओं, पेश है FM संगीत में ये अगला गीत फिल्म बजरंगी भाईजान से जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत है प्रीतम का।

शुदा समय को देखते हुए सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत। फिल्म चांदनी चौक टू चाइना से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत में संगीत है शंकर एहसान।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये अंक लेकर आपकी रेडियो दोस्त पीयूष सदा हाजिर है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो बिना वक्त जाया किए लेते हैं कार्यक्रम में ये पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी तुरन जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं तुरन जी।
1: मैं ट्राई बहुत देर से ट्राई कर रहा था, आप कॉल मिला तो बहुत खुशी हो रही मैडम।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि चलिए आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई।
1: और सुनाइए मैडम, वहाँ कैसा हो रहा है मौसम, कैसी गर्मी पड़ रही है आपको इधर?
0: जी यहाँ पे भी तो बहुत गर्म हो रहा है, राजस्थान में तो और ज्यादा गर्मी होगी।
1: हाँ जी मैडम, यहाँ भी 46-47 अभी।
0: तो ये बताइए तुरन जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो खेती बाड़ी करते हैं, बाजरा की फसल अभी लगाएंगे, 1.5 महीना बाद में बाजरा बोएंगे, अभी खेत खाली है।
0: अच्छा, तो गर्मी में आप कैसे मतलब अपने खेती को प्रोटेक्ट कर

0: करते हैं, सावधानियां क्या बरतते हैं ताकि फसल जो है आपकी अच्छी उपजे?
1: जी मैडम, अभी तो ये क्या है कि जहाँ जिसके पानी के साधन हो गया तो वो कोई और फसल बा लेते हैं, पर अभी तो हम बरसात के ऊपर निर्भर है, बरसात
0: जी
1: आएगी तो फिर वो बाजरा की फसल लगेगी मैडम।
0: अच्छा। और घर परिवार में कौन कौन है?
1: घर परिवार में मम्मी है, पापा है, तो मैं हूँ, और मैं सिस्टर है, तो अपने ससुराल में है, और मैं, 3 लोग हैं बीच में।
0: अच्छा। तो मतलब आप खेती बाड़ी से ही आप आपका घर चलता है?
1: जी मैडम।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और आकाशवाणी देहरादून आप कब से सुन रहे हैं?
1: जी मैडम, आकाशवाणी देहरादून तो मैं 2018 से शुरू किया हूँ, डीटीएच के माध्यम से। 2017-18 में डीटीएच पे आया, तो जब से आपका कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
1: कार्यक्रम मैडम सभी कार्यक्रम आते हैं, हम रेडियो के माध्यम से खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें खेती की बातें होती है, अपने युवा की बात होती है, हर हर बात होती है, तो वो सुनते रहते हैं। नमस्कार देहरादून हो गया, सब
0: जी
1: सुनते कार्यक्रम आता हूँ, व्हाट्सएप वाला।
0: जी जी व्हाट्सएप फरमाइश का जो मैसेजेस वाला कार्यक्रम होता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो आज कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है अन्नाड़ी नई वाली है, और उसमें गाने के बोल है, सुने नगारे।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से। जी
0: मकसूद हुसैन जी,
1: आप कल्पना पंकज दीदी हैं ना?
0: पीयूष स्वधा बात कर रही हूँ
1: अच्छा जी मैम। और सुनाओ मैम, कैसे हो और आकाशवाणी में कैसे हैं मैम?
0: जी। हम सब भी बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैम वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन गर्मी जो है बुरा हाल कर रही है मैम, गर्मी बहुत है मैम।
0: जी गर्मी तो बहुत ही पड़ रही है, तो
1: मैम
0: ऐसे में आप क्या-क्या सावधानियां बरत रही हैं?
1: देखो, ऐसे में हम जो है 11-12 बजे से जो है हम मतलब बाहर नहीं निकलते 4 बजे तक, और पानी ज्यादातर पीते हैं, नहाते भी कई बार है मैम।
0: जी,
1: हाँ, और अगर निकलना पड़ता भी है किसी मजबूरी से तो मैम सर पे छाता वगैरह या कोई कपड़ा सर पर रख के निकलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ऐसी गर्मियों में तो हमेशा ही जो है, कभी भी बाहर निकले तो सर पे जरूर कुछ ना कुछ ढके।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज का पानी जो होता है या बर्फ का पानी जो होता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है ऐसे में मैम।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। हमें जो
1: हाँ
0: है कोशिश करनी चाहिए कि जो मटका होता है ना, उसका पानी
1: जी
0: हम पिए।
1: बिल्कुल। हाँ वो घड़े जो थे मैं, वो वैसे तो हमारे बुजुर्गों में तो घड़े ही चलते थे, मिट्टी के बर्तन चलते थे, लेकिन अब तो मॉडर्न जमाना मैम। वैसे गांव में तो अब भी मिलते हैं छिले छड़े, लेकिन अब तो नल है, टंकियां हैं, अब तो ताजा पानी ही उसके नल से निकाले ठंडा करके 2-4 हफ्ते लगा के।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हम तुरंत जो ताज़ा पानी आता है ना, जो जमीन से
1: जी
0: निकलता है, वो
1: निकलता
0: पानी
1: है
0: तो हमारे लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: जी।
0: तो वो पानी पियेंगे
1: हाँ
0: तो हमारे सेहत पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा इन
1: हाँ
0: गर्मियों में।
1: मैम, और जो तरबूज का इस वक्त सीजन है मैम, तो तरबूज जो है जैसे हमने अभी चावल खाए या उसके बाद में चावल खा लिए तो ऐसा भी ना करें, थोड़ा 1-2 घंटे का वेट करके जब भी तरबूज का सेवन करें मैम।
0: जी तरबूज तो एक ऐसा फल है जिसे बहुत
1: जी
0: ही सावधानी से खाना चाहिए। चलिए, तो परिवार में सभी लोग सुनते हैं क्या आकाशवाणी देहरादून?
1: हाँ सभी सुन लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं तो मैम कम कम से कम 45 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ मैम, बहुत पुराना श्रोता हूँ मैं, सभी केंद्र सुनता हूँ मैम।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप जो है देहरादून केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, उन कार्यक्रम
1: जी,
0: जो है पसंद करते हैं।
1: 90 वर्ष में ये प्रवेश कर रहा है हमारा जो है केंद्र, ये आकाशवाणी, तो इससे
0: बिल्कुल
1: हमें मैम बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मतलब हमें हासिल हुआ है। आकाशवाणी जिंदाबाद।
0: जी। अब
1: जी
0: चलिए, जिस कारण से आपने फोन लगाया है तो आप बता ही दीजिए कि आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: मैम, एक फिल्म है शागिर्द, उसमें लता जी का वो मोहम्मद रफी जी का बहुत ही प्यारा गीत है, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो।

ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर।

नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दसे दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ए दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गज।

इस तन्हाई में ऐ हसीं, इतनी दूरी भली नहीं। आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का। मेरे हाथों मैं हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे।

0: जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। और आकाशवाणी समस्त देहरादून परिवार कैसा
0: जी यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं जुनैद जी आप?
1: जी मैम, मैं गांव बुढ़ा खेड़ा कातला जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ।
0: सहारनपुर से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, गांव पड़ता है हमारा बुढ़ा खेड़ा।
0: जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता भी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, काफी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आज आज मेरी बात है सफर वहीं में हो रही है।
0: जी बिल्कुल, ये तो फिर आज
1: और
0: बेहद ही खुशी का दिन है आपके लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, और जहां तक मेरा अंदाजा है आप पीयूष सुधा बोल रही है मैम।
0: जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। और बताइए जुनैद जी, क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ, और अभी तो मैंने अपने गांव के अड्डे पे दुकान कर ली है मैंने ईद से मैम। ईद पे ओपनिंग की थी दुकान की,
0: जी
1: और ये गांव बुड्ढा खेड़ा के अड्डे पे दुकान कर लिया है मैम। बस फास्ट फूड भी लगा लेता हूँ, और फिलहाल तो बस दुकान रेगुलर दुकान खोल रहे हैं मैम। ये पान पान पान लगाते हैं।
0: अच्छा, पान की भी दुकान साथ में आप लगाते हैं?
1: जी जी
0: तो ये फास्ट फूड में आप मतलब हर तरह के आप खाना बनाते हैं क्या?
1: जी जी मैम, बस फास्ट फूड के 5-7 आइटम हैं जो बनाते हैं मैम, जैसे चाउमीन, मोमोज, बर्गर हुआ,
0: जी,
1: ये स्प्रिंग रोल, ये इस तरह के 5-4 आइटम हैं जो बनाते हैं।
0: तो कैसी चलती है आपकी दुकान इन दिनों? गर्मियों में कैसी चल रही है?
1: बस गर्मी में तो मैम बहुत ज्यादा आनंद आता है भट्टी के आगे।
0: तो ऐसे में तो आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं गर्मियों में?
1: बस मैम, सावधानियां तो यही कि अपने सर को कपड़े से ढक के रखते हैं, और धूप में कम निकलते हैं,
0: जी
1: और पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और
0: ये
1: जो पशु पक्षी हैं मैम, उन्हीं उनके लिए भी अपने लिए बाद में इंतजाम करते हैं, पहले पशु पक्षियों के लिए सुबह उठकर इंतजाम करते हैं, उनके लिए दाना और पानी का छत से इंतजाम किया जाता है मैम।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो सेवा होती है ना, दूसरों की
1: जी मैम,
0: सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, इसका तो अलग से ही पुण्य मिलता है।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल
0: और जुनैद जी, कौन कौन है घर परिवार में आपके?
1: जी। मेरी वाइफ है आसमीन, मेरा बेटा है मोहम्मद शाद, और लड़की है जुनेरा,
0: अच्छा
1: और भाई बहन है, भाभी है, सब परिवार है।
0: अच्छा पूरी ज्वाइंट फैमिली है?
1: बिल्कुल मैम, ज्वाइंट फैमिली।
0: अच्छा, तो सभी लोग कार्यक्रम का आनंद लेते हैं?
1: बिल्कुल मैम, कार्यक्रम का आनंद सभी लोग रहते हैं, बल्कि कुछ हफ्तों से तो मायूस चल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम बन जा रहा था मैम, तो
0: जी
1: इसलिए नाइट में 10 बजे तक वेट किया और फिर रेडियो बंद कर दिया कि
0: बिल्कुल,
1: प्रोग्राम तो आएगा
0: हमें
1: नहीं।
0: भी बहुत ही खेद होता है कि जब ये कार्यक्रम हम नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तो जो ये है कार्यक्रम, हमने दोबारा से शुरू हो गया है ये कार्यक्रम, तो उम्मीद है ऐसे ही ये कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो जुनैद जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी मैम, जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, और राजा हिंदुस्तानी मूवी से गीत है, अलका याग्निक जी की आवाज है, और गीत के बोल है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के।
0: तो ये गीत आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जितने भी मेरे आकाशवाणी के श्रोता है सभी को डेडिकेट है मैम, क्योंकि प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो मैं ये गीत सभी लोगों को डेडिकेट मेरी तरफ से, कि आए हो मेरी जिंदगी में
0: जी
1: तुम बार
0: बिल्कुल,
1: बन।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये बात सुन के तो हमें भी बेहद खुशी हुई है कि हमने दोबारा से जो है अपने श्रोताओं का दिल जीता है।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल, आकाशवाणी हमारे साथ हर दम हर घड़ी रहता है, इसलिए हमें मनोरंजन और ज्ञान सब कुछ यहीं से मिलता है मैम।
0: बिल्कुल, और किसी के नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मेरे बड़े भाई है मोहम्मद महबूब कुरैशी, और ये कस्बा छिलकाना से जरीफ अंसारी साहब है, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा से, इलियास मंसूरी जी है कस्बा गंगो से, और ये क्या नाम ले, इनका नाम है मुकेश कश्यप भाई मुरादाबाद से हैं, जो ये सभी वक्कार फरीदी जी हैं, इन सभी के साथ ये गीत सुनवा दीजिए।
0: चलिए जुनैद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: हाँ दीदी,
0: जी, कौन बात कर रहे हैं
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी? भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी।
0: तो भगवान सिंह जी, ये बताइए कि कितने समय बाद आपकी ये कॉल लगी है कार्यक्रम में?
1: दीदी 7-8 महीने हो गए करीबन।
0: 7-8 महीने। तो आपको कैसा लग रहा है आज?
1: बहुत खुशी हो रही है दीदी, बहुत मुश्किल से कॉल मिल रहा है। जी
0: तो घर परिवार में कौन कौन है आपके?
1: सब हैं दीदी, माता पिता हैं, बच्चे हैं और भाई भी हैं, सब हैं दीदी।
0: अच्छा, और मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो तापमान है कैसा है वहाँ पे मौसम?
1: जी दीदी, हमारे इधर अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है अभी दिन में दीदी।
0: अच्छा, तो आप
1: जी
0: क्या काम करते हैं?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: तो ऐसे जो गर्मी है, इस गर्मी में आप कैसे अपनी जो फसल है उसका देखभाल करते हैं?
1: जी दीदी, हम है ना सुबह 10 बजे तक काम करते हैं और शाम को 3 बजे जाते हैं दीदी, उसके बाद काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते गर्मी के दिनों में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना भी ख्याल रखना चाहिए काम के साथ साथ।
1: जी हाँ दीदी, जब ठंडा हो जाता है मौसम, जब जाते हैं, ज्यादा गर्मी में नहीं काम करते।
0: तो मतलब खेती बाड़ी से ही जो है आपका घर परिवार चलता है?
1: जी हाँ दीदी, खेती बाड़ी से हमारा घर परिवार चलता है और हम बहुत खुश हैं दीदी, और खेती किसानी काम में हमें बहुत अच्छा लगता है दीदी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। जो किसान जो होते हैं वो तो हमारे अन्नदाता कहते हैं, कहलाते हैं।
1: जी
0: अगर वो इतनी मेहनत करते हैं तभी तो हमें जो है खाना मिल पाता है।
1: जी हाँ दीदी।
0: और बताइए भगवान सिंह जी, आप कब से जो है आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं?
1: दीदी वैसे तो मैं 1991 से जुड़ा हूँ आकाशवाणी से, और करीबन 7 साल की उम्र से दीदी मैं सुन रहा हूँ। मेरे भाई साहब एक छोटा सा रेडियो लाए थे, 2 सेल वाला दीदी, उससे जब से सुन रहा हूँ आकाशवाणी को।
0: अच्छा, तो रेडियो की बात की जाए, और अब में जो अब हम सुनते हैं, फोन से सुन लेते हैं, मोबाइल ऐप के द्वारा सुनते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगा कि पहले का रेडियो से सुनना अच्छा था या अब के मोबाइल से सुनने में आनंद आता है?
1: दीदी आपका मोबाइल से और रेडियो से डीडीएच के माध्यम से सुनते हैं आपको, तो दीदी बिल्कुल साफ आवाज आती है, साफ अच्छे क्वालिटी में गीत आते हैं। वो पहले सरसराने की आवाज आती थी रेडियो पर, थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होता था रेडियो पर दीदी, अब बिल्कुल क्लियर आता है।
0: अब थोड़ी सी सुविधा हो गई है कि आप कहीं भी सुन सकते हैं, काम करते हुए भी मतलब सुन सकते हैं।
1: जी हाँ दीदी, मोबाइल ऐप पे तो हम आए जब चाहे जब रेडियो सुन सकते हैं, कभी भी ट्यून करते हैं, आकाशवाणी का नाम बोलते हैं और सुन
0: जी,
1: लेते हैं दीदी।
0: यही तो खासियत है कि रेडियो की, आकाशवाणी की, कि आप अपने काम भी कर सकते हैं और कार्यक्रम का आनंद भी ले सकते हैं।
1: जी,
0: अच्छा, ये बताइए, अब जिस कारण से आपने फोन मिलाया है तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है मुस्कान और गाने के बोल हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश,
1: जी, आदाब मैडम
0: आदाब जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं नई मलिक बात कर रहा हूँ, सेंट्रल कश्मीर से, जिला बड़गांव में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, काफी दिनों के बाद, काफी महीने के बाद रेडियो देहरादून को मैंने कॉल किया था।
0: जी नेम मलिक जी।
1: जी, मेरा शुभ नाम नई मलिक। अक्सर रेडियो, आकाशवाणी रेडियो देहरादून की प्रोग्राम सुनते आ रहा हूँ, और मैंने पहले ही कहा कि काफी महीने के बाद भी इस प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था, कुछ महीनों के लिए थोड़ा सा हमें इसमें विराम देना पड़ा था, लेकिन अब दोबारा से हमने इस प्रोग्राम को जो है शुरू कर दिया है।
1: जी जी जी
0: तो कश्मीर
1: और
0: में कैसा मौसम है?

0: बहुत ही बेहतरीन मौसम में खिली खिली धूप है, लेकिन आज सुबह से हल्की बारिश भी हुई थी और धूप क्या भी लगभग 1 बजे के बाद धूप भी निकल गई थी।
1: जी नेम मलिक जी, जैसे कि आपने कश्मीर का नाम लिया, हम तो यहाँ देहरादून से बोल रहे हैं, तो कश्मीर का नाम लेते ही जो है थोड़ी सी जो हमारे अंदर भी ठंड का अनुभव होता है ना, वो अपने आप ही आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो कश्मीर कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, और कश्मीर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो देखने लायक जगह है, नॉर्थ
1: जी
0: कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक, या सेंट्रल कश्मीर से लेकर हमारे जो एक एरिया पड़ता है लद्दाख नेशनल हाईवे तक, उसमें भी कई जगह बहुत ज्यादा मशहूर है। हर हर जिले में अलग अलग खूबियां भी है और हर जिले में अलग अलग टूरिस्ट पॉइंट भी है।
1: जी, तो कोई ऐसे फेमस टूरिस्ट जो पॉइंट बताइए जो हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, तो कश्मीर जो आना चाहेंगे तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं?
0: अगर आप साउथ कश्मीर में आओगे तो एक जिला है अनंतनाग, उसमें एक ही जगह है पहलगाम, बहुत खूबसूरत जगह है। इस पहलगाम के आसपास एक जगह है बैतावली, कहते हैं कि सनी देओल की पहली मूवी उसी में शूट हुई थी, इसलिए उसका नाम बैतावली रखा था, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा नेशनल हाईवे श्रीनगर और लद्दाख जो नेशनल हाईवे थे, इसमें एक जगह थी सोनीमार्ग, बहुत ही खूबसूरत जगह वो भी है, और
1: बिल्कुल
0: जहाँ पर मैं रहता हूँ हमारे ऊपर एक खूबसूरत जगह है, उसको दूध पथरी कहते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर मैं टूरिस्ट पॉइंट का नाम रखता हूँ, इस प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो सकते हैं। अगर आप सेंट्रल कश्मीर में जाओगे, लाल चौक आपको खूबसूरत दिखेगा, डल झील दिखेगा, चश्मा शाइन दिखेगा, ट्यूलिप गार्डन दिखेगा, बॉटनिकल गार्डन दिखेगा, और इसके अलावा खूबसूरत दाचीगामी दिखेगा।
1: तो नेम मलिक जी, इस समय जैसे टूरिस्ट जो है कितनी उनकी तादाद है आने की?
0: बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, जब जैसे हम देखे कि अगर हम श्रीनगर में देखे तो वहाँ जो हमारे जो गाड़ी वाले हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइनें होती है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आप बड़े बड़े जो हमारे एक टूरिस्ट जगह है गुलमर्ग, वहाँ तो बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं,
1: अच्छा
0: वहाँ भी जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जाते हैं। अब जून के महीने में यहाँ एक खूबसूरत जो हमारे हिंदू भाई के लिए अमरनाथ यात्रा, वो भी खुल जाएंगे अब। बिल्कुल, वो भी
1: जी
0: बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो भी बहुत ही बेहतरीन जगह है, और मैं तमाम दोस्तों से कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे हिंदुस्तान से या विदेश से, आप कश्मीर आए और कश्मीर का मजा लीजिए।
1: बिल्कुल, ये तो मतलब चहल पहल तो हमेशा बनी रहती है कश्मीर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर एक बात कहना चाहता हूँ कि एक शेर आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
0: दिल आपकी याद में उदास है, दिल आपकी याद में उदास है, बस आपसे मिलने की आशा है, न जाने कितने लोग हमारे पास है, लेकिन हमारे लिए आप ही खास है।
1: बहुत खूब आपने लाइनें फरमाई हैं। तो नेम मलिक जी, आप क्या काम करते हैं?
0: मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे ये हार्डवेयर का सामान है या सीपी का सामान है, जितना पैंट वेट होते हैं ना, वही का मैं काम करता हूँ अपने गांव में, यार लेकिन मेरे पास शॉप है जी, वही मैं करता हूँ।
1: अच्छा, और घर परिवार में कौन कौन है?
0: घर परिवार में माँ बाप है, भाई बहन है, इसके अलावा बीबी है, और हाल फिलहाल में जिनकी पहली ही बात है, बाप बन चुका हूँ एक बेटी का।
1: बहुत बहुत मुबारक हो आपको,
0: थैंक यू,
1: हमारी
0: शुक्रिया
1: ओर
0: आपका
1: से
0: भी,
1: ढेर सारी शुभकामनाएं, आप
0: थैंक यू।
1: यूं
0: आज एक
1: ही
0: महीने
1: मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, घर परिवार में सब बढ़िया रहे।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश दिन दिन की और रात की तरक्की करे, और हमें ऑल इंडिया को हमारी तरफ से जो आने वाली ईद है, मेरी तरफ से उनको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो अब बताइए आप कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ये फिल्म का नाम है सलामी, गाने की बोले चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो ना,
1: तो ये गीत आप गुनगुना सकते हैं हमारे श्रोताओं
0: गला
1: के लिए?
0: दीजिए।
1: थोड़ा 2 लाइन ही गुनगुना दीजिए।
0: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो हेलो फरमाइश हाँ
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलक की चौरासा बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन बोले मैम। जी
0: राजा हुसैन जी, कैसे हैं सर आप?
1: हम ठीक है मैम, आप सुनाइए आप कैसी हो।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए, घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: हमारे घर परिवार सभी लोग बढ़िया हैं, मम्मी पापा बहन भाई सब बढ़िया हैं। और आपके परिवार में और आकाशवाणी देहरादून में सभी लोग कैसे हैं।
0: जी, यहाँ पर भी सब बहुत अच्छे हैं।
1: बस
0: गर्मी
1: हमारी दुआ
0: का,
1: है।
0: जी, गर्मियों का सीजन है, तो कैसा चल रहा है गर्मियों में?
1: गर्मियों में मैम बहुत, इस टाइम तो बहुत गर्मी पड़ रही है, मगर मैं सभी से ये कहूंगा कि खाना कम खाएं और पानी ज्यादा लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जो है, पशु पक्षी जो होते हैं हमारे, प्यासे भी होते हैं गर्मियों में, उनके लिए भी जो है हमें ज़रूर पानी रख देना चाहिए।
1: जी मैम,
0: और बताइए, कौन कौन है घर परिवार में?
1: मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, सभी भरा पूरा परिवार है मैम हमारा।
0: अच्छा, तो ये जो फोन, जो कॉल आपकी लगी है प्रोग्राम में, तो पहली बार
1: जी
0: आपने
1: शायद
0: फोन किया है क्या?
1: मेरा फोन तीसरी बार लगा, आप काफी समय के बाद कॉल लगा मेरा, 1 साल के बाद कॉल लगी मेरी।
0: चलिए राजा हुसैन जी, ये शिकायत भी आपकी दूर हो गई। आज आपका फोन लग ही गया, मेहनत का जो है ना फल मिल ही जाता है।
1: जी बिल्कुल मैम,
0: अच्छा, आप बताइए कि आप करते क्या हैं?
1: हम खेती किसानी करते हैं और बिजली की लाइन बनाते हैं मैम।
0: बाहर का काम है आप?
1: बाहर का काम है मैम, देखिए इतनी गर्मी में और खंबे के ऊपर चढ़ के बैठना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, आसान नहीं है।
1: हाँ जी मैम, लोहे के जो खंबे होते हैं लोहे के, तो इतने गर्म हो जाते हैं कि यहाँ चढ़ते हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं।
0: तो राजा हुसैन जी, जब भी अगर आपको, जैसे आपका काम कुछ ऐसा है, तो ऐसे में आप जो है ग्लव्स ले सकते हैं या कुछ एहतियात बरत सकते हैं गर्मी से
1: मगर
0: बचने के
1: ऐसा है
0: लिए।
1: सुबह को, अब ऐसा है सुबह को काम पर जल्दी लगते हैं, दोपहर में लाइन रहते हैं, फिर शाम के टाइम करते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब दोपहर में आप कोशिश करें कि अपना जो काम है आप शाम को सुबह ही करें।
1: जी मैम,
0: अच्छा, ये बताइए, आकाशवाणी के जो 90 वर्ष है वो पूरे होने को जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए मैं, हम यानी कि मैं आकाशवाणी से काफी समय से जुड़ा हूँ, तो काफी आकाशवाणी सुनता हूँ, बहुत सारे आकाशवाणी सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आकाशवाणी से। मुझे ये मिला क्योंकि मैं पहले जो है थोड़ा सा कम बोलता था, और जब से मैंने आकाशवाणी सुनना सीखा है ना, तो
0: जी
1: मुझे काफी मेरी फास्ट बोली हो गई है मैं,
0: जी अच्छा,
1: और
0: तो
1: काफी सीखने को मिला है मुझे आकाशवाणी से। आकाशवाणी बहुत अच्छा है, और मैं सभी श्रोताओं से ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी को सुने, उससे जानकारी मिलती है। मैं जैसा कि मैं किसान हूँ, तो खेती की बातें भी ऐसी होती हैं तो लाभ मिलता है मैम।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो ज्ञानवर्धक जो कार्यक्रम होते हैं वो भी आप आकाशवाणी देहरादून के जरिए जो है सुन सकते हैं, और गीत संगीत
1: जी
0: तो
1: जी
0: हम आपको सुनवाते ही हैं।
1: जी मैम,
0: अच्छा, अब आप बताइए कि कार्यक्रम में आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: तो फिल्म का नाम रहेगा राज, और गाने के बोल रहे हैं कि मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात हो।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मोइनुद्दीन बात कर रहा हूँ। मैडम जी
0: कैसे हैं सर आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं और हमारा आकाशवाणी का देहरादून परिवार कैसा है।
0: जी यहाँ पर भी सब बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं सर आप?
1: जी मेरा रुड़की शहर में कारखाना है जिसका नाम है सर्वे इंस्ट्रूमेंट सेवा। बस आकाशवाणी के बारे में दो बात कहना चाहूंगा, साफ
0: जी,
1: आवाज सही अंदाज। आकाशवाणी देहरादून रिक्त पुनः पुल हरिद्वार बाईपास।
0: जी क्या बात है, आपने तो बिल्कुल ही एक कहते हैं ना राइम बना दी है।
1: हमारे कारखाने में इंजीनियरों के काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट बनते हैं,
0: अच्छा,
1: जो देश विदेश से लोग आते हैं। सामान हमारा पहले भी जाता था, आज भी जाता है और आइंदा भी जाता रहेगा।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस जो है खूब तरक्की करे, हमारी यही कामना है।
1: जी
0: अब बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है कि होटल राकेश
0: जी
1: और गाने के बोल हैं, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना।

0: संपन्न होता है। अब मुझे यानी पीयूष स्वधा को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
1: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है. इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे.
4: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honour, welcoming President Nikos Christodoulidas and his

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी।